साथियों, वैसे तो मुस्कान एक ऐसी जादुई कुंजी है जो हर चुनौती को आसान बनाती है, अपनी लंबी और खुशनुमा जिंदगी को और भी बेहतर बनाती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट जो आंतरिक शक्ति के साथ सकारात्मकता भर देती है। जिंदगी की इन राहों पर हमारे साथ वो छोटे छोटे नन्हे से फरिश्ते भी तो होते हैं ना, जो हमें चाची, बुआ, बहन, दीदी कहकर पुकारते हैं और अपनी एक छोटी सी मुस्कान से हमारी सारी थकान, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। चलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से गीत के साथ, बात करते हैं और सुनते हैं इस गीत की।

जिस तरह से मौसम बदलता रहता है उसी तरह से जिंदगी में समय का भी अपना महत्व है। समय भी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल को सुख की छांव भी आएगी, और अगर आज सुख है तो कल दुख के बादल भी छा सकते हैं। तो इन सब से घबराना कैसा, हमें बस तैयार रहना है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। और जब ऐसे में साथ होता है अपनों का तो ये राहें और भी मजबूत हो जाती हैं, ये पल और भी मजबूत हो जाते हैं। समय की बात करें तो समय वाकई किसी के हाथ में नहीं रहा, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम समय के साथ किस तरह से चल सकते हैं। या तो रोकर या हंसकर जिंदगी को हमने गुजारना है, ये सिर्फ हमारे ही हाथों में है। तो हमें सिर्फ कोशिश और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।

निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजनी अभी बाकी हैं, कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। जी हाँ, जिंदगी की राहें चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो, बस हम तो इतना ही कहेंगे कि ये दिल की कली हमेशा खिलती रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिलहाल भोर सुहानी से विदा लेने का समय, आज की आखिरी प्रस्तुति ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, और रूपा आपसे विदा लेगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में बता दें। 6:10 पर आप सुन पाएंगे अर्पण कार्यक्रम, जो कि भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम है। इसे लेकर आएंगी आपके समक्ष बबीता शर्मा। श्री रामचरितमानस गान आप सुन सकेंगे 6:44 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 3। छः बजकर 55 पर आप सुनेंगे पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम। 9:10 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें आपके साथ होंगी कुसुम लता। 9:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम वतन का राग। 10:00 आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और विश्व दर्पण संसार की खबरें। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स। 11:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आप सुन सकेंगे इस कार्यक्रम में। एपिसोड रहेगा 136।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में

वी कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रविवार की सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके दिए समर्पण की कद्र करे।

झुकने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है।

वक्त चला है 6:26 और 2 सेकेंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

किसी भी पेड़ या पौधे पर फल फूल से ज्यादा पत्ते होते हैं, फिर भी वो पेड़ फल या फूल के नाम से ही पहचाना जाता है।

वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र साफ नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव

0: दशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमंत्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मंत्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन 30-स्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR

0: तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussions with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
2: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
1: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. Union Minister Prahlad Joshi will be the new education minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure strict punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It'll be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It'll also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the Prime Minister's Office and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Prime Minister Modi will interact with participants of the Viksit Vibrant Village Programme 2026 via video conferencing this evening. Over 400 youth participants represent

रविवार की ये सुबह अपने साथ लाई है फुर्सत की कुछ अनमोल पल जो आप बिताएंगे हमारे साथ और साथ ही सुनेंगे खूबसूरत संगीत। तो आराम से बैठिए, चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। गोल्ड सुप्रभात में स्वागत है आप सभी का और आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

करीब करीब वैसा ही मौसम रहने वाला है जैसा कल था। हालांकि कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेकिन एफएम गोल्ड पर बेहतरीन गीतों की बौछारों का आनंद आप लेते रहेंगे, ये हमारा वादा है।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
6: वक्त हुआ है 7:24 आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। भाई, खुशियां कभी नसीब से मिलती हैं तो कभी हाथ बढ़ाकर पकड़नी पड़ती हैं। अगर जीवन का हर सफर हंसकर काटा जाए तो राह आसान हो जाती है और मंजिल आ जाती है आपके करीब। जी हां, खुशी महसूस करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप खुश दिखे, और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले धीरे से मुस्कुराना होगा, फिर थोड़ा और मुस्कुराना होगा, फिर अपनी मुस्कुराहट को हंसी में तब्दील करना होगा। हंसे और हंसे, खिलखिलाकर हंसे, क्योंकि यही कारगर उपाय है डिप्रेशन, उदासी और चिंता से निजात पाने का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहनों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधे देने को झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है।

श्रोताओं, ये केवल पंक्तियां नहीं हैं, ये उस सत्य का चित्र है जिसे भारत का हर सैनिक अपने जीवन से लिखता है। जब कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है, तब वे केवल बर्फीली चोटियों की रक्षा नहीं कर रहा होता, वे हमारे घरों की सुबह, बच्चों की मुस्कान, खेतों की हरियाली और तिरंगे की आन बान शान की रक्षा कर रहा होता है। आज 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस है, भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि उसकी संप्रभुता को चुनौती दी जाए तो उसका सैनिक असंभव लगने वाली ऊंचाइयों पर भी विजय का तिरंगा फहरा सकता है।

0: across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan and the conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. The main function is being held at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Let's hear more from our correspondent.
1: The Kargil War Memorial at Dras is witnessing solemn and patriotic ceremonies as the nation marks the 27th Kargil Vijay Diwas. Union Defense Minister Rajnath Singh is leading the commemoration by paying floral tributes at the Kanapath in honor of the brave heart of Operation Vijay at Kargil War Memorial. The Raksha Mantri will also inaugurate the virtual walk-through portal of the Kargil War Memorial, visit the Hut of Remembrance and Veer Bhumi, interacts with Veer Naris and Veer Matas and flag of the Shaurya Vijay Yatra motorcycle rally. The observance of Kargil Vijay Diwas is a solemn reminder of the courage, sacrifice and unwavering commitment of Indian Armed Force in safeguarding the nation's sovereignty. From Dras, Zanad Ali for Akashwani News.
0: The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them. On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. Meanwhile, CJP's national spokesperson Ashutosh Ranka appealed to all the protesters to withdraw immediately and return home peacefully.
2: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है. उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं. इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.
0: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया. इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया. कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रुकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया. उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया. इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला. नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी. इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा.
0: The National Film Development Corporation has officially opened entries for the 57th International Film Festival of India, IFFI, scheduled to take

0: place in Goa from 20th to 28th of November 2026. IFFI, Asia's oldest film festival, will feature the flagship Indian Panorama section, showcasing 25 feature and 20 non-feature films, alongside awards for debut directors and digital web series. Global entries are also open for international competitions, including the ICFT UNESCO Gandhi Medal. Submissions for Indian categories close mid-August, while international submissions via Film Freeway deadline is on 31st August 2026.
1: और सायरा, अब खेल की कुछ बात कर लेते हैं तो स्क्वैश से शुरुआत करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलेम को सीधे तीन गेम में 11-3, 11-7 और 11-9 से हराया।
0: And Indian sub-junior men's team thrashed arch-rivals Pakistan in the gold medal match of the FIH Youth Hockey FIES Asian Championship. Goals from Romit Pal, Captain Ketan Kushwaha and Shahrukh Ali crowned India as the Asian champions. With this victory, the Indian men's team also finished at the top of the elite pool table. By virtue of reaching the final, both India and Pakistan have qualified for the inaugural FIH Youth Hockey FIES World Cup. In the women's competition, the Indian sub-junior women's team bagged the silver after a hard-fought contest in the final against China, ensuring both Indian contingents return home with medals. Celebrating the stellar performances of both squads, Hockey India announced cash rewards for the teams.
1: सायरा, अब निकलते हैं देश के महानगरों की सैर पर, जहां आज दिन भर कई अहम गतिविधियां होने वाली हैं। सबसे पहले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत 66 लाख से अधिक गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 45.53% है। वहीं 99.85% मतदाताओं को घर घर जाकर प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने अब BLO के लिए जानकारी जुटाने और भरे हुए प्रपत्र एकत्र करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई से बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी है। और जुलाई को बाल संरक्षण माह के रूप में दिल्ली में मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधूर के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अंतर्गत 331 प्रशिक्षण सत्रों में 1,12,000 से अधिक विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।
0: And now let's talk about Chennai. The Tamil Nadu Selection Committee will reopen the online application window for MBBS and BDS admissions for candidates who have not yet submitted their applications for the 2026-27 academic session. The portal for medical selections would remain open from 10 a.m. from today till 3 p.m. tomorrow, that is the 27th of July. According to the notification, the committee decided to reopen the portal as a one-time measure after representations from the students. The director of Chennai Mathematical Institute, Madhavan Mukund, would work to reverse the poor admission trend in the BSc Math course and make math popular among students again. Speaking at the 23rd annual convocation of CMI, Mukund said that the satellite campus of the institute would have an exclusive math museum and activities for school students to explore math in a way which they don't get in schools. The institute is working with the Tamil Nadu government to build the capacity of teachers. The four-year BS Honours program in maths will provide more flexibility and opportunity to students who pursue higher studies or jobs.
1: और चेन्नई से अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। जुलाई में हुई भारी बारिश के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ गिरने की घटनाओं के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका ने पेड़ों की देखभाल का तरीका बदलने का फैसला किया है। विशेषज्ञों ने बताया कि कंक्रीट बढ़ने, जलभराव, गलत तरीके से छटाई और जड़ों को नुकसान पहुंचने के कारण पेड़ गिर रहे हैं। अब महानगर पालिका पेड़ों की वैज्ञानिक जांच करेगी, उनकी सही तरीके से छटाई कराएगी और जोखिम वाले पेड़ों की पहचान कर समय रहते जरूरी कदम उठाएगी।
0: Moving on to the city of Bengaluru, well, Karnataka Minister for Medical Education and Skill Development, Dr. Sharan Prakash R. Patil, has laid importance on the technology-based solutions like artificial intelligence, telemedicine and digital health services that can extend medical facilities to rural areas facing shortage of doctors. He was speaking on the subject, Artificial Intelligence and Data for the Future of Medical Education in Rajiv Gandhi University of Health Sciences in Bengaluru. He pointed out that 14,900 doctors

0: Teachers graduate every year in Karnataka, and still their services are lacking in rural areas. The minister said that technology can be used to enable the doctors in urban areas to connect with patients in rural areas for consultations. He supported a state-specific artificial intelligence model to suit the needs of the health and medical education system in the state. This model, he added, that must focus on improving the quality of teaching, learning, research and healthcare services. Another news coming in from Bengaluru. Bengaluru India Nano Conference and Exhibition on Nanotechnology will be held in Bengaluru from 3rd to 5th of August, bringing together globally renowned scientists, industry leaders, startups, investors, policymakers, and technology enablers. It is the 14th edition of the event that fosters collaboration, showcases breakthrough research, and accelerates commercialization of nanotechnology-driven innovations. Multiple activities include plenary talks, pre-conference tutorials, industry roundtables, exhibitions, startup pavilion, Nano Spark X startup pitching, Nano for the Young, Nano Tech Quiz, poster walkway of discovery, and the prestigious Bengaluru India Nano Excellence Awards will be part of this conference.
1: और अब कोलकाता चलते हैं. बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में सोमवार तक भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के लिए अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
0: And moving on to Hyderabad, well, major shrines across Telangana, including Bhadrachalam and Hyderabad, witnessed a heavy rush of devotees on the auspicious occasion of Ashadh Todi Ekadashi. Queue lines were filled from early dawn as worshippers gathered to offer prayers. At the historic Sri Sita Ramachandra Swami Temple in Bhadrachalam, numerous devotees attended the Nitya Kalyanam at the Veda Mandapam. Marking the festival, temple priests initiated the Sri Ramatamaka Varuna Yagam, praying for abundant rainfall, agricultural prosperity, and overall national development. A similar spiritual fervor resonated throughout Hyderabad as Lord Vishnu and Shiva temples recorded massive turnouts. In the capital city, shrines like the Sri Venkateshwara Swami Temple in Boyanpalli resonated with the continuous chanting of Govind Namas. Temple management committees across Hyderabad set up streamlined queue systems and essential facilities to ensure smooth movement and hassle-free darshan for all visitors. So that was all from the metros.
1: सावन की फुहारों और बादलों के आवाजाही के बीच घर से निकलने से पहले मौसम का हाल जान लेना भी जरूरी है. तो आइए एक नजर डालते हैं देश के प्रमुख महानगरों के मौसम पर. दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है. राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और मुंबई में भी बादलों का डेरा बना रहेगा और मध्यम बारिश होने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और कोलकाता में आज मौसम कुछ अधिक सक्रिय रह सकता है. यहां बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ साथ आंधी तूफान आने की संभावना है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
0: And well, Chennai and other South Indian cities of Bengaluru, Hyderabad, all are expected to have a cloudy sky, and there is a possibility of rain as well. In Chennai, minimum temperature was 28, maximum will be around 37 degrees Celsius. Bengaluru will have some light rain as well. Minimum temperature was 20, while maximum will be around 33 degrees Celsius. Hyderabad will have a partly cloudy sky with haze. Temperature will hover between 25 and 36 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, आज जब पूरा देश कारगिल के वीरों के शौर्य और बलिदान को नमन कर रहा है, ऐसे में इतिहास के उन पन्नों को पलटना भी जरूरी है जिन्होंने समय समय पर दुनिया की दिशा में बदलने वाली घटनाओं को अपने भीतर संजोया है. आइए जानते हैं 26 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
0: And before we start, let's make a very important announcement that on the occasion of Kargil Vijay Divas, as part of our series, Person Behind the Story, in our upcoming episode, we speak to Major D.P. Singh, a Kargil War veteran and India's first Blade Runner. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today at 12:30 p.m. You can also listen to the program on the News on AIR app and the News on AIR official YouTube channel. So yes, let's remember some of the events now. Of course,

0: आपने हम सबने बता ही दिया कि कारगिल विजय दिवस आज ही मनाया जाएगा, बट वी टेक बैक आवर लिसनर्स टू द ईयर 1835 एंड द फर्स्ट शुगर केन प्लांटेशन स्टार्टेड इन हवाई।
1: और 1908 की बात करें तो अमेरिका में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई, जो आगे चलकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के नाम से प्रसिद्ध हुई। और बात करें 1953 की तो आज ही के दिन फिदेल कास्त्रो और उनके साथियों ने क्यूबा के मोकोंडा बैरक पर हमला किया। हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन इसी घटना ने 26 जुलाई आंदोलन की नींव रखी, जिसने आगे चलकर क्यूबा की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। और 1965 की बात करें तो 1965 में मालदीव ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। ये दिन मालदीव के इतिहास में राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्र पहचान का प्रतीक माना जाता है। वहीं 2005 में नासा ने अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी का सफल प्रक्षेपण किया था, और 2005 में ही मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी।
0: That's right, in 2004, Brazil defeated Argentina to win at the Copa America football tournament. So those were the events that happened on this day in history. And now when we remember some of the personalities, तो इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम किसका है वैष्णवी?
1: सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर उबैद सिद्दीकी के बारे में। विज्ञान की दुनिया में कुछ खोजें केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के शोध का आधार बन जाती है। ऐसे ही प्रख्यात वैज्ञानिक थे डॉक्टर उबैद सिद्दीकी। आज डॉक्टर उबैद सिद्दीकी की पुण्यतिथि है। वे भारत के अग्रणी आणविक जीव विज्ञानी थे। उन्होंने आनुवंशिकी और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध किया तथा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया था।
0: Today is the birth anniversary of V.R. Panthulu, a very renowned film director, producer and actor who is best known for directing films in Tamil, Kannada, Telugu and Hindi. His most popular films are Karnan, Shri Krishna Devaraya, Schoolmaster and Kittur Chennamma. B.R. Panthulu was a successful actor and also converted Maposi's biographic works into a movie about a local chieftain who fought with the British in the 18th century in Tamil Nadu. And of course, he made many memorable films, but he made his debut as an actor in the 1936 Kannada film Samsara Nauka, which was an adaptation of the play that he acted in. It was produced by Devi Films, that was based in Chennai. Directed by H.L.N. Simha, the film starred Panthulu, M.V. Rajamma, Dikki Madhav Rao, S.K. Padmadevi and M.S. Madhav Rao. We won't tell the entire story of the film, but let's listen to this song from one of his films that he directed.

0: भारत की कला, संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए जिन विद्वानों के कार्य आज भी मार्गदर्शक माने जाते हैं, उनमें वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज वासुदेव शरण अग्रवाल की पुण्यतिथि है। वासुदेव शरण अग्रवाल प्रख्यात पुरातत्वविद, कला इतिहासकार और साहित्यकार थे। भारतीय संस्कृति, मूर्तिकला और प्राचीन इतिहास पर उनका शोध आज भी महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है। उनकी चर्चित कृतियों में इंडिया एज नोन टू पाणिनी, पाणिनी कालीन भारतवर्ष तथा हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय इतिहास और संस्कृति के गहन अध्ययन में उनके योगदान को आज भी आदरपूर्वक याद किया जाता है।
1: Today we are also remembering Tayab Mehta on his birth anniversary, and he doesn't need any introduction. A very renowned and acclaimed painter, sculptor and filmmaker, he was part of the Bombay Progressive Artists Group and the first post-colonial generation of artists in India like John Wilkins, who also broke free from the nationalist Bengal school and embraced modernism instead with his post-impressionist colors, cubist forms and brusque expressionistic styles. Among his most noted later paintings were his triptychs,

0: and his disciples were well-known artists. His prominent disciples, of course, include Pandit Sri Krishna Sharma, he was his son, Sri Murli Krishna Sitar, and Srimati Anubha Banerjee, again a sitar player, Sri Rajan Swarup Rajan, Durjoy Smriti Vadan, Shruti Kalra, Smriti Minocha, Sri Uma Kant Saxena, Vinay Jain, Rakesh Jhori, and Sri Jugal Kishore Jain, among others.
1: स्वतंत्रता की लड़ाई केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि समाज को जागरूक बनाने के प्रयासों में भी लड़ी गई। इस दिशा में मालती चौधरी का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 26 जुलाई 1904 को जन्मी मालती चौधरी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी विचारक और समाज सेवी थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और ओडिशा में ग्रामीण विकास, महिला शिक्षा तथा आदिवासी कल्याण के लिए आजीवन कार्य किया। उनके सामाजिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और सच्चा नेतृत्व श्रोताओं वही होता है जो समाज के सबसे वंचित व्यक्ति को भी सम्मान और अवसर दिलाने का संकल्प रखे। ऐसे ही दूरदर्शी समाज सुधारक थे छत्रपति साहू महाराज। आज ही के दिन 1874 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे छत्रपति साहू महाराज को आधुनिक भारत के महान समाज सुधारकों में गिना जाता है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना और पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क शिक्षा और छात्रवासों की व्यवस्था की। वे महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों से गहरे प्रभावित थे और उन्होंने डॉ. भीमराव आम्बेडकर के कार्यों का भी समर्थन किया। सामाजिक समानता और जनकल्याण के लिए उनका योगदान आज भी प्रेरणा स्रोत है।
0: We're also remembering Bhaskar Chandavarkar on his death anniversary today. He was a very renowned sitar player, an academic and film and theatre composer who worked with very well-known directors of Indian cinema like Mrinal Sen, Girish Karnad, Aparna Sen, K.G. George, Amol Palekar and Kumar Sahni in various languages including Marathi, Hindi, Kannada, Malayalam, Bengali and Odia, and was known for his blending of Indian classical and Western music. He taught at FTII for many years, and during his career as a music composer, he worked for 40 films and is most known for his work in films such as Amol Palekar's Akrit and Thoda Sa Rumani Ho Jaye, Girish Karnad's Jabbar Patel's Samna, Girish Karnad's Ondan Ondu Kala Dali, and of course Kumar Sahni's Maya Darpan. We have a song from Maya Darpan. Let's listen to it.

कृतज्ञता से याद करते हैं। जुगल हंसराज ऐसा ही एक नाम है। आज जुगल हंसराज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय सफर की शुरुआत की और बाद में कई लोकप्रिय फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। इससे पहले कि हम उनके बारे में और बात करें, आइए आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
4: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी।

0: हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज

0: करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
1: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJP के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJP ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJP ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है।

0: ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bagged silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
4: The Kangrur Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
5: So, hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw kare, peacefully apne ghar wapas jaye.
2: Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his best to meet the expectations from him.
6: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department. With full strength I will try to work with all humility and honesty.
2: President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan

0: A tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centers and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team bags silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता, जबकि खवातीन की टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल CJP के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में CJP के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने CJP के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के लिए CJP की जानिब से पेश किए गए 5 निकाती चार्टर के बारे में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इन तजावीज पर संजीदगी से गौर करेगी और CJP के साथ मुशावरत के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकेगा वो किया जाएगा। CJP के आला तर्जुमान सौरभ दास ने नेक नियती के इजहार के तौर पर एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया और उम्मीद जाहिर की कि तयशुदा शराइत पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाएगा।
4: The Kokrul Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
5: तो हम immediate effect से protesters से request करते हैं कि आप withdraw करें, peacefully अपने घर वापस जाएं।
2: इस दौरान CJP के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानका ने तमाम मुजाहिरीन से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर दें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा वजारत तालीम का भी चार्ज दिया गया है। जनाब जोशी

0: फिलहाल गिजा सारिफीन के उमूर और अवामी निजामे तकसीम और नई और काबिल तजदीद तवानाई जैसी वजारतों के भी वजीर हैं। ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत और रहनुमाई के तहत महकमे में उम्मीदों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर से मरकजी वजारती कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। ये बिल ऐवान की कल की कार्रवाई के एजेंडे में शामिल है। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 में तरमीम करना है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। मरकजी काबीना ने जुमे को तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मुसव्वदे को मंजूरी दी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तिलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के शुरका से बातचीत करेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले 400 से ज्यादा नौजवान शुरका वजीर आजम से बराह रास्त बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 पिछले महीने 4 से 30 तारीख तक दो मरहलों में मुनक्किद किया गया, जिसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 दरख्शां गांवों का इहाता किया गया। इस प्रोग्राम के शुरका का इंतखाब मुल्कगीर ऑनलाइन क्विज मुकाबले के जरिए किया गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान शुरका ने मकामी बिरादरियों के साथ रहकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें सफाई मुहिम, सरकारी स्कीमों से मुतालिक आगाही मुहिम, युवा सम्मेलन, सकाफती तबादले के प्रोग्राम, शजरकारी मुहिम, मिनी मॉडल पंचायत, मकामी दस्तकारों से बातचीत और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इदारों के दौरे शामिल थे। इस प्रोग्राम ने शुरका को सरहदी इलाकों के समाजी इकतसादी हालात, सकाफती विरसे और तरक्याती उमंगों का बराह रास्त मुशाहदा करने का मौका फराहम किया। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसे माई भारत के जरिए नाफिज किया जा रहा है, वजीर आजम के इस नजरिए को हकीकत बनाने के लिए तैयार किया गया है कि भारत के सरहदी गांव को मुल्क के पहले गांव के तौर पर देखा जाए और उन्हें विकसित भारत की जानिब सफर में सरगर्म शराकतदार बनाया जाए। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने तीनों यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक को वसअत देने के मकसद से आला सतही मसरूफियात का इनेकाद किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कई तारीखी हुसूलियाबियां हुई, जिनमें किसी भारतीय सदर जमहूरिया के मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के पहले सरकारी दौरे और 3 दहाई बाद भारतीय सदर का रोमानिया का पहला सरकारी दौरा शामिल हैं। अपने पूरे सरकारी दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने सरबराहाने मुमलकत के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की, कारोबारी फोरम से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। सदर जमहूरिया को रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की जानिब से एजाजी डिग्री भी दी गई, जो कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ते तालीमी और अवाम से अवाम राबतों की अक्कासी करता है। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने भारत की तेज़ रफ्तार माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशकदमी और आलमी इश्तराक के तई अहद बस्तगी को नुमाया किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने तिजारत, जिद्दत तराजी, तालीम, डिजिटल टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत तआवुन की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया मुर्मू के दौरे ने मशरकी यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात में गर्मजोशी को बढ़ाया है और मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत दी है। सुभाषरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है जिन्होंने साल 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। मरकजी तकरीब लद्दाख के दराज की करगिल जंगी यादगार पर मुनक़िद हो रही है। तफसील हमारे नामीनगार से।
3: द्रास की करगिल जंगी यादगार में 27वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर हुबुल वतनी पर मबनी तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल जंगी यादगार पर ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जाबाजों की यादगारों पर गुलहाय अकीदत नजर करते हुए तकरीबात की क्यादत कर रहे हैं। वजीर दिफा करगिल जंगी यादगार के वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का इफ्तिताह कर रहे हैं, यादगारी कुटिया और वीर भूमि का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो वीर नारियों और वीर माताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क की सालिमियत की हिफाजत के तई भारत की मुसल्ला अफवाज की शुजात, कुर्बानी और गैर मुतजलजल जज्बे की याद दिलाता है। द्रास से इनायत अली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क करगिल की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में साल 1999 में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले बहादुर फौजियों का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से दो रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। हुकूक का मुतालबा करने वाले रहनुमाओं उमर नाजिर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में मुकम्मल बंद की अपील की है और मीरपुर डिवीजन के लोगों से तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की है। कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब होने वाले लॉन्ग मार्च से पहले मीरपुर के मुजाहिरीन के काफिले रावलकोट में जारी धरने में जम हो सकते हैं। ये ताजा एहतजाज बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम और सिविल हुकूक पर आयद पाबंदियों के मामले में बढ़ते अवामी गुस्से की अलामत है। इस दौरान मुंतजमीन ने पूरे एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन से नज्म व ज़ब्त और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। आला दर्जाबंदी की हामिल अनाहा सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के निगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी की हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया, ताहम अनाहत ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजादारी को खत्म किया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने इलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने FIH यूथ हॉकी 5 आलमी कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने लिखा है कि विकसित द्राक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुरका से आज बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी यकजहती, तरक्की, नीज सरहदी गांव की हिकमत अमली की अहमियत की गहरी समझबूझ को फरोग देता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया। जंतर मंतर पर सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस

0: लिया। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। उत्तर प्रदेश का कदीम बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनहा सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
1: Community, एक community जब कोई problem से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब air quality हो, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो court नहीं जा पाता है. Court final stage पे आता है and court इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि court पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, that is justice. अब environment दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पे जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं. अब एक कोई गाँव के एक कम्युनिटी उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं. एक एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपरमार्केट. तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है. हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पे बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे हैं, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है. पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते. हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज़ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूँगा. एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे. ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है. तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में. ईआई नोटिफिकेशन पे जो है It's based on an international law principle and as well as is widely discussed in our court, जो हमारा court पे भी discuss किया गया है, that is a precautionary principle. So there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such, cutting such, that amount of forest, what will be the impact of that project

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area. So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and give the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो लोकल न्यूज़ मीडिया हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो नेशनल मीडिया हो सारे उसका जो लोकल लैंग्वेज है उस पर वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करके ये एक अनाउंसमेंट होना है एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पेक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसके क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया। उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारा उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशिंग फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमिडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है NIC के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो, सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशन, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनसीएप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी सिटीज के लिए एनसीएप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है, जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज बना दी और क्लियरेंसेस दे दी। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला NGT में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली NGT में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं NGT में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट NGT में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। समूचा राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं इसकल दिल्ली में मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों, 26 जुलाई का दिन जिंदगी एक नए दिन नए मौके के रूप में हमारे सामने है। काम से छुट्टी, आराम का दिन, फुर्सत का दिन, सपनों के आसमान का दिन। अगर आपके लिए भी ये एक ऐसा दिन है तो फिर आइए जुड़ जाइए हमारे यानी एफएम गोल्ड के साथ। हम साथ साथ मिलकर इस दिन को और खुशनुमा बनाते हैं। मैं इसकल दिल्ली के साथ आपके लिए पहला गीत लेकर आई हूं द ग्रेट गैम्बलर से। आइए सुनें।

साथियों, वर्तमान में होने वाली घटनाएं भविष्य का इतिहास बन जाती हैं और गुजरता दिन उन घटनाओं की यादों को सजो कर रख लेता है। जब वो तारीख, वो मौसम लौट कर आते हैं ना, तो मानो वो घटनाएं फिर से जीवित हो उठती हैं। तो आज है कारगिल विजय दिवस। यह हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने चुपके से नियंत्रण रेखा LOC को पार करके कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। उनका उद्देश्य श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को काटकर लद्दाख को भारत देश से अलग करना था। जैसे ही इस घुसपैठ का पता चला, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया। दुर्गम और बर्फीली पहाड़ियों पर भीषण गोलाबारी के बीच हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और 2 महीनों से अधिक चले समय तक चले इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को सभी चोटियों को दुश्मन के कब्जे से मुक्त करा लिया। ये दिन सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं, बल्कि ये उन 527 से अधिक भारतीय वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है, जिन्होंने देश की संप्रभुता और तिरंगे की शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम नमन करते हैं कारगिल विजय के वीर शहीदों को।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर
2: सूर्य घर, एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों

0: का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल लगी। साथियों, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की। ये भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है। ये सीनियर सिटीजन को मृत्यु कवर, लोन सुविधा और अधिकतम 15 लाख की इन्वेस्टमेंट लिमिट के साथ 10 वर्षों के लिए सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जाने वाली इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और गारंटीकृत नियमित आय प्रदान करना है। इसमें एक निश्चित पर ब्याज मिलता है, जिसे पेंशन के रूप में मासिक, त्रैमासिक, छमाही या सालाना प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी योजना है ये, तो हमारे बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकते हैं। एक बहुत प्यारा गीत है आपके लिए मेरे पास अवतार फिल्म से, आइए सुने।

0: बात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 11 जुलाई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

हमारे देश में स्वाधीनता का सूर्योदय किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था, वो असंख्य देशभक्तों के स्वयं जलकर प्रकाश बनने के त्याग का परिणाम था। उस पावन प्रभात की पहली किरण में अनगिनत क्रांतिवीरों के रक्त की आभा थी, स्वतंत्रता की हर सांस में उनके बलिदान की सुगंध थी और मुक्त गगन में लहराते तिरंगे की हर लहर में उनके राष्ट्र प्रेम का स्पंदन था। कितने ही ऐसे सपूत हुए जिन्होंने अपने सपनों को मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। किसी ने यौवन की मुस्कान त्याग दी, किसी ने परिवार का स्नेह, किसी ने सुख सुविधाओं का संसार, तो किसी ने अपने प्राणों का अमूल्य उपहार। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करने नहीं निकले थे। उनका तो एकमात्र स्वप्न था कि भारत स्वाधीन हो, भारत आत्मगौरव से आलोकित हो। एक ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने मौन समर्पण के साथ स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति दी और अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। मणिलाल पंड्या का जन्म 20 जुलाई सन 1911 को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मूलाशंकर पंड्या था। ये 20वीं सदी का उदयकाल था। गुजरात का ऐतिहासिक नगर पाटन उस समय गायकवाड़ राजवंश की छत्रछाया में अपनी सांस्कृतिक चेतना को संजोए हुए था। इसी नगर के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में उनकी परवरिश हुई। पिता ने उन्हें धर्म, मर्यादा और विद्या के संस्कार दिए। पराधीन भारत की दशा से उस समय के युवा अत्यंत आक्रोशित थे। बड़ौदा रियासत की प्रगतिशील शिक्षा नीतियों और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने पाटन के युवाओं में एक मूक चेतना भर दी थी। मणिलाल पंड्या ने जब होश संभाला तब उनके कानों में तिलक जी के स्वराज की हुंकार गूंज रही थी, गांधी जी के आंदोलनों का आमंत्रण गूंज रहा था और उनके भीतर एक संकल्प जाग चुका था कि उनका जीवन देश हित में समर्पित होने के लिए है।

प्रारंभ कर दिया था। वो स्वदेशी और स्वराज का मंत्र लिए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया। 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से ये सत्याग्रह आरंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून भंग के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रभाव पूरे भारत में हुआ और गुजरात तो इसके केंद्र में ही था, इसलिए गुजरात की धमनियों में राष्ट्रवाद का रक्त उबल रहा था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने मई सन 1930 में ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध धरसाना सत्याग्रह की योजना बनाई। ये स्वाधीनता संग्राम का महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था। दरअसल गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई सन 1930 को सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना नामक डिपो की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया। ये धरसाना नमक कारखाने पर शांतिपूर्ण छापे की योजना थी। ब्रिटिश दमन चक्र चला। जब इन सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठियां बरस रही थीं, तब गुजरात के स्वयं सेवकों के जत्थे में मणिलाल मूलाशंकर पंड्या अग्रिम पंक्ति में सीना ताने खड़े थे। पुलिस की लाठी बरसती जा रही थी और महात्मा गांधी की जय का नारा बुलंद होता जा रहा था। सैकड़ों लोग घायल हुए। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की वैश्विक चर्चा के साथ ही ब्रिटिश शासन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। धरसाना सत्याग्रह ने मणिलाल पंड्या को ब्रिटिश शासन की नजरों में ला दिया। उन्होंने पाटन के स्थानीय बाजारों में घूम घूम कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसके साथ ही शराब की दुकानों के सामने धरनों का कुशल नेतृत्व किया। अंग्रेजी हुकूमत उनकी गतिविधियों से बौखला उठी। उन्होंने मणिलाल पंड्या को गिरफ्तार कर साबरमती सेंट्रल जेल में डाल दिया। एक अहिंसक योद्धा जेल के लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गईं, लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत कर दिया।

जेल से रिहा होने के बाद मणिलाल पंड्या का संकल्प और भी फौलादी हो चुका था। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में स्वाधीनता आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां एक ओर ब्रिटिश भारत था, वहीं दूसरी ओर देसी रियासतें थीं। पाटन बड़ौदा रियासत का अंग था, जहां उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर बड़ौदा राज्य प्रजामंडल तीव्र गति से सक्रिय हो रहा था। मणिलाल पंड्या जानते थे कि किसी भी बड़ी क्रांति के लिए संगठनात्मक मजबूती आवश्यक है। उन्होंने पाटन तथा मेहसाणा के सुदूर ग्रामीण अंचलों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शोषित किसानों से संवाद किया, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया और रियासती करों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उनके सहयोगी थे कर्मठ स्वाधीनता सेनानी माणिकलाल मगनलाल शर्मा। दोनों ने मिलकर स्थानीय युवाओं का एक ऐसा अभेद्य नेटवर्क तैयार किया जो खादी, छुआछूत उन्मूलन और राष्ट्रीय शिक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने लगा। सन 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। ब्रिटिश हुकूमत ने शीर्ष नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन दिशाहीन न हो जाए, इस चिंता से अनेक नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को हवा दी। पाटन में इस आंदोलन की कमान संभाली मणिलाल पंड्या जैसे नायकों ने। भूमिगत रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। इस तरह पाटन और मेहसाणा का संपूर्ण क्षेत्र रातों रात गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। मणिलाल पंड्या ने देशभक्ति पत्रिकाओं और बुलेटिनों के संपादन तथा वितरण का कार्य अत्यंत सतर्कता के साथ गुप्त रूप से किया। अंग्रेजी व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उन्होंने सरकारी डाक, टेलीग्राफ लाइन और रेलवे पटरियों को बाधित करने वाले कई गुप्त अभियानों का कुशल

कुशलतापूर्वक संचालन किया। जब अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत रहते हुए संचालन कर रहे थे, तब उत्तर गुजरात तक उनके संदेशों और रसद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का काम मणिलाल पंड्या ही कर रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उन्हें भारी मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें अत्यंत कठोर कारावास में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनका आत्मबल अजेय रहा। देश में आजादी की सुबह आने तक वो सलाखों के पीछे ही रहे। अंततः देश आजाद हुआ। उनकी आंखों में संतोष और खुशी के आंसू थे। उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं था। वो एक मूक कर्मयोगी की तरह अपनी जड़ों की ओर लौट आए। वो जीवन के अंतिम क्षणों तक खादी भंडारों के माध्यम से स्वावलंबन का मंत्र देते रहे तथा निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु तन मन धन से समर्पित रहे। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रह्लाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। समग्र राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। भारत के युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली

पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का महंगाई और नागरिक अधिकारों पर पाबंदियों के विरोध में आज से दो दिन के प्रदर्शन का ऐलान। लगभग दो हफ्ते तक लगातार बमबारी के बाद अमरीका ने ईरान पर हवाई हमले रोके। हुदेदा पर सऊदी अरब के हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की तीन दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा रही। यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने आज से दो दिन के आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन का समापन मुजफ्फराबाद में एक लंबी पदयात्रा के साथ होगा। अधिकार कार्यकर्ता उमर नजीर कश्मीरी और अधिवक्ता ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में पूर्ण बंद का आह्वान किया है और मीरपुर संभाग के लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मीरपुर से निकलने वाले विरोध काफिले कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने से पहले रावल कोर्ट में धरने में शामिल होंगे। पाकिस्तानी मामलों के जानकार ओम प्रकाश दास ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि यह आंदोलन बढ़ती महंगाई, बिजली की ऊंची दरों और नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंधों को लेकर जनता के बढ़ते गुस्से के बीच हो रहा है।
2: ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में रैली शुरू कर रहा है मुजफ्फराबाद की तरफ रावलकोट से, ये लॉन्ग मार्च जुलाई 15 को शेड्यूल था। पाकिस्तान बोला कि बात करेंगे लेकिन बात किया नहीं। अब जैक ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, अब हम पाकिस्तान की नहीं सुनेंगे, ये भरोसे के लायक नहीं है। प्रोटेस्ट लीडर जो है वो अपने लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अमन, शांति और डिसिप्लिन बनाए रखें। रैली के दौरान पाकिस्तान फोर्स यूज कर रहा है, खाना पानी बिजली सब कुछ बंद कर रखा है रैली को।
0: अमेरिका ने ईरान पर लगभग दो सप्ताह तक बमबारी के बाद हवाई हमले रोक दिए हैं। संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने बताया कि रात भर कोई महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि नहीं हुई। इस घटनाक्रम से तनाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमानपुर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सैन्य कार्रवाई में विराम की पुष्टि की। हालांकि ईरान के पड़ोसी खाड़ी देशों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं वहीं बनी हुई हैं। सऊदी अरब के अधिकारियों ने लाल सागर में महत्वपूर्ण तेल अवसंरचना केंद्र वाले यानबू और जिजान प्रांत में चेतावनी सायरन बजाए। बहरीन में भी एहतियात के तौर पर मिसाइल चेतावनी अलार्म बजाए गए। स्थानीय अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने रणनीतिक लाल सागर बंदरगाह शहर हुदेदा पर सऊदी अरब के हवाई हमले के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इससे प्रमुख नौवहन मार्गों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहया सारी ने कहा कि हमले में लाल सागर के यानबू और जिजान शहरों में आरामको सुविधाओं को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने पुष्टि की कि कल तड़के दोनों शहरों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। ताजा घटनाक्रम हूती समूह की उस धमकी के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से होकर सऊदी संबद्ध जल मार्ग को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी। उन्होंने रियाद पर यमन पर नाकाबंदी लागू करने और हाल के हमलों का आरोप लगाया जिनमें सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई पर हुआ हमला भी शामिल है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री संकीर्ण मार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और

0: जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार का लगभग 12% गुजरता है। इससे पहले हुती समूह ने लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसने हुदैदा पर हवाई हमले किए, बंदरगाह और दूरसंचार निगम को निशाना बनाया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने ईरान के सरकारी अखबार द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों में सभी पक्षों से आगे के सैन्य टकराव से बचने का आग्रह करते हुए यमन संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीति और बातचीत का आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जर्मनी के बर्लिन में वार्षिक LGBTQ प्राइड समारोह में एक वैन के चढ़ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के कारण पुलिस को समारोह रद्द करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बर्लिन पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान की है, उसके इस्लामिक गुटों से संबंध बताए जा रहे हैं। क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे के नाम से प्रसिद्ध शहर की प्राइड परेड यूरोप के सबसे बड़े LGBTQ समारोह में से एक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस पर ईरान को अमरीकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों की सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए उपग्रह खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि रूस अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगभग 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर रूस के उपग्रह निगरानी गतिविधि का पता लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एकत्र जानकारी ईरान के साथ साझा की जा रही है। ये आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन और रूस के ईरान को हथियार आपूर्ति करने के खिलाफ चेतावनी देने के बाद आए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए प्रविष्टियां आधिकारिक तौर पर खोल दी हैं। एशिया का सबसे पुराने फिल्म महोत्सव इफ्फी में प्रमुख इंडियन पैनोरमा सेक्शन होगा, जिसमें 25 फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म होंगी और उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: सबसे पहले बात स्क्वैश की। भारत के युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई है। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स पर है, जहां स्क्वैश को पहली बार ओलंपिक्स खेलों में शामिल किया जाएगा। पुरुष वर्ग में एशियाई जूनियर चैंपियन आर्यवीर देवान भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर हॉकी में भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। और अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। हालांकि भारत 2 मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। कल खेले गए दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ही सिमट गई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का महंगाई और नागरिक अधिकारों पर पाबंदियों के विरोध में आज से 2 दिन के प्रदर्शन का ऐलान। लगभग 2 हफ्ते तक लगातार बमबारी के बाद अमरीका ने ईरान पर हवाई हमले रोके। हुदैदा पर सऊदी अरब के हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल का मेल बॉक्स था आपके लिए। स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल का मेल बॉक्स में आप अपनी मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद, और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपके पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेल आईडी है fmgoldaidaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस है, इस पर सुनना चाहते हैं आप सब बल्ली मारान से शबाना भारती, नवाब अहमद भारती, अरहान अहमद और सूफिया नवाब। तो आप सबकी पसंद पर फिल्म हकीकत का ये गीत है।

जी हाँ साथियों, आज है कारगिल विजय दिवस और उन सभी वीर शहीदों को याद करने का ये दिन है जिन्होंने 26 जुलाई 1999 को भारत की चोटियों को दुश्मन के कब्जे से मुक्त करा लिया था ऑपरेशन विजय में। आप सभी के संदेश आए जाते हैं, कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स और ये संदेश आया है मास्टर लिखने वाले मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। आपका ये संदेश हम तक पहुँचा है और अगला संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से, लिखने वाले हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार और लिखे हैं कि मैसेज ज़रूर शामिल करें, तो देखिए हमने शामिल कर लिया। मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मीफा नवाज़, बेबी चाहत, सादिया, ये लिखते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमें संदेश ये भेजते हैं। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति और ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद गुप्ता पांडे, राम रजवाड़े। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये लिखने वाले हैं मारकंडे, कौन मारकंडे, संजय मारकंडे लाइन में फर्क था, संजय मारकंडे, ममता मारकंडे, बेबी किट्टू। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर, ये लिखते हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश, इनका संदेश आया है, लिखते हैं किसी भी गीत में हमें शामिल करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये संदेश है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का। अगला संदेश जल्दी से शामिल करती हूँ, नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से लिखने वाले बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। ये अगला संदेश हम तक पहुँचा है, कृष्णा पार्क दिल्ली से लिखने वाले हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, शिटी दीवाना। अगले संदेश में है सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, पवन गॉड और उनके दोस्त योगेंद्र नायक कासगंजी। इस संदेश है मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा।

रुझा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का ये संदेश है। और अगला संदेश है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का, पद्मा टाकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश से। अगला गीत आइए सुनते हैं जिसे हमारे पास उनकी पसंद शामिल करते हैं। इसके लिए मीरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इनकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्द

0: रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। आप सभी के संदेश आए जाते हैं, कोशिश कर रही हूँ कि सभी के नाम शामिल कर लिए जाएं। तो ये संदेश आया है शाहजी नगर देगलुरू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। अगला संदेश शामिल करते हैं मरहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनफ यशफ अब्बासी, रसीद अब्बासी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, जुबैर अली खान, सबिहा अंजुम खान का ये संदेश था। अगला संदेश ये लिखने वाले हैं ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हगोड़े और योगिता हगोड़े, कुमारी प्रियाली हगोड़े, पार्थ हगोड़े और पूरा परिवार इसमें शामिल है। फारूक अली खान का भी हम तक मैसेज पहुंचा है, कहाँ से लिखते हैं ये नहीं लिखा है। अपनी पसंद का नगमा सुनवा दीजिए, ये लिखते हैं सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार का संदेश हम तक पहुंचा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। नमस्कार भेज रहे हैं आपको भी नमस्कार। गांधी चौक बाड़मेरा राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान रामदेवरा से, बाबूराम जयपाल डांगरी से, खुदा बख्श खलीफा खलीफों की बावड़ी से ये संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं और अमरावती से ये संदेश हमने शामिल कर लिया। अगला संदेश है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, ये संदेश भी आप बार बार मैसेज भेज रहे हैं जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है आप सबके संदेश शामिल करने में। तो कोशिश करें कि एक बार में एक ही संदेश भेजें। ये संदेश आया उत्तम नगर दिल्ली से, लिखने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। अगला संदेश भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा राजू और जगदीश देवांगन का हम तक पहुंचा है। ये संदेश है मोताला महाराज से, लिखने वाले विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी, ओम कुमार। अगला संदेश है कस्बा अग्रवाल मंडी बागपस्त यूपी से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान का हम तक पहुँचा है और ये संदेश भी शामिल करते हैं भट्टीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता का। अगला संदेश है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का। गुड मॉर्निंग भेजते हैं, गुड मॉर्निंग मुकेश, रितिका, सोनम, सुमन बरारी और ये कटिहार बिहार से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रीतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का यह संदेश है। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का भी संदेश हम तक पहुंचा है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का भी संदेश हम तक पहुंचा है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, इनका संदेश हम शामिल कर चुके हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का भी संदेश हम तक पहुंचा है और ये बंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष का भी संदेश हम तक पहुंचा है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार भी हमें संदेश भेजते हैं और ये फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सूरज चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध और समस्त चौरसिया परिवार का हम तक संदेश पहुंचा। सुदर्शन शाह का ये संदेश हम शामिल कर चुके हैं। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे का भी संदेश हम शामिल कर चुके हैं। आप बार बार संदेश भेज रहे हैं तो चलिए अब हम अगला गीत, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। इसे पसंद किया है अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का और अगले गीत के लिए अभी एक और गीत का समय बाकी है, फिलहाल ये गीत सुनते हैं। ये गीत है फिल्म धर्मात्मा का।

कभी प्यार किया। देखिए आप सब बहुत प्यार करते हैं एफएम गोल्ड से, इसीलिए आप सबके संदेश आए जा रहे हैं। अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी दाऊद सराय सहारनपुर से हमें संदेश भेजते हैं, और ये संदेश है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी का। और इनके आप सबके अलावा भी बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, कोशिश करें कि बार बार संदेश ना भेजें। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू का भी संदेश हमें हम तक पहुंचा है। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फारिया और ताहिरा का भी संदेश हम तक पहुँचा है। आप सबकी पसंद हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के नाम शामिल हो जाएँ, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो ये गीत जो मार्कंडेय परिवार ये पसंद का है, मुकेश की आवाज़ में रानी रूपमती से, सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: इसी गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि

0: धो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही

0: एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े

भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो,

तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट।

स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते।
वो व्यक्ति हैं

मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही

अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार माई गॉव पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए

कही पूरे देशवासियों से कि कुछ तारीखें, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनको याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं है, बस वो नक्श हो जाते हैं हर एक के मानस पटल पर, इतिहास बन जाते हैं। और कभी ना भूलने वाला दिन, जैसा कि आज का दिन है, करगिल विजय दिवस। नमन है उन जाबाजों को, उन शहीदों को, उन सैनिकों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनके कारण आज हम सभी भारतवासी खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। उन शहीदों को नमन करते हैं, उन्हीं को समर्पण ये करते हैं विशेष कार्यक्रम।

12:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार श्रोताओ, आपने सुना कार्यक्रम मन की बात में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025

0: 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई,
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: ऐसी ही परवाही हमारे देश में हमेशा चलती रहे और हम सबका ये प्यारा देश भारत यूं ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जाए, यही हम सबकी कामना है। और अब दीजिए आशीष को इजाजत, आप सुनेंगे अब एक हमारा विशेष कार्यक्रम करगिल दिवस के उपलक्ष्य में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम करगिल विजय दिवस के अवसर पर। आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
2: कहानी को थोड़ा

0: फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
1: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे CDA में, उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यूटर्न था, और उस पहले यूटर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई DP सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो, जैसे हो, वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यूटर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर, तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस लाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
0: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
1: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो, पहले NDA में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाई फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
0: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में?
1: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को सिर्फ कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है।

0: मैं खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे, तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही उन दिनों, 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है। हम तो तैयार थे सब के सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं, और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको। उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में। वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं इखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण। नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी, और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी। पीछे से सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, और उसकी सुबह कैसे हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था।
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी, लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन, और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने पर बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था, और उसकी आवाज नहीं आई, वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर।

0: 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहू लुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि तो सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया, रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, अनिस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था, तो उन्होंने मुझे बचाया, और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था, वो कर्नल राजिंदर सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई, वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और फिर जब 2023 में

0: मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं, परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं। 73 ऐसे टुकड़े हैं, उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंग करना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए। वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने की बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है, और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है। शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी, और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिया?

0: एक्शन रहा, आप देश के लिए लड़े।
1: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था। हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी की आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम हैं। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माय केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद 21 किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
0: जी
1: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, NGO है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
0: जी
1: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा। जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
0: जी
1: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो तो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
0: बहुत ज़्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सबरवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ DP, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में AG ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर DP सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ

0: थे तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था। और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जहाँ जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं? उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.earnews@gmail.com।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी The news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
2: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of I.

1:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम दिल ढूंढता है। आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आक्रमण के उस गीत से जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें

1:04 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम दिल ढूंढता है। आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले हमारे भारत महान की महान गाथा आपको सुनाते हैं। फिल्म है सिकंदर आजम, गायक कलाकार मोहम्मद रफी, संगीतकार हंसराज बहल और गीतकार राजेंद्र कृष्ण। और इस गीत के बाद श्रोता आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: व्यवस्थितम, अर्थात जिन मनुष्यों का चित्त पूरी तरह संयमित है और अपनी आत्मा में ही स्थिर है, उन्हें बाहरी तीर्थों और आश्रमों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका शुद्ध हृदय ही सबसे बड़ा तीर्थ होता है।
1: श्रुतं भवद्भिः प्रेरणाप्रदं सुभाषितम्। अधुना क्रमो वर्तते प्रसंग प्रभागस्य।

0: अस्ति छात्राः ताम् प्रदर्शनीम् पश्यन्ति शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति श्रीमन् अहम् जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति अध्यापकः वदति प्रिय छात्राः सत्यम् वृक्षाः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति अतः ते पूज्याः छायायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव दश कूप समावापि दश वापि समः हृदः दश हृद समः पुत्रः दश पुत्र समः द्रुमः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम् अहो ईशां वरमं जन्म सर्वं प्राणीम् उपजीवनं सुजनस्य इव येषां वैः विमुखाः यान्ति न अर्थिनः
1: अयि संस्कृताभिलाषिणः जानन्ति एव भवन्तः यत् भारतस्य भाषा वैविध्यं सांस्कृतिकैकतां सुदृढां करोति एतस्यैव भावस्य परिचायकः अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इति प्रभागः यत्र अद्य ललितमोहन तिवारी संस्कृत हिन्दी उड़िया भाषासु कतिपयानि वाक्यानि प्रस्तौति
2: प्रथमं वाक्यम् अस्ति राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः प्रतिवर्षं जुलाई मासस्य 23 दिनांके आचर्यते राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है ओडिया भाषा में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष जुलाई मासरा 23 तारीख रे पालन करा जाए द्वितीयम वाक्यम अस्ति अस्मिन् दिने भारते रेडियो प्रसारण से प्रारंभ जाता है इस दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई ओडिया भाषा में यही दिन भारत रे रेडियो प्रसारण आरंभ हुई थिला तृतीयम वाक्यम अस्ति प्रसारण माध्यमानि जनानां ज्ञानवर्धनाय महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहन्ति प्रसारण माध्यम लोगों के ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उड़िया भाषा में प्रसारण माध्यम लोक मानंकर ज्ञान वृद्धि रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी थाए
1: अयि सहृदयाः श्रोतारः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् विचारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सम्पर्क सूत्रमस्ति nhdsanskrit@gmail.com इति अस्तु अधुना तु कालः समायातः प्रस्थान वेलायाः आगामि सप्ताहे अस्मिन्नेव दिने अस्मिन्नेव समये पुनः नवीन प्रस्तुत्या सह उपस्थास्यामहे तावत् स्वस्थाः सन्तु प्रसन्नाः भवन्तु संस्कृत साहित्यस्य सौरभम् अनवरतम् अनुभवन्तु नमो नमः
3: आदाब ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं कलीम अहमद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क्यादत की सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे असवद के खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज़े खातिर रखें और भारतीय मौसमियात महकमे ने वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है अब खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर यह कहते हुए मुल्क के जाबाजों को खराज अकीदत पेश किया है कि खाह ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने

0: के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल एक खुसूसी शौर्य विजय यात्रा का अहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है, एक सफ़र, एक मुल्क, एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफ़र सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तस्करा किया।
1: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। उन्होंने काबिले कद्र हुनरमंदी, जज्बे और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर नौजवान इख्तिराकारों की सताइश की। कैच द रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: मन की बात के अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है, जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर आज़म ने साइंस ओलंपियाड का तस्करा करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने मन की बात के आज के नशरिये में कश्मीर की रिवायती वगू चटाई का तस्करा किया, जो सरकंडे और धान के तिनकों से बनाई जाती है। माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की वगू चटाई को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में लोग एक पेड़ के नाम मुहिम के जरिए फितरत के तई अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तकरीबन 60 साल बाद गुजरात के गिर जंगलात में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल परिंदा फिर से वहां अपना मस्कन बना रहा है। मन की बात के आज के नशरिये में जनाब मोदी ने त्रिपुरा के मौसीकी चोंग प्रेंग साज का भी जिक्र किया।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी मनाई जाएगी। इस तनाजुर में जनाब मोदी ने कहा

0: कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत में कई बाइसे तरगीब पहलू शामिल थे, लेकिन एक टीचर का रोल उनके लिए सबसे अजीज था। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने अगले महीने मनाए जाने वाले योम आज़ादी का तस्करा किया और सभी लोगों पर जोर दिया कि वो माई गोव पर 15 अगस्त से पहले बड़ी तादाद में अपने अपने ख्यालात और तजवीज़ें शेयर करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह फौज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल ज़िले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मादरे वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करके बहरे असवद में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर रोजगार के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो इस तरह का काम कबूल करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का पूरी एहतियात के साथ जायजा लें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग इस तरह के रोजगार पर जाने का इरादा रखते हैं उन्हें इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करना चाहिए। भारतीय मौसमियात महकमे ने वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इधर छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन के दौरान शदीद बारिश से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुँच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की और सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे असवद के खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज़ खातिर रखें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: Catch the Rain का संदेश बहुत सीधा है। जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
2: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being local for vocal for local.
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: The Prime Minister also mentioned Khadi, saying that Khadi was very dear to Mahatma Gandhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा

करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर चार भारतीय सवार थे, इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है।
और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू।

0: हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंट कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खटसे ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है नाटक अपना अपना कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस नाटक में लेखक ने अपनी कल्पना का सहारा लेकर महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों के माध्यम से इस धर्म युद्ध को देखने और मानवीय संबंधों को नई दृष्टि से टटोलने का प्रयास किया है। इस नाटक को लिखा है युवा असमिया लेखक ऋतुपर्णो दास ने और हिंदी अनुवाद दक्षिणा शर्मा ने किया है। नाटक के निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक अपना अपना कुरुक्षेत्र।

0: युद्ध भूमि में युद्ध के उपरांत रात्रि का अंधकार कितना गहन और भयावह हो जाता है मित्र।
1: सो तो है।
0: अब तो कुरुक्षेत्र की इस रक्त रंजित धरती पर मृत योद्धाओं के शव भी नहीं बचे हैं। सियारों ने भी आना छोड़ दिया है। यत्र तत्र पड़े खंडित शस्त्रों, टूटे रथों और मृत अश्वों के अवशेष भर रह गए हैं। ना दर्प से चमकते वो ललाट रहे, ना अहंकार दीप्त वो मुख।

0: युद्ध का परिणाम होता ही ऐसा है मित्र, कुछ भी शेष नहीं रहता जिस पर किसी को गर्व हो। जो पराजित हुआ वो धूल धूसरित हो गया, और जो विजयी हुआ वो भी कहां जय बोल सका।
1: कहते हैं ये महाभारत का युद्ध है, इसमें धर्म के पक्ष की विजय हुई, क्या यही सत्य है?
0: हाँ मित्र, यही सत्य है, वरना महापराक्रमी कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह यूं शरशैया पर ना लेटे होते।
1: दुर्भाग्य दुर्भाग्य, अब चारों दिशाओं में पसरे भयावह नीरवता के प्रहरी है हम। मित्र, अब तो मात्र कुछ ही दिनों की बात है, माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आने को है, भीष्म पितामह देह त्याग देंगे।
2: माते,
0: लगता है पितामह पुनः प्रलाप करने लगे हैं।

0: माते
1: यशस्वी भव।
0: अब कैसा यश माते, कैसा यश? भ्राता से भ्राता के, स्वजन से स्वजन के युद्ध का साक्षी बनने, प्रतिभागी होने के पश्चात भी यश शेष रहेगा? मैं भीष्म, हस्तिनापुर का सेनापति, मृत्यु की प्रतीक्षा में शरशैया पर क्षत विक्षत लेटा हुआ, और आप मुझे यशस्वी होने का आशीर्वाद दे रही हैं।
1: आप गंगा पुत्र हैं, महाराज शांतनु के पुत्र हैं, महर्षि परशुराम के योग्य शिष्य हैं, शास्त्र ज्ञान में परिपक्व, शास्त्र ज्ञान में अद्वितीय। यश तो जीवन पर्यंत आपके संग छाया की भांति ही रहा।
0: यही तो विडंबना है माते, यही तो विडंबना है। आपको यहां अपने समक्ष देखकर एक जिज्ञासा उठी है माते। महाराज पांडु के अंतिम संस्कार के पश्चात जब व्यास ने आपको चेतावनी दी थी कि राजवंश में विनाश होने वाला है और आप इस महायुद्ध को सहन नहीं कर पाएंगे, तब आप तो अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गई थी और वहीं से आपने स्वर्गारोहण किया, किंतु आज सहसा इस मध्य रात्रि में कुरुक्षेत्र की रक्त सिंचित रणभूमि में आपका आगमन, सदेह साक्षात कोई विशेष प्रयोजन ही होगा।
1: ये सत्य है कि मैं जीवित नहीं हूं, किंतु मृत्यु एक अवस्था भर है। कुछ प्रश्न थे जो अनुत्तरित रह गए थे, आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मांगने आई हूं।
0: प्रश्न? कैसे प्रश्न, कैसे उत्तर माते?
1: माते माते, क्या आपको स्मरण भी है? आपने मुझे पहली बार कब इस नाम से अलंकृत किया था?
0: जिस दिन आपने पिताश्री महाराजा शांतनु के साथ विवाह किया था, उनकी अर्धांगिनी बनकर आपने हस्तिनापुर के राज प्रासाद में प्रवेश किया था माते।
1: उस दिन मेरे अंतर मन को एक गहरे अंधकार ने ढांप लिया था, आपको इसका अनुमान था?
0: माते,
1: इस संबोधन से आप हर पल मेरे अंतरतम के अंधकार की गहनता को और बढ़ा देते थे। आपके पिता के जीवन और राज प्रासाद में उनकी आशाओं आकांक्षाओं को मैं पूर्ण करते करते धराशायी हो गई। क्या आपने कभी ये अनुभव किया कि एक साधारण केवट की पुत्री को सहसा हस्तिनापुर जैसे विशाल राज्य का शासन भार संभालने पर कितना संकट आया होगा? आप ठहरे कुलीन राजवंशी, आप लोग शस्त्र विद्या में निपुण हैं, शास्त्रों में भी पारंगत हैं, राजनीति समाज नीति अर्थनीति रणनीति सभी में कुशल हैं, किंतु मैं मेरे पिता धीवर राज की एक मुट्ठी भर मछलियों को लेकर की गई राजनीति अथवा समाज नीति कितनी व्यवस्थित थी, कितनी सुनियोजित थी। हमारी रणनीति भोग के लिए नहीं, क्षुधा के विरुद्ध होती थी, और मेरे लिए तो अर्थनीति का अर्थ नाव से यात्रियों को नदी के इस किनारे से उस किनारे लाने ले जाने से प्राप्त होने वाली कुछ मुद्राओं का लेखा जोखा भर था, इससे अधिक कुछ भी नहीं।
0: महादेव,
1: आपने सत्यवती को, मुझ साधारण सी कन्या को इस अबूझ रहस्यों के सागर में लाकर छोड़ दिया, जिसका नाम हस्तिनापुर है। कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही राजरानी का मुकुट मेरे शीश पर सुशोभित कर दिया गया। साधारण दृष्टि में यह उत्थान था, गौरव का एक उच्च शिखर था, किंतु मेरे लिए था संकटों का उपहार। क्या आप जानते हैं इन समस्त संकटों के मूल में कौन था?
0: कौन माते?
1: आप भीष्म, आप।
0: मैं?
1: हाँ आप। क्या आपको उस दिन का प्रसंग याद है, जब पहली बार महाराज मुझे ढूंढते हुए हमारी कुटिया पर पहुंचे थे?
0: उस प्रसंग को कैसे भूल सकता हूँ राजमाता?
1: मैं भी कहाँ भूल पाई। अब क्या होगा पिताश्री?
0: बेटी,
2: बेटी, मैं भी दुविधा में पड़ गया हूँ। महाराज शांतनु अतिथि कक्ष में बैठे मुझसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: मैं उस बूढ़े आदमी से विवाह नहीं करूंगी पिताश्री, चाहे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े।
2: धैर्य रखो सत्यवती, धैर्य रखो।
3: यदि आपको अपनी पुत्री से प्रेम है तो शीघ्र कुछ उपाय सोचिए पिताश्री।
2: सत्यवती मेरी पुत्री, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवव्रत ही भविष्य में हस्तिनापुर के राजा होंगे। सात संतानों की असमय मृत्यु के पश्चात महाराज शांतनु ने रानी गंगा को त्याग कर अपने पुत्र देवव्रत को पाया। देवव्रत, राजकुमार देवव्रत के प्रति राजा के हृदय में अगाध प्रेम। इसके अतिरिक्त राजकुमार देवव्रत शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं, राजनीति के अपने ज्ञान में अद्वितीय और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा स्वयं महर्षि परशुराम ने प्रदान की है। ऐसे गुणवान पुत्र को सिंहासन से हटाकर यदि तुम्हारे पुत्र को उस राज सिंहासन पर आसीन करने की शर्त हम महाराज के सामने रखेंगे, वो जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट जाएंगे।

0: माता सरस्वती ने तेरे स्वर में ये उपाय बनवाया है और ऐसा सहज मार्ग दिखा दिया। उत्तरी, तुम यही रुको।
1: जी पिताश्री।
0: मैं अभी उनके प्रस्थान की व्यवस्था करके आता हूँ।
2: और वास्तव में महाराज शांतनु मेरे पिता के प्रस्ताव का उत्तर देने में असमर्थ होकर लौट गए थे, किंतु वो हमारी क्षणिक प्रसन्नता थी। अगली बार आप स्वयं हमारी कुटिया पर आ पहुंचे थे।
0: बस मुझे जो कहना था वो मैंने महाराज से कह दिया था। सत्यवती का विवाह हो और उनकी संतान ही राज सिंहासन पर बैठे, यह स्वप्न क्या एक पिता के लिए अपराध है युवराज देवव्रत?
3: आप भली भांति जानते हैं धीवर राज, महाराज ने मुझे हस्तिनापुर का भावी नरेश घोषित किया है। धीवर राज,
0: जी जी जी जी,
3: यदि ये आपका अंतिम निर्णय या अनुरोध है तो मैं देवव्रत आज घोषणा करता हूं कि मैं कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, कभी भी राजा नहीं बनूंगा और सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं देवव्रत ये भी शपथ लेता हूं कि मैं अपना शेष जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और सम्मान के लिए समर्पित कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
4: विचित्र, मैं प्रतिज्ञा कराया, मैंने जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की है राजमाता, पूरी निष्ठा से हस्तिनापुर के सेनापति का दायित्व निभाया है।
2: सेनापति सेनापति ही होता है, राजा नहीं। ये दुर्भाग्य है कि जिसे एक राजा बनना था उसने सेनापति बनना स्वीकार किया, और उससे भी अधिक दुर्भाग्य ये है कि उसे सेनापति बनने पर गर्व है। इस महायुद्ध में कुरुक्षेत्र की धरती पर लगे लाशों के अंबार के लिए कौन उत्तरदायी है? मेरे विचार से इस महायुद्ध में सैकड़ों शूर वीरों की मृत्यु का कारण आप हैं भीष्म आप।
4: माते, माते, आपने अपने पुत्र धृतराष्ट्र की राजनीतिक दृष्टिहीनता और गांधार नरेश शकुनी के कुटिल षड्यंत्र को अनदेखा कर दिया। दोष उनका है।
2: होगा, किंतु आपसे अधिक नहीं। एक आर्य पुत्र ने, एक युवराज ने अपने पुत्र धर्म का पालन करने के लिए जो भूल की, उसी भूल का परिणाम है ये महाभारत। हस्तिनापुर के मुख्य संरक्षक के रूप में अनुचित घटते हुए देखकर भी आंखें फेर लेने का परिणाम है ये महाभारत। अधर्म को रोकने के स्थान पर हस्तिनापुर के मुख्य सलाहकार के मौन रहने का परिणाम है ये महाभारत।
4: ये सत्य नहीं है माते, नहीं, सत्य नहीं है। मैंने समय पर सभी अन्यायों का विरोध किया है।
2: मौखिक विरोध? राजतंत्र में मात्र मौखिक विरोध से दशा और दिशा नहीं बदलती। गुरु परशुराम के शिष्य का अर्जित शस्त्र ज्ञान कहाँ गया? व्यर्थ था वो।
4: परंतु शस्त्र विद्या तो आत्मरक्षा के लिए है माते।
2: तो ये कुलवधु द्रौपदी का ही दोष था कि आत्मरक्षा के लिए उसके पास शस्त्र नहीं थे। उसे विश्वास था पर, पितामह भीष्म की सुरक्षा आश्रय पर, किंतु मिला क्या? उसे मिला भरी राजसभा में नग्न होने का अपमान। जब दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर घसीट रहा था, जब दुर्योधन उसे अपनी जंघा पर बैठने के लिए बोलकर अट्टहास कर

0: रहा था उस समय आपने एक बार अपनी तलवार निकाल ली होती शांतनु नंदन, एक बार। हस्तिनापुर की भाग्य रेखा को तब एक अलग मार्ग अपनाने के लिए विवश होना पड़ता।
1: राजा धृतराष्ट्र भी तब मौन थे माता।
0: मैं आपसे आपकी बात कर रही हूँ भीष्म, अन्य किसी व्यक्ति की भूल से आपकी भूल को आंकने नहीं आई हूँ। मैं आपके महामौन पर उंगली उठा रही। क्यों मौन रहे आप, क्यों?
1: राजा के सामने ऐसा व्यवहार देशद्रोह के समान होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को स्वयं जुए में लगाया था, वो मौन थे। द्रौपदी के शक्तिशाली पति धनुर्धर, अर्जुन और महाबली भीम भी मौन थे। नीति कहती
0: क्या
1: है कि
0: पुत्र वधू पर अत्याचार होते देखना, उसे सार्वजनिक रूप से नग्न करना नीति है? नारी का अपमान नीति हो सकती है कभी?
1: नहीं हो सकती। किंतु दोष मात्र मुझ पर ही क्यों? मंत्री विदुर, कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण कोई भी ज्ञान अथवा बल में कम नहीं थे, वे भी मौन थे, सब मौन
0: थे। वो युवराज नहीं थे, वो भरत वंश के नहीं थे, वो राज्य के लिए प्रतिबद्ध थे, राजवंश के सम्मान के लिए नहीं। वो हस्तिनापुर के राजकोष से पारिश्रमिक पाने वाले सेवक थे। आचार्य, गुरु, मंत्री, ये सब उपाधियां हैं, अधिकार नहीं। आप राजा के पुत्र हैं, अपने वंश और राज्य की गौरव की रक्षा और सम्मान का दायित्व और कर्तव्य आपका है, उनका नहीं।
1: मैं तो आजीवन वंश की रक्षा सम्मान के लिए वचनबद्ध हूं। हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ही मैंने सिंहासन पाने के क्षुद्र स्वार्थ का त्याग कर दिया।
0: यही तो अनर्थ हुआ है देवव्रत, यही तो अनर्थ हुआ, भीषण अनर्थ। आपने अधिकारों के अधिकार को ही अस्वीकार कर दिया। आपने अपने पिता के क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना सिंहासन, अपने अच्छे शासन के अधिकार का परित्याग कर दिया। आपको हस्तिनापुर के भाग्य से खेलने का अधिकार किसने दिया?
1: इतना विष।
0: राजमाता हूं मैं, पर एक नारी भी तो हूं। जिस हस्तिनापुर ने मुझे राजमाता का मुकुट पहनाया, उसी हस्तिनापुर में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हुआ, हिडिंबा को अनार्य कहकर वन में ही छोड़ दिया। सबसे शक्तिशाली होने, सबसे श्रेष्ठ होने के पश्चात भी आपने इन सभी अन्याय अनियमितताओं का खुलकर विरोध क्यों नहीं किया? आपने एक बार भी सिद्धांत के लिए, उचित कर्तव्य के लिए अपनी तलवार क्यों नहीं उठाई? क्यों भीष्म?
1: संभवतः राजनीति माता, राजनीति। राजनीति सदैव राजा के पक्ष और हित में होती है, होनी चाहिए। संभवतः आपका दोषारोपण सही है माते, किंतु वो आपका दृष्टिकोण है। मैं अब तक हस्तिनापुर के भाग्य को निखारने, संवारने, इसके सिंहासन की सुरक्षा में लीन रहा। ये मेरी भूल थी माते।
0: भूल आपके आंतरिक और बाहरी अस्तित्व के बीच निरंतर संघर्ष की थी। एक ही समय में पक्ष और विपक्ष दोनों से सम्मान की प्रवृत्ति अवसरवादिता नहीं तो और क्या है?
1: अवसरवादी? और ये भीष्म? एक जिज्ञासा है माते, कृपया समाधान करें।
0: देवव्रत की जिज्ञासा या महारथी भीष्म की जिज्ञासा, या पितामह की जिज्ञासा।

0: पक्ष और विपक्ष के बीच खड़े सैनिक की जिज्ञासा। हस्तिनापुर की वर्तमान स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है?
1: बता चुकी हूं, पुनः कहती हूं, समय संभवतः राजा को ही उत्तरदायी मानेगा मेरे पुत्र।
0: और आप?
1: मैं? मेरे लिए हस्तिनापुर के इस दुर्भाग्य का एक ही कारण है, देवव्रत का भीष्म होना।
0: तो मुझे आपके इस तिरस्कार के साथ ही जाना होगा? महाराज धृतराष्ट्र का अंध पुत्र प्रेम, अंधार नरेश शकुनी का प्रतिशोध रूपी कुटिल कौशल और देवकी नंदन श्री कृष्ण का माया चक्र कुछ भी नहीं, सभी को मुक्त कर दिया आपने। आज हस्तिनापुर की राजमाता का राजदंड मात्र इस भीष्म के लिए गरज रहा है। हे मां गंगा, हे मां, क्या आप सुन रही हैं? आपका पुत्र देवव्रत कारण है हस्तिनापुर के विनाश का। एकमात्र कारण मैं भीष्म। आपका पुत्र देवव्रत हस्तिनापुर के विनाश का एकमात्र कारण है। इसने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए बलिदान कर दिया, वो विनाश का एकमात्र कारण है। अंतिम क्षणों में ये अभियोग, हतभागी हूं मैं।
1: मैं आपको दंड देने नहीं आई थी, मैं आपको मात्र आत्मविश्लेषण के लिए कहने आई थी। इतिहास एक दिन सबको अपनी दृष्टि से देखेगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में झांकिए, सब कुछ देखेगा, सब कुछ सुनाई देगा। हृदय मिथ्यावादी नहीं होता है। भीष्म, हम सबके भीतर भी तो एक कुरुक्षेत्र है, हम सब का अपना अपना कुरुक्षेत्र, जहां निरंतर पक्ष विपक्ष का द्वंद चलता रहता है, जय पराजय वहां भी है। रहा इस युद्ध का परिणाम, तो युद्ध ना किसी को फला है कभी ना फलेगा। इस युद्ध में भी जय नहीं, हम सब की पराजय ही हुई है पुत्र। मेरे प्रति द्वेष भाव मत रखिएगा, मैंने भी नहीं रखा आपके प्रति। पर लोक की सुखद यात्रा का आशीर्वाद ले।
0: प्रणाम।
1: यशस्वी भवा।
0: अतीत का कौन सा पृष्ठ खोल कर रख दिया आपने माते? आपने इस भीष्म को अभिशप्त कर दिया माते, अभिशप्त कर दिया माते, राज माते।

0: पितामह अब भी कोई स्वप्न देख रहे हैं?
1: उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं क्या?
2: मैं

0: देवव्रत, आज घोषणा करता हूं कि मैं कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा,
1: पितामह,
0: कभी भी राजा नहीं बनूंगा और सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं देवव्रत ये भी शपथ लेता हूं
1: पितामह
0: कि मैं अपना शेष जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है।
2: अपना अपना कुरुक्षेत्र। अभी आप युवा असमिया लेखक ऋतुपर्णो दास का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक का हिंदी अनुवाद दक्षिणा शर्मा ने किया था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। भीष्म पितामह की भूमिका में थे योगेंद्र टिक्कू, राजमाता सत्यवती, वीणा होरा, केवट यानी धीवरराज, कीमती आनंद। प्रहरी की भूमिका में थे सुनील लोहिया और राहुल दक्ष। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है।

0: अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर है +7 9652773414 और यूक्रेन में संपर्क नंबर है +38 09335 9598। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे भवन में प्रवेश करते समय केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के बारे में भी सोचें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी उनके काम का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said, India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House on Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आप्टे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आप्टे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवे दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और हाँ, ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने 1 साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके है, वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, की माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनिता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी।

0: तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी यत्ता हो गई है।
1: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना? आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
0: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे, वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का, तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
1: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
0: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आई तो काली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
1: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
0: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे है। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा रजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था, मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी, अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
1: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा, और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई, तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
0: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है, जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी, और शायर के पेट में से ही तमाशा निकला, तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है, तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी, ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का, तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
1: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
0: तमाशा लोगों की जान था, जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
1: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
0: हाँ।
1: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल

0: में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, वो टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाचे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती। धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाचा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाचा देखते हैं।
1: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
0: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाचा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाचा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है तब तक चलती ही रहेगी। खाली उसमें बदलाव आए।
1: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
0: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र ना तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा। ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं। ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
1: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
0: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाचे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाचा सुन रहे हैं। मेरा तमाचा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियोज निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
1: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
0: बहुत बेहतरीन रही है।
1: रघुवीर जी, तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
0: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के अंग पे पूरा बदन झका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाशे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
1: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
0: नहीं नहीं, बदला है, 1 महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले, उनको भी पूछा, ये अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं। इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
1: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
0: होता है।
1: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते हैं और अपना नाम भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
1: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में

0: अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म आंधी का नगमा, स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

श्रोताओं लीजिए सुनिए बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स। प्रतिभागी बच्चे हैं सोनल, कृतिका, सक्षम, आशी, अयांशी और पवित्रा।

0: कुछ भी नहीं था पास हमारे, फिर भी राजाओं की तरह जिया करते थे। सच में उस बचपन वाली जिंदगी में बहुत मस्ती किया करते थे, क्यों सुहानी, है ना ऐसी बात?
1: बिल्कुल सही प्रियंका दी, ना कोई डर ना कोई शर्म, जो मन में आए वो सब करो। और आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर।
0: वो तो है सुहानी, लेकिन सबसे पहले हम रेडियो किड्स को हेलो तो कर लें।
2: हेलो फ्रेंड्स।
1: क्यों ना कार्यक्रम का आरंभ होने से पहले हम ये जान लें कि हमारे साथ जो आज हमारे साथी जुड़े हैं उनका नाम क्या है और वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं।
3: मेरा नाम सोनल है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम सक्षम राजपूत है और मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ।
5: मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ।
6: मेरा नाम कृतिका यादव है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
7: मेरा नाम यांशी है, मैं क्लास LKG में पढ़ती हूँ।
8: मेरा

0: सभी को पता तो ये लग ही गया होगा कि ये देशभक्ति गीत क्यों चलाया गया।
1: हाँ।
0: कुछ है क्या खास?
1: कारगिल दिवस।
0: कौन बताएगा हमें इसके बारे में?
1: बताओ सोनल। ये दिवस भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
0: तो बच्चों, कारगिल विजय दिवस भारत के देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दिवस कब मनाया जाता है, कोई मुझे बताएगा?
2: क्यों ना प्रियंका दीदी, आप ही बता दो हमें।
0: ये मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तो यहाँ पर कोई रेडियो किड्स ऐसा है क्या जिसने कारगिल दिवस के लिए कोई कविता तैयार की हो?
1: मैंने की है ना।
0: सुनाओ सोनल।
1: जान लिया था उन्होंने वतन से ज्यादा और कोई धर्म नहीं होता, मानते थे वो वीर इस तिरंगे से बड़ा और कोई कफन नहीं होता। दूर कहीं वो अपने घर से वतन की हिफाजत करता है, अपनी माँ को अकेला छोड़ वो भारत माँ की रक्षा करता है। रख कर पत्थर दिल पर अपने, सब रिश्तों के मोह वो त्यागता है। हंसते हंसते जान वो अपनी भारतवासियों के नाम लुटाता है। दुख होता है उसे भी जब परिवार छोड़ वो सरहद जाता है। कल वापस लौटेगा या नहीं कुछ पता भी नहीं होता है, फिर भी गम छिपाकर मुस्कुराता वो रहता है। तिरंगे में लिपटे एक दिन यही सपना उसका होता है, तिरंगे में लिपटे एक दिन यही सपना उसका होता है।
3: अरे वाह सोनल, मुझे आपकी कविता तो बहुत पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत पसंद आई होगी।
0: तो अभी बात हो रही थी देश की रक्षा की। देश की रक्षा के साथ साथ हमें अपने प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जो वातावरण है, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक सबसे छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, जिसने फ्लावर्स के टॉप पहने हुए हैं, तितलियां सर पे बिठा रखी हैं, नेचर गर्ल बन के आई है। क्यों किया ऐसा आयांशी?
4: क्योंकि मुझे पसंद है।
3: अरे वाह आयांशी, और नेचर की चीजें, चाहे वो तितलियां हो, चाहे वो फूल हो, पत्ते हो, ये बस आपको ही नहीं, हर जुलाई 28 को हम मनाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो ये भी जान लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी यानी हम सभी छोटे बच्चों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह मनाया जाता है।

चकरकचीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

0: तो बच्चों, नेचर से रिलेटेड किसने किसने पोएम तैयार किया हुआ है, नाम बताइए एक एक करके अपना।
1: पवित्रा,
2: सोनल,
3: सक्षम,
4: यांशी।
0: अरे वाह, इतने सारे बच्चों ने नेचर के लिए तैयार किया हुआ है। तो एक एक करके सुनते हैं, सबसे पहले अयांशी से, क्योंकि नेचर गर्ल तो आज यही बनी हुई है।
4: ए।

0: गाँव में वो छाँव देने लगा, आते जाते लोगों को वो छाँव देने लगा, आहा छाँव देने लगा, आहा छाँव देने लगा।
1: मैं ना पहले आयांशी को देख रही थी, आयांशी बहुत ही ऐसे शर्मा के आराम से अपना अलग से बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही आयांशी ने कविता बोलना शुरू किया मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। उनकी आवाज़ ही इतनी प्यारी थी, ऐसे जैसे बारिश की कोई बूंद ऐसे जमीन पर टपक रही हो। आयांशी हम सबको ना बहुत मजा आया।
2: अब कौन सुनाएगा?
3: मैम
2: सुन ले सुहानी इनसे।
1: हाँ काफी उत्सुक लग रहे हैं हमारे सक्षम दोस्त, तो सक्षम फटाफट से अपनी कविता सुनाइए।
3: मेरी कविता का नाम प्रकृति का संदेश है। चिड़िया से है उड़ना सीखा, तितली से इठलाना, भवरे की गुंजन से सीखा गाना मधुर गाना, तेज लिया सूरज से हमने चांद शीतल छाया, हरे भरे पेड़ों की होती देखो सुंदर काया, घड़ी की टिक टिक ने समझाया सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आन पड़े धीरज ही वीरों का गहना, प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, इसे अपने हाथों से ईश्वर ने है सजाया।
2: वानी सक्षम ने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई।
1: बिल्कुल प्रियंका दीदी, और जैसे कि उन्होंने बोला कि सुंदर नदियाँ, बड़े पहाड़, सुहावनी हवा को महसूस करना किसे नहीं पसंद है ना?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो क्यों ना जानते हैं कि अगली पोयम, अगली कहानी हमारे लिए कौन बच्चा लाया है?
0: मैं सुनाऊं?
1: बिल्कुल पवित्रा, क्यों नहीं।
0: मेरी कविता का नाम है अ ब्यूटीफुल डे। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक डॉट ग्लिटर, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट द वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग, their heads never raising, there are 40 feeding like one, like an army defeated, the snow had retreated, and now dog were ill, on the top of the bare hill, the plover is whooping, and on, and on, and on, there's joy in the mountains, there's life in the fountains, small clouds are sailing, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, द रेन इज ओवर एंड गॉन।
2: तो पवित्रा ने इतनी अच्छी कविता सुनाई, इंग्लिश में सुनाई, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही अच्छा था, मदर नेचर के संरक्षण को लेके। और आगे हम चलते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे नेचर का पार्ट है।
4: हाँ।
2: वाइल्ड लाइफ में क्या आता है?
4: फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स जैसे बाघ,
0: टाइगर,
4: फॉक्स,
0: मंकी,
4: एलिफेंट,
0: ज़ेब्रा।
2: अरे वाह, बच्चों को तो बहुत पता है वाइल्ड लाइफ के बारे में। आयांशी अभी आपने क्या बोला?
0: ज़ेब्रा।

0: बंदर भी आया, चुन चुन करके आई चिड़िया।
1: एनिमल पर आते हैं तो सबसे पहले मैं बच्चों से जानना चाहूंगी कि हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन है, राष्ट्रीय
2: पशु। मैं बताऊं।
1: सभी बच्चे बताएंगे क्या?
3: टाइगर,
2: नेशनल बंगाली टाइगर,
4: नेशनल बंगाली रॉयल टाइगर।
1: तो बच्चों ये बताओ कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? नहीं पता?
5: देखा, फंसा दिया ना तुम्हें।
6: नहीं, आप ही बता दो।
1: सुहानी बताएगी।
5: तो मैं बताती हूँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 29 जुलाई को।
1: किसी बच्चे के पास कोई कविता या कहानी है बाघ को लेकर?
6: हाँ, मेरे पास है ना।
4: है मेरे पास भी।
1: तो आशी और सोनल के पास है, दोनों एक एक करके सुनाएंगी। पहले आशी फिर सोनल।
4: रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल मूछ के और पूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्त आता है बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। झूम झूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा।
5: मैं तो देख सकती थी कि जब भी आप अपनी कविता बोल रही थी ना, आप भी बहुत एंजॉय कर रही थी। तो अब अगली कविता हमें कौन सुनाएगा?
6: मैं।
5: सुनाओ सोनल।
6: राष्ट्र पशु में भारत का, बाघ मुझे सब कहते हैं। वन्य जीव सारे जंगल के मेरे पक्ष में रहते हैं। साइबेरिया का मैं वासी, अब भारत की शान। मुझे देख सकते हो जाकर रूस, चीन।

0: रान, चीतल साभर नील गाय मैं बड़े चाव से खाता, नहीं मिले तो चिड़िया खाकर अपनी भूख मिटाता। रेत घास की चढ़ दलदल में मैं आवास बनाता, हुई शाम सूरज ढलते ही मैं शिकार पर जाता। मेरी परम शक्ति के सम्मुख हाथी भी शीश झुकाता, राह छोड़ के हट जाते सब जब मैं आ जाता।
1: तो बच्चों, अभी तक हमने देखा आपने बहुत कुछ सीखा और आपने बहुत कुछ हमें बताया भी। अब बारी आ गई है आपने क्या क्या अभी तक सीखा उसको परखने की। तो अब शुरू हो जाए प्रश्नोत्तरी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
2: अरुणाचल प्रदेश।
3: बिल्कुल सही उत्तर दिया आयांशी। तो अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है?
4: मैं बताऊं, प्लांट्स, ट्रीज।
3: और कोई उत्तर देना चाहेगा?
4: ओजोन लेयर।
3: बिल्कुल सही सक्षम। कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है?
4: मैं बताऊं।
3: अरे सबको पता है, चलो एक एक करके अपना उत्तर दो।
4: 22 अप्रैल।
2: 22 अप्रैल
3: बिल्कुल सही उत्तर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
1: बच्चों सब तैयार हो अगले प्रश्न के लिए?
2: हाँ, बिल्कुल।
1: वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है?
4: नाइट्रोजन।
1: अरे वाह,
3: इस प्रश्नोत्तरी में तो मुझे बहुत मजा आया, दोस्तों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी। और अगले सप्ताह भी हम फिर मिलेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। बाल प्रतिभागी थे सोनल, कृतिका, सक्षम, आशी, अयांशी और पवित्रा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652773414 है और यूक्रेन में +3809335599

0: 5.58 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे भवन में प्रवेश करते समय केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के बारे में भी सोचें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी उनके काम का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल और मुंबई के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आलोक कुमार भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के तहत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। 662 गांवों में 60,000 से अधिक जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas has been celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट्स ऑफ द विकसित Vibrant Village Program 2026 at 4:30 p.m. today via video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister. The Viksit Vibrant Village Program 2026 was organized in two phases from the 4th to the 30th of last month, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The participants were selected through a nationwide online quiz competition that witnessed participation from more than 3 lakh youths. Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Minister of State for Education, Jayant

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनी फिल्म आह का ये नगमा, स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश का।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
2: क्या
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा
1: जी। मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
6: लीजिए सुनिए फिल्म आस का पंछी से ये गाना। स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश का।

0: Previous contractual positions. NHSRC is seeking applications for the post of Senior Consultant, Community Process, Senior Consultant, Comprehensive Primary Healthcare and Technology, Senior Consultant, Health Policy and Integrated Planning and Human Resources for Health and Junior Consultant for Knowledge Management Division. The vacancies carry a maximum age limit of 40 to 50 years. Applications are also invited for the post of Finance Analyst, Budget Section Division, Ministry of Health and Family Welfare on contractual basis, and the maximum age limit for this post is 45 years. NHSRC further invites applications for the post of a Lead Consultant, Child Health and Lead Consultant for Child Health, M&E and Documentation under the RCH Division, Ministry of Health and Family Welfare. The post carries a maximum age limit of 55 years. The detailed eligibility criteria, educational qualifications, experience requirements and terms of reference for all positions are available on the official website. Kindly do refer to www.nhsrcindia.org, or you could also go on to www.mohfw.gov.in. And the last date for submission of applications is 28th July 2026. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सीनियर कंसल्टेंट कम्युनिटी प्रोसेस, सीनियर कंसल्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी, सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ पॉलिसी एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग तथा जूनियर कंसल्टेंट नॉलेज मैनेजमेंट डिवीजन। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर आप विस्तृत जानकारी यदि चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org। इसके अतिरिक्त www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर भी ये जानकारी उपलब्ध है। कृषि विज्ञान केंद्र अरियालूर तमिलनाडु आमंत्रित करता है सहायक पद हेतु आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.kvkariyalur.org। पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान शिलांग ट्यूटर नर्सिंग कॉलेज के दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट neigrihms.gov.in। इसके अतिरिक्त 18 से 24 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कुल पद 6 हैं। पद है ई पब एसोसिएट NBT ई बुक ऐप। अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट www.nbtindia.gov.in। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नई दिल्ली कंपनी सचिव या कंपनी उप सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.nrdcindia.com। ईमेल का पता है jobs@nrdc.in। हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ये पद रिक्त हैं। परियोजना अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स, परियोजना अधिकारी यांत्रिक और पर्यवेक्षक मानव संसाधन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.huglicsl.com तथा www.cochinshipyard.in। भारतीय खान ब्यूरो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में प्रधान निजी सचिव के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है और इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ibm.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इन अमर पंक्तियों में केवल एक पुष्प की अभिलाषा नहीं, बल्कि दोस्तों हर उस भारतीय का संकल्प बसता है जो अपने राष्ट्र को स्वयं से ऊपर रखता है। करगिल विजय दिवस पर जब हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तो याद रखना होगा कि सीमा पर केवल एक सैनिक नहीं लड़ता, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी हर पल एक मौन युद्ध लड़ता है। एक माँ अपने बेटे को तिलक लगाकर विदा करती है, ये जानते हुए भी कि अगली मुलाकात शायद तिरंगे में लिपटी हो। एक पिता अपने आंसुओं को गर्व की मुस्कान के पीछे छुपा लेता है। एक पत्नी अपने सुहाग से अधिक देश की रक्षा को महत्व देती है, और एक नन्हा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ने से पहले उनके बलिदान की कहानी सुनना सीख जाता है। हमारे सैनिक बर्फ से ढकी चोटियों पर केवल अपनी जान की बाजी नहीं लगाते, वे करोड़ों भारतीयों के सुरक्षित भविष्य की रक्षा करते हैं। उनके परिवार अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को उस देश के नाम समर्पित कर देते हैं ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, अपने सपने पूरे कर सकें और तिरंगे के नीचे स्वतंत्र सांस ले सकें। आज पूरा राष्ट्र उन अमर वीरों और उनके परिवारों के सामने श्रद्धा से नतमस्तक है। उनका त्याग किसी एक दिन का स्मरण नहीं, बल्कि हर भारतीय के हृदय में सदैव जलने वाली वो अमर ज्योति है जो हमें राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का अर्थ सिखाती रहेगी। करगिल के अमर शहीदों को शत शत नमन, उनके परिवारों को राष्ट्र का कोटि कोटि प्रणाम।
1: Yes, and as the nation pays tributes to the heroes of the Kargil War on Kargil Vijay Divas, in a today's Dateline segment, we will revisit the extraordinary courage, sacrifice, and unwavering resolve of our brave soldiers, along with the silent strength and sacrifices of their families. We will look back at the defining moments of the war and honor the spirit that led India to victory.
0: नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं, बल्कि 4:33:39 हुए हैं, और ये समय है

0: आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी करेंगे हम याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओ, परिक्रमा के आज के अंक के साथ मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो अथर, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट अथर सईद, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेट लाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनकी बलिदान से सभी को गर्व।
1: In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers leading the country scaling new heights in defense production and space sector.
0: Shri Modi ne kaha khelon aur antarrashtriya olympiad mein behtareen pradarshan karne wali desh ki yuva shakti par garv hai.
1: President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to the country's brave soldiers for the supreme sacrifices during the Kargil war.
0: सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी।
1: एंड आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ओवर सेंट्रल महाराष्ट्र एंड उड़ीसा टुडे। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Kargil Vijay Diwas 2026. Now, Athar, every year there are certain dates on the calendar that do more than mark the passage of time. They remind us of who we are as a nation. And 26th of July is one such day.
0: बिल्कुल अभिषेक, वो दिन है जब हर भारतीय उस कहानी को याद करता है जो स्याही से नहीं बल्कि साहस से लिखी गई थी, और वो भी बर्फ से ढके पहाड़ों पर जहां सांस लेना भी एक चुनौती है। करगिल दिवस, करगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय के उन बहादुरों को श्रद्धांजलि है जिनके साहस, बलिदान और अटूट संकल्प ने भारत की संप्रभुता की रक्षा की।
1: And this year, Athar, as the nation commemorates the 27th Kargil Vijay Diwas, we remember a story that continues to inspire every generation of Indians. In 1999, Indian soldiers fought on the towering Himalayan peaks, even taking a few steps was exhausting.
0: बिल्कुल अभिषेक, सुनने वाले कल्पना करें कि वे भारी बैग लेकर किसी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। अब इसमें जमा देने वाली ठंड, हवा की कमी, लगभग सीधी खड़ी चट्टाने और ऊपर से दुश्मन की गोलीबारी भी जोड़ ले, तो हमारे सैनिकों को हर दिन इन्हीं हालात का सामना करना पड़ता था।
1: एंड आयरोनिकली अथर, द कॉन्फ्लिक्ट बिगन व्हेन होप्स फॉर पीस वर एट द हाईएस्ट। फॉलोइंग द लाहौर डिक्लेरेशन, मेनी बिलीव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर इंप्रूविंग, बट व्हाइल पीस टॉक्स कंटिन्यूड, Pakistani soldiers disguised as militants secretly crossed the line of control and occupied several Indian posts in the Kargil sector.
0: Unka maqsad ranneetik roop se aham Srinagar Leh highway par nazar rakhna, Abhishek, aur Ladakh tak Bharat ki supply lineon mein rukawat dalna tha. Pehli chetavani 3 mai 1999 ko mili jab sthaniya charwahon ne sandigdh gatividhi dekhi aur Bharatiya sena ko iski suchna di. शुरू में जो घुसपैठ मामूली लग रही थी वो जल्द ही कई पहाड़ी चोटियों पर बड़े पैमाने की घुसपैठ में बदल गई।
1: एंड अथर, इंडिया रिस्पॉन्डेड विद रिमार्केबल रिजॉल्व। द गवर्नमेंट मेड अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। इंस्टेड एवरी इंच ऑफ ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी वुड बी रिक्लेम्ड थ्रू डिटरमिंड मिलिट्री एक्शन।
0: इस तरह ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए सहयोग दिया, जबकि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपना बेड़ा तैनात किया। इस प्रकार तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और संयुक्त कार्रवाई का प्रदर्शन हुआ।
1: एंड अथर, द बैटल्स दैट फॉलोड बिकेम लेजेंडरी। इंडियन सोल्जर्स क्लाइम्ड सीमिंगली इम्पॉसिबल क्लिफ्स, ऑफन एट नाइट कैरिंग वेपन्स एंड सप्लाइज while facing enemy fire from higher ground, and one of the first major successes came with the recapture of Tololing on 13 June 1999, a victory that boosted the morale of troops across the sector.
0: इसके कुछ ही समय बाद टाइगर हिल की मशहूर लड़ाई हुई अभिषेक, जिसमें सैनिकों ने

0: कई तरफ आगे बढ़कर 4 जुलाई 1999 को सबसे अहम चोटियों में से एक पर फिर से कब्जा कर लिया। बटालिक, मुश्को घाटी, काक्सर और पॉइंट 4875 में लड़ाई जारी रही, जहां हर पहाड़ पर नए साहस और बलिदान की जरूरत थी।
1: एंड आफ्टर नियरली 3 months ऑफ रिलेंटलेस ऑपरेशंस अथर, इंडिया अचीव्ड कंप्लीट सक्सेस। Every occupied post was recaptured without crossing the line of control, earning widespread international respect for both military professionalism and strategic restraint.
0: और अभिषेक, 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की और 26 जुलाई को इस ऑपरेशन के औपचारिक रूप से पूरा होने का ऐलान किया गया। इस जीत के पीछे साहस की अनगिनत कहानियां थीं। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयंत थापर, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और कई अन्य बहादुर सैनिकों के नाम असाधारण देशभक्ति के प्रतीक बन गए।
1: And the thing to note here, Athar, is that Kargil also transformed India's approach to defense. The conflict highlighted the need for stronger intelligence, better coordination among the armed forces, faster decision-making, and greater technological capability. And over the past 27 years, these lessons have shaped a stronger and a more modern military.
0: और इसके नतीजे आज दिखाई दे रहे हैं अभिषेक। रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया भर के देशों तक पहुंच रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सृजन पोर्टल और पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट ने भारतीय उद्योगों, MSME और स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है।
1: And also, modernization is extended across every domain. New stealth frigates, survey vessels, and anti-submarine warfare ships continue to strengthen maritime security. Technology is also redefining warfare. Today, drones support surveillance and precision operations. Artificial intelligence assists in logistics, cyber security, and battlefield awareness.
0: अभिषेक, करगिल की भावना ने सुरक्षा से जुड़े बदलते खतरों के प्रति भारत की प्रतिक्रियाओं को भी दिशा दी। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिनूर ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित और तकनीक संचालित ऑपरेशन करने की भारत की बढ़ती क्षमता को दिखाया है।
1: Yet military strength is ultimately built on the courage of those who serve.
0: लद्दाख में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का नेतृत्व किया और 1999 के करगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमारे संवाददाता से और जानकारी हम हासिल करते हैं।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेड ए रीथ एट द केनटॉप एंड पेड ट्रिब्यूट्स टू द सोल्जर्स हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस During Operation Vijay in 1999 Kargil War. Addressing the gathering, Rajnath Singh said that the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valor of Indian soldiers. The Defense Minister recalled an anecdote shared by former Chief Secretary and former Indian Ambassador to the United States, Naresh Chandra, saying that a senior United States military general had once remarked that even the US Marines might not have achieved what Indian soldiers accomplished during the Kargil War. During the commemorative program, the Defense Minister also inaugurated the virtual walkthrough portal of the Kargil War Memorial, honored Veer Naris and the next of kin of Kargil martyrs, interacted with families, and flagged off the Shaurya Vijay Yatra motorcycle rally. The ceremony concluded with a renewed pledge to uphold the legacy of the brave heart of Operation Vijay and honor their unparalleled sacrifice in the service of nation. For Parikram, this is Anadali from Kargil Union Territory of Ladakh.
1: And this year's Kargil Vijay Divas commemorations include the Shaurya Vijay Yatra, motorcycle expeditions, battlefield heritage tracks, visits to the Kargil War Memorial and exhibitions showcasing modern military technologies.
0: ये कार्यक्रम युवा पीढ़ी को करगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर दिखाए गए असाधारण साहस से जोड़ते हैं। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचिए अभिषेक। हम काम पर जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, त्योहार मनाते हैं और रात में चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि कहीं दूर अपने परिवारों से दूर जीरो से भी कम तापमान में कोई सैनिक, वीर सैनिक, बिना किसी तारीफ की उम्मीद किए देश की रक्षा करते हुए पहरा दे रहा होता है। वो सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा होता है।
1: Well, that silent commitment, Athar, is perhaps the greatest lesson of Kargil. As India observes the 20th

0: 27th Kargil Vijay Diwas, the nation remembers not only a historic military victory, but also the enduring values that emerged from it: courage in adversity, duty before self, unity in purpose, and an unwavering commitment to the nation.
1: आज देश भर में शान से लहराता तिरंगा उन सभी बहादुरों की याद दिलाता है जिन्होंने उन बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी थी।

0: Yes, and on this Kargil Vijay Diwas, let us salute every brave heart of Operation Vijay, honor every family that made the ultimate sacrifice, and renew our commitment to building a stronger, safer, and a self-reliant India. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है।
0: Yes, Athar, and we start up with a story from Kozhikode. And Kozhikode is scripting a new chapter in its literary journey. The city that brought India's first UNESCO City of Literature tag is preparing to retain the honor. Now our new partnership is set to strengthen that global identity. We have a report.
2: The Kerala Institute of Local Administration, KILA, has joined hands with the Kozhikode City Corporation to launch activities related to UNESCO City of Literature. The UN body included Kozhikode as the first Indian city to get the honor in the list on October 31, 2023. Kozhikode has been associated with some of the other cities of literature across the world and has organized a few unique events on its own in the past 3 years. UNESCO reviews the tag every 4 years. An office for the City of Literature is functioning at the corporation's culture center at Anakulam. People representing Kozhikode had earlier attended literature camps in other cities of literature. A creative economy fest and film exhibition have also been held at Kozhikode. The officials are now planning to take the UNESCO branding to other cities across the country to open new possibilities. Steps will be taken to learn from the good models from other cities of literature. Since music, food design, and architecture can also be linked with literature, the possibilities of creative economy can be explored. This could also boost the tourism sector and the economy. Thus, the fame of Kozhikode, once known as the city of truth, is spreading across the world once again. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
0: And moving on, Prime Minister Narendra Modi will interact with participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026 this evening via video conferencing. And over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister.
3: The Viksit Bharat Vibrant Village Program 2026 was organized in two phases from 4th to 30th of the last month, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh, and Uttarakhand. The participants were selected through a nationwide online quiz competition that witnessed participation from more than 3 lakh youth. As part of the program, participants lived with local communities and undertook activities such as Swachhata drives, awareness campaigns on government schemes, Yuva Sammelans, cultural exchange programs, tree plantation drives, mini model panchayat simulations, interactions with local artisans, and visits to institutions of strategic importance. The program provided participants with first-hand exposure to the socio-economic landscape, cultural heritage, and developmental aspirations of India's frontier regions while fostering community participation, national integration, and a deeper understanding of the strategic importance of border villages. The Viksit Vibrant Village program, implemented through My Bharat, has been conceptualized to realize Prime Minister's vision of treating India's border villages as the first villages of the nation and making them active partners in the journey towards Viksit Bharat. With Nitika Saklain Akhtar for Akashvani News, Delhi.
1: और विशेष अब रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड APMDTCL ने अरुणाचल प्रदेश में चुनिंदा जगहों पर HPCL रिटेल आउटलेट खोलने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: The MOU aims to utilize suitable sites to be managed by APMDTCL for establishing fuel retail outlets, thereby improving fuel availability, creating employment opportunities and generating sustainable revenue for the corporation. Initially, as a pilot project, at least 5 numbers of retail outlets in which corporation will act as a facilitator for arrangement of land and operation of the outlets in joint collaboration of both the public sector undertaking. There is also provision for creating various utility services, kiosk, cafeteria and smart point of stores for traditional artifacts as per the feasibility of locations. Both organizations expressed confidence that this partnership will strengthen fuel infrastructure in Arunachal Pradesh, improve public access to quality petroleum products and contribute to the socio-economic development of the state through long-term collaboration. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल. अभिषेक,
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी कंग्रेचुलेटेड स्क्वाश प्लेयर अनहत सिंह ऑन विनिंग द गोल्ड मेडल एट द 2026 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्क्वाश प्लेयर टू विन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप टाइटल. एंड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर मोदी डिस्क्राइब दिस एज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट एंड सेड द फीट वुड फर्दर पॉपुलराइज स्क्वाश अमंग द यूथ.
1: डोरेंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है. प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बारे में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट सुन लेते हैं. अभिषेक,
5: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरेंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है. खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है. आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा. मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे. स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है. आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान.
1: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज है जन्मदिन, जन्मदिवस या जयंती. और इस क्रम में पहले हम याद करेंगे डॉक्टर उबैद सिद्दीकी को जिनकी आज है पुण्यतिथि. अभिषेक, विज्ञान की दुनिया में कुछ खोजें केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के शोध का आधार बन जाती हैं. ऐसे ही प्रख्यात वैज्ञानिक थे डॉक्टर उबैद सिद्दीकी. आज डॉक्टर उबैद सिद्दीकी की पुण्यतिथि है. वे भारत के अग्रणी आणविक जीव विज्ञानी थे. उन्होंने आनुवांशिकी और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध किया और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यानी NCBS बेंगलुरु की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया. भारतीय विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.
0: Yes, and we are also remembering Bhaskar Chandavarkar, who passed on this day in 2009. He was a prominent Indian sitar player, academic, musicologist and composer. He achieved widespread renown for his unique ability to blend Indian classical traditions with Western musical influences across parallel Indian cinema and experimental theatre. And Bhaskar was a dedicated disciple of the legendary sitar maestro Pandit Ravi Shankar. He extensively studied Hindustani vocal traditions, Western classical music and jazz. His musical style was defined by seamless synthesis of traditional raga frameworks with contemporary instrumentation. He composed musical scores for over 40 films across a multitude of languages, including Marathi, Hindi, Kannada, Malayalam, Bengali and Odia. Let's listen in to one of his hit songs.

0: भारत की कला, संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए जिन विद्वानों के कार्य आज भी मार्गदर्शक माने जाते हैं, उनमें वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज वासुदेव शरण अग्रवाल की पुण्यतिथि है। वासुदेव शरण अग्रवाल प्रख्यात पुरातत्वविद, कला इतिहासकार और साहित्यकार थे। भारतीय संस्कृति, मूर्तिकला और प्राचीन इतिहास पर उनका शोध आज भी महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है। उनकी चर्चित कृतियों में इंडिया एज नोन टू पाणिनि, पाणिनि काल भारतवर्ष तथा हर्ष रचित एक सांस्कृतिक अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय इतिहास और संस्कृति के गहन अध्ययन में उनके योगदान को आज भी आदरपूर्वक याद किया जाता है।
1: प्रोफेसर मधुसूदन कनंगो पास्ड अवे ऑन दिस डे 2011। ही वाज अ प्रीएमिनेंट इंडियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट एंड गैरंटोलॉजिस्ट। ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पायनियर इन द स्टडी ऑफ एजिंग इन इंडिया and gene expression theory of aging. He developed this widely accepted theory which posits that aging is primarily caused by deliberate program changes in gene expression over time rather than just random cellular damage. And Kanango conducted groundbreaking research showing how specific tissue enzymes in the brain, heart and liver alter their function, structure and responsiveness to hormones as an organism grows older.
0: और जन्म दिवस की बात करें अभिषेक, तो आज स्वतंत्रता की लड़ाई केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि समाज को जागरूक बनाने के प्रयासों में भी लड़ी गई। इस दिशा में मालती चौधरी का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनका हम याद कर रहे हैं इस समय। 26 जुलाई 1904 में जन्मी मालती चौधरी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी विचारक और समाजसेवी थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और ओडिशा में ग्रामीण विकास, महिला शिक्षा तथा आदिवासी कल्याण के लिए आजीवन कार्य किया। उनके सामाजिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनका जीवन सेवा, सादगी और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है।
1: सर मिक जैगर इज एन इंग्लिश म्यूजिशियन, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर, बेस्ट नोन एज द लीड सिंगर एंड को-फाउंडर ऑफ द लेजेंडरी रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स। Born on July 26, 1943 in Dartford, England, he has spent more than 6 decades shaping the world of rock and roll with his powerful voice and high energy stage performances. The Rolling Stones were formed in 1962. He and guitarist Keith Richards created one of the most famous songwriting partnerships in music history, producing classic hits like I Can't Get No Satisfaction and Painted Black. And he has also released solo albums and acted in films like Performance and Ned Kelly. He was knighted by the British monarchy in 2003 for his lifelong services to music. Let's listen in to the band's hit track, Painted Black.

0: और अब हम याद करेंगे कृष्ण पट्टाभी जोइस को, भारतीय योग की परंपरा को विश्वभर में नई पहचान दिलाने वाले जिन महान गुरुओं का नाम सम्मान से लिया जाता है उनमें कृष्ण पट्टाभी जोइस का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 1915 में जन्मे कृष्ण पट्टाभी जोइस विश्वविख्यात योगाचार्य थे और अष्टांग विन्यास योग के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। मैसूर स्थित उनके योग संस्थान में दुनिया के अनेक देशों से विद्यार्थी प्रशिक्षण लेने आते थे।
1: Yes, and we also remembering Aldous Huxley, who was born on this day in 1894. He was an English writer, philosopher and social critic. He is best known for his classic 1932 dystopian novel, Brave New World, which envisions a scientifically controlled totalitarian future. Over his lifetime, he published nearly 50 books, including essays, poetry and philosophy. And also Jason Statham is a famous English actor and former competitive diver known for starring in high-octane action thriller films. Born on this day in Shirebrook, England, he became a prominent Hollywood action star recognized for playing tough anti-heroes. And also Dame Helen Mirren is an acclaimed English actress widely regarded as one of Britain's greatest performers. She's renowned for exceptional versatility across theatre, film and television and is famously the only person to achieve both the US and UK triple crowns of acting. And she won an Academy Award for her performance as Queen Elizabeth II in The Queen, the movie in 2006 and an Emmy for playing Queen Elizabeth I in the miniseries Elizabeth I in 2005. And also author George Bernard Shaw was born on this day in 1856. He was a legendary Irish playwright, literary critic and socialist activist. He is widely considered as one of the most significant English language dramatists since the 17th century, second only to William Shakespeare in his influence on the theatre. He remains the first person to achieve the unique distinction of winning both a Nobel Prize in Literature in 1925 and an Academy Award in 1938. And news just in, this is a sports news, Athar.
0: Ji.
1: In men's cricket, India was 64-1 in 5.5 overs against Zimbabwe in the third and final T20 International in Harare when reports last came in. Earlier, the visitors won the toss and elected to bat.
0: और शताब्दी समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाज़त दीजिए अतहर सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। इसी के साथ अनुमति दे, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामलों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
3: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
2: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय

0: समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. He gave an example of waste to wealth from Sitamarhi in Bihar, where waste is being recycled to create attractive benches.
2: बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: Prime Minister Narendra Modi is interacting with the participants of Viksit Vibrant Village Program 2026 through video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory are sharing their experiences with the Prime Minister. The Viksit Vibrant Village Program provides participants with first-hand exposure to the socio-economic landscape, cultural heritage and developmental aspirations of India's frontier regions while fostering community participation, national integration and a deeper understanding of the strategic importance of border villages. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honour the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Later, speaking to media, Mr. Joshi said he is currently holding review meetings to gain a comprehensive understanding of the ministry's functioning, policies and ongoing initiatives. The Ministry of Jal Shakti has said that Rajnandgaon district in Chhattisgarh has

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। दोस्तों, कहते हैं आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है बल्कि दुनिया को महसूस करने का एक बहुत सुंदर द्वार है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की दृष्टि कमजोर हो जाए तो उसका जीवन अनेक चुनौतियों से भर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक तकनीक और समय पर उपचार की बदौलत कई नेत्र रोगों का इलाज आज संभव है और लाखों लोगों की आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ और नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर राका भारती। डॉक्टर राका भारती आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल से सेवानिवृत्त होकर इस समय दृष्टिबाधित और दिव्यांगों के लिए समाज सेवा कर रही हैं और दृष्टिबाधा की रोकथाम और जन जागृति के लिए इलाज और लगातार कार्य कर रही हैं। बहुत स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपका गोल के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके और मैं बताना चाहती हूँ हमारे सभी श्रोताओं को कि ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात अगर एक शब्द में कही जाए तो वो ये है कि हमें अपनी नेत्र, अपनी विजन, अपनी आंख का खुद ध्यान रखना आना चाहिए। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि हमें कब कब आंख के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
0: जी, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि पहले ही डॉक्टर साहब को दिखा देना चाहिए ताकि जो है समय रहते दृष्टि बचाई जा सके।
1: सबसे जरूरी है अगर आंख में पानी आ रहा हो, लाल हो, दर्द हो या निगाह में कमजोरी आ रही हो, या आप देखें कि आपकी दोनों पुतलियां सामने शीशे में जब देखते हैं तो आपको लगता है कि एक पुतली आंख की थोड़ी सी भेंगापन जैसे जिसे हम कहते हैं अगर वैसा आ रहा है, अगर सिर में दर्द है, अगर बुखार तेज है और आंख के इन लक्षणों के साथ में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे वॉमिटिंग हो रही है, तो इस तरह की सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आंख की इमीडिएटली जांच कराएं और किसी नेत्र विशेषज्ञ से ही कराएं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिस समय में हमें हमेशा ही आंख के डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, जैसे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय पे बच्चों की आंख चेक कराना जरूरी है, 3 महीने पे उस बच्चे की आंख चेक कराना जरूरी है। उसके बाद अगर सब कुछ सही है, जब वो स्कूल जाने लगता है उस समय में उसकी आंख की जांच जरूरी है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर साल बच्चों की जांच कराते रहें। 40 साल के पास में आंख की जांच फिर से बहुत जरूरी होती है क्योंकि उस समय में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने का डर होता है, जैसे कि काला मोतिया।
0: जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जो दृष्टि बाधिता है इसके प्रमुख कारण आप क्या कहेंगी कि इनमें से क्या कोई ऐसे भी कारण है जिनका समय पर इलाज संभव है?
1: बिल्कुल, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो विजन की प्रॉब्लम है वो कैटरेक्ट की है, सबसे ज्यादा नंबर में देखा जाए मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद का टाइम पे इलाज होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम उसका टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो वो काला मोतिया में भी बदला जा सकता है और विजन का लॉस परमानेंट भी हो सकता है। इसका इलाज बहुत आसान है, ऑपरेशंस की सुविधा सब जगह उपलब्ध है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे इसके मशीनें हैं जिससे कि बहुत कम टाइम में ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन 1-2 मिलीमीटर तक के इंसिजन से पूरा कैटरेक्ट निकल के और उसी से ही लेंस डल जाता है,
0: यानी बहुत कम समय में इसका ऑपरेशन हो जाता है।
1: बिल्कुल, और ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद आप अपने घर जा सकते हैं, अपने आप कोई पट्टी नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ दवाइयां खानी और दवाइयां डालनी होती हैं और उसके हफ्ते 10-15 दिन में आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जो ये मोतियाबिंद तो आपने बताया, इसके अलावा जैसे ग्लूकोमा है या रेटिना की कई बीमारियां हैं, उनका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है दृष्टि पर?
1: हाँ, एक्चुअली काला मोतिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक साइलेंट विजन लॉस करता है, मतलब एक ही पता नहीं चलता और अचानक से निगाह कमजोर होते होते होते होते पता चलता है कि निगाह एकदम से कमजोर हो गई। कई बार ये भी होता है, एक और तरह का जिसे हम एक्यूट ग्लूकोमा कहते हैं, उसमें सडनली बहुत सीवियर पेन होता है और उसके बाद में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से निगाह कमजोर हो जाती है। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका जो काला मोतिया या ग्लूकोमा की वजह से विजन लॉस जो होता है, अगर टाइम पे उसका इलाज ना हो तो वो निगाह वापस नहीं आ सकती। सफेद मोतिया के साथ तो यह है कि हमने लेंस को निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया और विजन नॉर्मल हो गया, लेकिन काला मोतिया के साथ एक बार निगाह अगर चली जाती है तो वो आंख के अंदर इतनी डैमेज कर देता है कि उसके बाद निगाह नहीं आ पाती।

0: जाती है
1: जी। ये तो आपने ये बीमारियां बताई, लेकिन आजकल जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये बहुत लोगों को है, तो क्या इससे भी कभी आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ सकता है?
0: अगर किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर हाई है तो उन्हें रेगुलरली अपनी आंख चेक करानी चाहिए। एक्चुअली अच्छा। क्या है कि हमारे शरीर में जो खून की नालियां होती हैं, जिसमें खून प्रवाह करता है, उसमें सिर्फ जीते जागते सिचुएशन में, जब तक इंसान अलाइव है, उस समय में सिर्फ एक आंख ही ऐसा शरीर का ऑर्गन है जिसमें कि हम उनको जीती जागती अवस्था में देख सकते हैं, हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस हालत में है। तो अगर डायबिटीज है तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको बता दिया जाए कि आपको अपनी आंख की जांच रेगुलरली करानी है। जब जब डॉक्टर आपको कहते हैं आंख की चेक कराना, आपको इमीडिएटली चेक कराना है। जैसे ही आपको पता चले कि आपको शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप इमीडिएटली चेक कराएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा भी अगर कहीं पे ब्लीडिंग होने लगे तो निगाह पे बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ सकता है, और उसका इलाज कराने के बाद भी कभी कभी पूरी विजन नहीं आ पाती है, तो ये बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने डायबिटीज की बात बताई, लेकिन जो हमारे युवा हैं, या युवा क्या बच्चे किशोर भी हैं, मोबाइल और कंप्यूटर का लंबे समय तक उपयोग करते हैं, तो क्या ये जो उपयोग है लंबे समय तक, ये भी आंखों को प्रभावित कर सकता है, और इसके अगर बच सकते हैं उसके भी उपाय बताएं?
0: बिल्कुल, एक्चुअली आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और एक्चुअली ये देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं
1: जी।
0: तो 2 साल से पहले तो बच्चों को टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए।
1: ये बहुत अच्छा संदेश है सभी माओं के लिए,
0: स्क्रीन से 2 साल तक तो बिल्कुल अलाउ ना करें, उसके बाद में भी कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जितना भी बचा लेंगे उतना अच्छा है। आजकल जो एक जो मायोपिया है, मतलब जिसमें कि बच्चों को चश्मा लग जाता है, इसकी समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये लगातार बढ़ती जा रही है, और ये समस्या ऐसी है जिसमें कि अगर चश्मे का नंबर बढ़ता जाए तो वो आंख को बहुत तरह से आंख के अंदर वो डैमेज कर देता है। रेटिनल डिटैचमेंट जो एक बहुत सीरियस समस्या है, वो अगर ये चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी आंख की देखभाल करें, जैसा डॉक्टर आपको बताते हैं उसका ध्यान करें, 1-2 घंटे से ज्यादा लगातार ना पढ़ाई करें और ना स्क्रीन को देखें। अगर आपने कंप्यूटर पे काम करना है, स्क्रीन पे काम करना है, तो उसमें 1 घंटा काम करके 5 मिनट का गैप जरूर दें, जिसमें आप अपनी आंख को रेस्ट दें।
1: तो अपनी आंखों को रेस्ट दें, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये स्थिति पहुंच जाती है कि दृष्टि बाधित हो जाते हैं, तो क्या दृष्टि बाधित लोगों की दृष्टि सर्जरी से वापस लाई जा सकती है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि नेत्रदान पर, नेत्रदान कितना महत्वपूर्ण है और आम लोग इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नेत्रदान बहुत जरूरी है और हर कोई नेत्रदान कर सकता है, सिर्फ 2-3 कंडीशंस हैं जिसमें कि नेत्रदान मना किया जाता है, जैसे कि अगर कुत्ते ने काटा है या कोई बहुत ज्यादा सीरियस, जैसे कि कोविड में मना किया था, जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ है।
1: लेकिन आज तो सब कोविड से निकल चुके हैं, वो दौर बीत चुका है,
0: और अब की सिचुएशन ये है कि नेत्रदान करना बहुत जरूरी है, और आपको सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को बता दें कि मेरे जाने पे मेरी आईज डोनेट हो जाए, और ये काम बच्चों को बता दें कि इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दें।
1: इसी से जुड़ा जो सवाल मैंने पूछा था कि क्या दृष्टि बाधित लोगों की दृष्टि सर्जरी से वापस लाई जा सकती है?
0: बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे कि अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, इसको मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगी कि जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी है, घड़ी का शीशा आपका जो है ना वो हेजी हो गया, मतलब ये कि घिस गया, तो घिसने की वजह से आपको टाइम ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, तो आपने उसका शीशा बदल दिया, अंदर की घड़ी आपकी ठीक काम कर रही है, तो आपने उसका शीशा बदला और आपकी घड़ी में आपको टाइम दिखाई देने लगेगा। यही हालत होती है जब हमारे पेशेंट्स में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है, जब कॉर्निया सफेद है लेकिन अंदर से जो आंख है, रेटिना और बाकी आंख के जो पार्ट्स हैं, वो सारे नॉर्मल काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर देख के बता सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में कॉर्निया बदली जा सकती है, जो लोग आंख डोनेट करते हैं उनकी कॉर्निया ले ली जाती है और उसको नॉर्मल जो लेके, और जो जिनमें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है या कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, उसको उससे बदल दिया जाता है, और ये ऑपरेशन बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ऑर्गन डोनेशन में ये सबसे पहला ऑर्गन था जो कि सक्सेसफुली किया जा सका, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स हैं उनका इलाज जल्दी से जल्दी करा लिया जाए, और उनके इलाज का रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे देश में हर जगह आज के लिए इलाज हो रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार की सर्जरीज इस समय उपलब्ध हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने तरह तरह के जो प्रयोग किए हैं, लेकिन इससे भी जुड़ा एक प्रश्न है कि क्या ऐसी कुछ स्थितियां हैं कि दृष्टि बाधित होने से रोका जा सकता है? क्या ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो खान पान से जुड़ा हो या हमारी जीवन शैली?

0: से जुड़ा हो।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है जानना, सारे अगर ब्लाइंड लोगों को ले लिया जाए तो दुनिया का जो हर तीसरा ब्लाइंड इंसान इंडियन है, ये बहुत हाई फिगर है, बहुत
0: अच्छा,
1: हाई फिगर है। पहले करीब करीब 1976-77 के करीब ये एवरी सेवंथ ब्लाइंड था। अब दुनिया भर में उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया है, उन्होंने प्रिवेंट किया है जैसे खान पान का ध्यान करके, इंजरीज को प्रिवेंट करके, उन्होंने ध्यान किया है कि प्रेगनेंसी, दुनिया की 30% जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं वो इंडिया में पैदा होते हैं, तो ये भी बहुत हाई फिगर है। ये इतना ज्यादा प्रीमेच्योरिटी में बच्चे की विजन सेव करना एक बहुत बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता है अगर उसकी विजन की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में बच्चे की आंख डैमेज होती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि आंख उसकी बचाई जा सके।
0: यानी कि गर्भावस्था में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है शुरुआत से ही,
1: बच्चा फुल टर्म हो, मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, बहुत जरूरी है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी ना हो, उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो, दूध मिले, रेस्ट मिले, उसको इंजरीज ना हो, ताकि और मदर का पूरा प्रेगनेंसी में उसका मेडिकली उसका ख्याल किया जाए, ताकि उसकी प्रेगनेंसी पूरी नॉर्मल फुल टर्म प्रेगनेंसी हो सके, ताकि बच्चा जो पैदा होना है वो नॉर्मल हो सके। तो उस केस में बहुत सारी आंख की डिजीजेस वो बच्चा बच सकता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको जरूर किसी डॉक्टर को आंख चेक करा देना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि बच्चे की आंख बिल्कुल ठीक है, उसको कोई भी विजन की प्रॉब्लम नहीं है। प्रिवेंशन को लेके अगर हम बात करें तो हमें इन्फेक्शन से बहुत जरूरी है बचना, और इन्फेक्शन के साथ साथ में हम जैसे गुलाब जल या कोहिम से भी दवाई लेके आंख में डाल लेते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत डेंजरस है। गुलाब जल आंख में बिल्कुल ना डालें क्योंकि वो स्टरलाइज नहीं होता। उसके साथ साथ में ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो दिवाली दशहरे और जो होली के टाइम पे रंगों से और दिवाली दशहरे पे पटाखों से, तीर कमान से इतनी ज्यादा आई इंजरीज होती है, जो कि बहुत तकलीफ होती है देख के। कभी कभी एक आंख इंजर होने के बाद में दूसरी आंख का भी विजन जा सकता है। केमिकल से इंजरीज जो होती हैं, जहां पर भी केमिकल फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करें, घर के अंदर कोई ऐसा केमिकल ना रखें जो अगर गलती से आंख में चला जाए तो वो आंख को डैमेज कर सके। ऐसा बहुत सारे बच्चों में हो जाता है। एसिड बर्न्स के केसेस, उनको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एसिड बर्न्स के केसेस जो होते हैं उनमें विजन लॉस हो जाता है, बिकॉज आंख के अंदर अगर एसिड गिर जाता है, और उससे भी डेंजरस अगर एल्कली गिर जाती है तो विजन का लॉस जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो इन चीजों को जो है ना प्रिवेंट किया जा सकता है। होली का रंग जो है वो आजकल बहुत अल्कलाइन होता है या कभी कभी बहुत उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो भी आंख में अगर चला जाता है तो वो बहुत बुरी तरह से आंख को डैमेज करता है। एक बार मेरे पास 4-5 महीने का बच्चा आया था, उसकी आंख में होली का रंग था कि मैं निकालती थी और मेरे को इतना दुख होता था देख के, बच्चे को इतनी तकलीफ होती थी उस काम में। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको हम प्रिवेंट करें तो बहुत अच्छा है। बच्चों की न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, बच्चों को विटामिन ए जरूर मिलना चाहिए उनको, जैसे अब हरा धनिया है, सीताफल है, आम है,
0: पीले पदार्थ जो है, जो पीला रंग
1: आराम से विटामिन ए मिल जाता है। तो ये खान पान का अगर हम अच्छे से ध्यान करें, ताकि हमें विटामिन ए बच्चों को या बड़ों को या किसी को भी किसी भी एज में ये सब डेफिशिएंसी ना हो।
0: जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दृष्टि बाधा आ जाए, तो दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए आज कौन कौन सी ऐसी आधुनिक तकनीकें और सहायक उपकरण इस समय उपलब्ध हैं जो कि उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं?
1: ये हमारे देश में बहुत ज्यादा ये हम पीछे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, अगर हम बात करें अमेरिका की या यूरोप की या इवन जापान की या सिंगापुर की, वहां पर इतना ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। हमारे बराबर में जापान में एक बच्चा ट्रेवल कर रहा था और हमें पता नहीं लगा कि ये ब्लाइंड है, क्योंकि वहां पे जो बैनिस्टर्स हैं जहां पे ट्रेन जाती है वहां पे, उसमें वहां पे ब्रेल लिखी हुई है।
0: अच्छा।
1: तो वो बच्चा उसी से उसको पता चल जाता है कि मुझे कौन से स्टेशन पे जाना है और कैसे अपने काम पे पहुंचना है। और मैं चाहती हूं कि मेरी ये आवाज हर एक इंसान के दिल तक पहुंचे, हर एक इंसान चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में है उसके दिल तक ये बात जरूर जाए। अगर हमारे पास में कोई बच्चा दृष्टि बाधित है, कोई इंसान दृष्टि बाधित है, तो वो अपने घर से अपने काम पे, अपने स्कूल पे, अपने ऑफिस, इवन अस्पताल, ट्रेन, कहीं भी वो अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है।
0: लेकिन अब जैसे डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली मेट्रो चल रही है उसमें बहुत सारे दृष्टि बाधित भी यात्रा करते हैं और दिल्ली मेट्रो की तरफ से सहायक रहते हैं जो कि उन्हें बकायदा डिब्बे तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद जब वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं तो वहां से बाहर लेकर जाते हैं। पर फिर भी इस दिशा में आपकी बात सही है कि काफी काम करने की जरूरत है,
1: ज्यादा जरूरत है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ श्रीधरन सर को, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और ये जो वॉकिंग स्ट्रिप्स उन्होंने लगाए लगाई हैं। एक और काम बहुत आसान है जो बहुत मुश्किल नहीं है, सेल फोन्स में सेफ्टी डिवाइस लगाई जा सकती है कि अगर जो इंसान जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके सेल फोन में एक डिवाइस हो जिससे कि अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उनको कोई तकलीफ आती है, कोई उनको इवन उनके आसपास में कोई इंसान उनको अटैक करने की कोशिश करता है तो वो एक्टिवेट हो जाए जिससे कि उसकी फोटो भी ली जा सके और लोग अलार्म हो जाएं और साथ में एक मैसेज पुलिस स्टेशन में चला जाए, एक मैसेज उनके घर चला जाए।

0: ताकि ये बच्चों के लिए एक तरह की एक सेफ्टी डिवाइस क्रिएट हो जाए। ये डिवाइस जो है ये बहुत यूजफुल है
1: जी। मोबाइल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उपकरण है। मैं भी देखती हूँ जब यात्रा करती हूँ कि बहुत सारे जो हमारे भाई हैं बहन हैं वो बाकायदा जो ध्वनि से हम बोलते हैं उससे आराम से बात कर पाते हैं, सुन पाते हैं और एक काफी सामान्य जीवन तक पहुंचने की, मतलब हमें लगता है कि काफी सामान्य जीवन जी रहे हैं। ये पॉसिबल है अगर तरह तरह के उपकरण से वो जुड़ जाते हैं। जैसा कि आपने सिक्योरिटी की, सेफ्टी की बात की, सुरक्षा की दृष्टि से अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है हमारे इंजीनियर्स उनके लिए लेकर आए जिससे कि जो तार है वो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े तो उनको जीवन जीने में और भी आसानी होगी। डॉक्टर साहब, एक और जो सवाल चलते चलते मन में आ रहा है कि यदि परिवार में ऐसा दृष्टि बाधित व्यक्ति हो तो समाज और परिवार क्या कर सकता है कि उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनकी शिक्षा और रोजगार में सहयोग मिले।
0: ये बहुत जरूरी है कि वो लोग उसका साथ दें, उसकी मदद करें। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको स्कूल छोड़ दें, उसको कॉलेज छोड़ दें, उसको उसके ऑफिस से उसको ले आए, उसको कम से कम एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में हेल्प कर दें तो उसके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये।
1: जी, इस समय जरूरत है कि जिस प्रकार से सामान्य जीवन में उनका समावेश हो सके उस प्रकार के प्रयासों को करने का। हालांकि हमारे भारत सरकार में जो नौकरियां हैं उनमें भी उनके लिए प्रावधान है और अन्य जो सुविधाएं हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ब्रेल में पढ़ने की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा वहां पे रीडर्स होते हैं, राइटर्स हैं जो लिख पाते हैं, ये सारी सुविधाएं। लेकिन और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। हमें भी चाहिए एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर, कि अगर हमारे साथ हमारे आसपास हम कभी भी ऐसा देखें तो जरूर उसकी तरफ हाथ जरूर बढ़ाएं। विश्वास कीजिए वे खुद आत्मनिर्भर ही हैं और जब आप उनकी ओर हाथ बढ़ाएंगे तो वो जरूर एक कदम और आगे निकलेंगे।
0: एक अच्छी बात यह है कि हमारे देश के जो आई सर्जन हैं उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आज दुनिया में कहीं भी कोई भी इलाज उपलब्ध है तो वो हमारे देश में भी उपलब्ध है। तो इस वजह से हमको ये जरूरत नहीं है कि विदेश में जाके उनका इलाज कराया जाए या कोई ऐसा बीमारी है जिसका हमारे पास इलाज नहीं है। इलाज बहुत सारी चीजों का अब इलाज भी उपलब्ध है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत जी जान से इस काम में लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत लोगों को इससे भला भी हो रहा है। और मेरा ये कहना है कि स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन हो जहां पे बच्चों के रहने की भी जगह हो ताकि जो भी जगह बच्चे, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी समस्या है,
1: यानी कि छात्रावास होना
0: हर एक स्कूल में हो जाए तो वो चाहे जितने भी बच्चे हैं स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनके गार्डियंस हो जाएंगे, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। कॉलेज में भी अगर हैं तो कॉलेजेस में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सबके लिए हॉस्टल्स हो जाएं और जब वो हॉस्टल से पास आउट करते हैं तो एक कॉलेज की जिम्मेवारी होनी चाहिए ये देखने की कि इसके बाद ये कहां जाएं। तो ये दो तीन चीजें जो है ना मेरे बहुत मन में थी और आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं जो कि आपने मेरी आज आवाज हमारे देश के जगह जगह पहुंचवाने में मेरी मदद की, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके दिल में ये चीज जाएगी तब ये समस्या का हल निकलेगा।
1: जी, आकाशवाणी का ये कार्यक्रम इन्हीं आवाजों को सामने लाने का प्रयास है कि हर व्यक्ति का जीवन बेहतर बन सके। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत कम समय में आपने बहुत सारी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी और आप FM गोल्ड के स्टूडियो में आए। डॉक्टर राका भारती, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और समेटते हैं अपना कार्यक्रम जिसका नाम है हौसले। इसी के साथ रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
2: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं और पूर्वोत्तर राज्य के एक खास राज्य की हम सैर पर आपको लिए चलते हैं।
3: आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में बसा एक समृद्ध संस्कृति और विविधता वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, विविधता और पर्यटन का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। आइए ले चलते हैं आपको सिक्किम की इस अद्भुत यात्रा पर।

सिक्किम राज्य अलग अलग समुदायों, धर्मों और परंपराओं का संगम है। यहाँ मुख्य रूप से लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदाय निवास करते हैं, जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। लेपचा समुदाय, जिन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है, प्रकृति पूजक रहे हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती मूल के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि नेपाली समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लोसार जो तिब्बती नववर्ष है, लुसोंग, सागा दावा, फांग लैप्सोल, दशैन और तिहाड़ दिवाली यहाँ के दूसरे प्रमुख त्योहार हैं। इन उत्सवों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेपचा, लिंबू, हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। नेपाली भाषा यहाँ की सबसे आम भाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा तिब्बती, शेरपा और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। इस राज्य की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधताओं से भरी है। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चोकसी टेबल, थंका चित्रकला और बांस बेंत के उत्पादों के निर्माण में निपुण हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुटीर उद्योग संस्थान इन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और इन्हें प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस राज्य का भोजन भी पारंपरिक है, जो नेपाली, तिब्बती और भूटानी व्यंजनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में मोमो, थुक्पा गुंडक, सिंकी, बांस शूट और किण्वित सोयाबीन से बने व्यंजन शामिल है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और स्थानीय लोग तोंगबा, जो कि बाजरा से बना एक पेय होता है, उसका भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है, 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। सोमगो झील गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर स्थित है,

0: 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पूर्वी सिक्किम में स्थित अरितार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खांग चेंदोंगा का लुभावना दृश्य देखा जा सकता है। नाथुला दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। थुमथांग घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। सिक्किम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय भी उपयुक्त है। सिक्किम राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राज्य की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो यदि आप सिक्किम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समृद्ध राज्य को अपनी पर्यटन सूची में जरूर शामिल करें। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
1: श्रोताओं, हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राण निछावर किए। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू पूर्वोत्तर भारत की वो प्रेरक विभूति है जिन्होंने एक छोटी सी आयु में ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोहा लिया और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति की रक्षा की, पूर्वोत्तर भारत की संप्रभुता की रक्षा की और स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज लिखा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। समाज और देश की सेवा में उनके इस अतुलनीय योगदान से उन्हें आज हम एक बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर याद करते हैं। तो आइए रानी गाइडिनल्यू के व्यक्तित्व पर एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत उन महान विभूतियों से सुशोभित है जिन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं।
2: भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा में असंख्य वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। पूर्वोत्तर की भूमि भी त्याग और बलिदान की गाथा से भरी पड़ी है। यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना हमेशा से रही है। इन्हीं में से एक थी रानी गाइडिनल्यू, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और अटूट विश्वास से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और पूर्वोत्तर की जनता में स्वाधीनता की चेतना जगाई।

रानी गैदिनलियो का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। वे ज़ेलियांगरोंग जनजाति से थीं, जो नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा, तेज बुद्धि और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जादोनांग से प्रेरणा ली। जादोनांग उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इसका उद्देश्य था अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की रक्षा करना। वर्ष 1931 में जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी, तब मात्र 16 वर्ष की आयु में गैदिनलियो ने उस अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को संगठित किया और

हिरेका आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष और अपने समुदाय को आत्मनिर्भर, एकजुट और जागरूक बनाना। गायदिनलू ने कहा था, हम अपने पर्वतों और नदियों की रक्षा करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। उनके नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों में कई गांवों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छापामार शैली में काम किया, ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले किए और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक महिला घोषित किया और उनके सिर पर इनाम रखा।

0: से नहीं डरते।
1: 1932 में रानी गादिनियो को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थीं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वे नागालैंड, गुवाहाटी और फिर आइजोल की जेलों में रखी गईं। कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने रानी गादिनियो के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की बेटी कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि वे बाद में रानी गादिनियो के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे रिहा की गईं। उस समय उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे हर गांव और हर पहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जीवन के शेष वर्ष अपने समाज के उत्थान में लगाए। वे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती रहीं। वे सदैव कहती थीं, हम भारतीय हैं और भारत ही हमारी मातृभूमि है। रानी गादिनियो ने अपने क्षेत्र में भारतीय एकता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने उस समय भी भारत के साथ जुड़ाव की वकालत की जब कुछ शक्तियां पूर्वोत्तर को अलग पहचान देने की बात करती थीं। वे दृढ़ता से कहती थीं कि भारत एक है और उसका हर हिस्सा समान रूप से महत्वपूर्ण है। रानी गादिनियो का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि ये उन दूरस्थ पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी जहां लोग अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गईं। उन्होंने ये साबित किया कि नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए आगे आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत ने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर स्थान पाया। असम की कनकलता बरुआ ने तिरंगा थामे गोली खाई। मणिपुर की येशेमना पारम्बुला ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया। नागालैंड के जादोनांग ने विदेशी शासन को ललकारा और अरुणाचल प्रदेश के मोमिन राय जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस अदृश्य परंतु सशक्त धारा का प्रतीक है जिसने पूरे देश में आत्मबल जगाया। रानी गादिनियो का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे लगभग 78 वर्ष की थीं। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मणिपुर और नागालैंड में उनके नाम से कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता केवल कुछ महानगरों की देन नहीं, बल्कि ये उन पहाड़ों, वादियों और गांवों की भी देन है जहां रानी गादिनियो जैसी वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी।

रानी गादिल्लू की गाथा हमें ये संदेश देती है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। आज भी जब पूर्वोत्तर की घाटियों में हवा चलती है तो

0: ऐसा लगता है जैसे वो रानी गादिनलू की आवाज को लेकर आती हो। स्वतंत्रता का दीप जलता रहे चाहे आंधियां कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार।
1: त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
2: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

0: त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख है। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय है। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहाँ पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन है। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला, राज्य की राजधानी, अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आए और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
1: पूर्वोत्तर राज्यों को खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2: उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेल शिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिशमी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुर जैसे कुश्ती

आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते, बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है, जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के याक गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत हैं। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।

0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे करगिल विजय दिवस की, जो केवल एक ऐतिहासिक सैन्य विजय का स्मरण नहीं, बल्कि भारत के अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और अटूट राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। आज देश 27वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये अवसर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का है, जिन्होंने वर्ष 1999 में दुर्गम हिमालयी चोटियों पर असाधारण साहस का परिचय देते हुए देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की। लेकिन श्रोताओं, करगिल विजय दिवस केवल अतीत की गौरव गाथा को याद करने का दिन नहीं है। ये हमें ये भी बताता है कि युद्ध के अनुभवों से सीख लेकर भारत ने अपनी रक्षा व्यवस्था, सैन्य रणनीति, आधुनिक तकनीक, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे ढांचे को किस प्रकार मजबूत किया है। आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि करगिल युद्ध क्यों ऐतिहासिक था, ऑपरेशन विजय कैसे सफल हुआ, इस युद्ध से भारत ने क्या सीख ली, पिछले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से बड़े सुधार हुए हैं और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की क्या भूमिका है। श्रोताओं, साल 1999, करगिल की बर्फ से ढकी दुर्गम चोटियां, ऑक्सीजन की कमी, सीधी खड़ी चट्टाने और सामने दुश्मन की मजबूत चौकियां, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। मई 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल क्षेत्र की कई सामरिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन विजय के माध्यम से दिया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के समन्वित अभियान ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और 26 जुलाई 1999 को भारतीय तिरंगा फिर से सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर शान से लहराया गया। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: करगिल युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, इसने पूरे देश को एकजुट किया और ये संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर चुनौती का दृढ़ता से सामना करेगा।
2: करगिल युद्ध भारत के सैन्य इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में गिना जाता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना ने व्यापक निगरानी और टोही अभियान चलाया। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के वेश में भारतीय क्षेत्र की सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया कि भारतीय सेना अपने सभी क्षेत्रों को वापस हासिल करेगी। श्रोताओं, इसी उद्देश्य से ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया गया। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जबकि भारतीय नौसेना ने भी समुद्री मोर्चे पर अपनी रणनीतिक तैनाती मजबूत की। भारतीय सैनिकों ने लगातार गोलीबारी, जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच चट्टानों पर चढ़कर दुश्मन से मुकाबला किया। टोलोलिंग की लड़ाई भारतीय सेना की पहली बड़ी सफलता बनी। इसके बाद 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर दोबारा तिरंगा फहराया गया, जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। 0.4875, बटालिक, मुश्को घाटी और ककसर जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय सैनिकों ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। करीब 2 महीने से अधिक चले अभियान के बाद भारत ने अपनी सभी चौकियां पुनः

0: प्राप्त कर ली। कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विजयंत थापर सहित अनेक वीर सैनिक आज भी राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।
1: श्रोताओं, करगिल युद्ध ने भारत को केवल विजय ही नहीं दिलाई बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण सीख भी दी। युद्ध के बाद रक्षा सुधारों, सैन्य समन्वय, आधुनिक तकनीकों और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर विशेष बल दिया गया।
2: कारगिल युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए। उच्च रक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया और सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना की गई, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हुआ। रक्षा बजट में लगातार वृद्धि की गई। वर्ष 2013-14 में जहां रक्षा बजट लगभग 2,53,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2026-27 में यह बढ़कर 7,85,000 करोड़ रुपए का हो गया है। रक्षा उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आज भारतीय रक्षा उपकरणों का निर्यात 80 से अधिक देशों को किया जा रहा है। स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, रक्षा औद्योगिक गलियारे और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसी अनेक पहलें शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे रक्षा विनिर्माण के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं। सैन्य आधुनिकीकरण के तहत अर्जुन MK-1A टैंक, INS विक्रांत, राफेल लड़ाकू विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक ड्रोन प्रणाली और नई पीढ़ी के युद्धपोत भारतीय सेनाओं की शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, हाइपरसोनिक तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइलें और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जैसे क्षेत्रों में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: श्रोताओं, करगिल की विरासत केवल सैन्य सुधारों तक सीमित नहीं है, ये नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा, अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी देती है। इसी भावना को जीवंत रखने के लिए इस वर्ष भी देश भर में अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में शौर्य और बलिदान को समर्पित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से शौर्य विजय यात्रा को रवाना किया। लगभग 1900 किलोमीटर लंबी ये यात्रा द्रास में करगिल युद्ध स्मारक तक पहुँचेगी। भारतीय सेना की डेयर डेविल्स टीम ने व्हील्स ऑन वेलोर संचार शक्ति अभियान के माध्यम से अटल सुरंग में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर सैनिकों के साहस और अनुशासन का प्रदर्शन किया। द्रास में टाइगर हिल अभियान आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं और ट्रेकिंग गाइडों ने भाग लेकर सैन्य पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों ने करगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा स्मृति ट्रैक, सैन्य उपकरण प्रदर्शनी और मोटरसाइकिल अभियानों के माध्यम से नई पीढ़ी को करगिल के इतिहास और सैनिकों के बलिदान से परिचित कराया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम केवल इतिहास को याद करने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समाज की भागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं।
1: श्रोताओं, करगिल विजय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसके हथियार नहीं होते बल्कि उसके सैनिकों का साहस, नागरिकों का विश्वास और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण होता है। आज भारत आधुनिक सैन्य तकनीक, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, बेहतर सैन्य समन्वय और अत्याधुनिक सुरक्षा ढांचे के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से कहीं अधिक सक्षम बन चुका है। करगिल के वीर सैनिकों का बलिदान हमें निरंतर ये प्रेरणा देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अक्षत ममगाए। नमस्कार।
4: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। प्रख्यापितं तेन सामूहिक सहभागितायाः वैशिष्ट्यम्। कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रभृतयः हुतात्म वीरेभ्यः श्रद्धांजलिं समार्पयन्। प्रधानमन्त्रिणा अद्य कारगिल विजय दिवसे राष्ट्रस्य अतुल्य हुतात्म पुरुषाः ससंभ्रमं संस्मृताः प्रोक्तं च यत् देशाय तेषां महाबलिदानं सर्वान् गौरवपूर्णान् करोति। मातृभूमेः रक्षणाय हुतात्म वीरेभ्यः राष्ट्रपत्यादिभिः भावांजलिः समर्पितः। कृष्णसागर मार्गेषु पोत सेवायाः पूर्वं सुरक्षा संकटं परीक्षणाय विदेश मंत्रालयस्य भारतीयानां कृते तीव्रा संचेतना। ग्लास्गो नगरे समायोजितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऋषिकांत सिंह चनम्बम 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धायां अनुपमं कौशलं प्रदर्श्य रजत पदकं समुपार्जितवान्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतस्य सांस्कृतिक मूल्येषु सामूहिक सहभागित्वं सर्वदा बलस्य स्त्रोत्रो वर्तते। श्रीमोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन 26,000-2,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्तालापावधौ एतद् उक्तवान्। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतं अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति। तद्यथा सैन्य उत्पादने सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः संबोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते। यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य सम्पूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
5: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
4: श्री मोदी न्यगादीत यत् भारतम् अश्रान्तं स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरी इति पोतस्य नूतन प्रवेशः विशेषतः श्लाघितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गत रविवासरे विक्रम-1 इति उपग्रह प्रक्षेपकस्य सफल प्रक्षेपणानन्तरं प्रत्येकं भारतीयः गौरवगौरवेण परिपूर्णो वर्तते। कैच द रेन इति वर्षा जल संग्रहः अभियानम् अधिकृत्य भाषमाणः श्रीमोदी सहर्षम् अब्रवीत् यत् जुलाई मासस्य 4th दिनांकात् आरभ्य अशेषे हि देशे विशिष्टमेकं राष्ट्रव्यापि अभियानम् अविरतम प्रचलति।
5: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
4: अद्य मन की बात इति मनोगतम कार्यक्रमे प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कतिपय दिवसेभ्यः पूर्वं ग्लास्को नगरे

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, बहुत धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज नियरली 15,000 करोड़ रुपीज इन जुलाई सो फार. इन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस रिबाउंड आफ्टर टू स्ट्रेट वीक्स ऑफ डिक्लाइन. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results, and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लिवाली का रुख कायम रखा. जुलाई में अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया. सराफा बाजार में दो हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में तेजी. और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर.
0: And listeners, before we go just any further in the program, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. जुलाई में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPIs ने लिवाली का रुख कायम रखा है. इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 14,946 करोड़ रुपए का निवेश किया. पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो FPIs ने भारतीय शेयरों में 3,049 करोड़ रुपए डाले हैं. भारतीय ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है. जुलाई में उन्होंने FAR के जरिए 9,521 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 27,351 करोड़ रुपए का निवेश किया है. आशुतोष, ये आंकड़े अब बहुत दिनों के बाद हमें जुलाई में अच्छे आंकड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं. FPIs का रुख, उत्साह, दिलचस्पी सब बनी हुई है अभी. लेकिन अभी हमारे बाजार में जो पैसा आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ से साउथ कोरिया के मार्केट से या जहाँ पर भी AI वाला और चिप वाले मार्केट थे, वहाँ से पैसे निकले हैं और हमारे बाजार में आ रहे हैं. तो क्या ये कुछ टेम्पररी फेज है मार्केट की उथल पुथल का या शिफ्ट होने का, या हम माने कि अभी कुछ बड़ा बदला है, इक्वेशंस बदल गए हैं?
2: देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड है, जो इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, वो बरकरार थे, बरकरार हैं और आशा है कि वो बरकरार रहेंगे. और इसीलिए जो एक सेक्युलर तरीके से देखा गया है कि फॉरेन कैपिटल का इंडिया में इन्वेस्ट होना, उसका निवेशित होना, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान

0: हुआ या इस ट्रेंड में कोई रोक लगी है? हाँ, बीच में जो वैश्विक रूप में जो परिस्थितियां बनती हैं उनकी वजह से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो ज़रूर मार्केट को उनको झेलना पड़ता है। अभी हमने देखा पीछे जैसे मिडिल ईस्ट में जो ट्रेंड रहा उसको लेकर जो एक रिस्क एवर्जन ग्लोबल मार्केट में आता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आया। हालांकि इंडिया का इस पर्टिकुलर वॉर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट तो ऐसी घटनाओं का ग्लोबल होता ही है। AI का एक ट्रेंड है, बीच में देखा गया कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ट्रेंड्स काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी इनके ऊपर फोकस रहा, लेकिन वैल्यूएशंस की फिर बात की जाने लगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाने लगी। तो ये शॉर्ट टर्म में ये सब नॉइज़ जो है इम्पैक्ट करती है मार्केट को और करती रहेगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आप सिग्नल देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो हमने देखा है कि फॉरेन कैपिटल वापस इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करने में सक्षम है।
1: ओके, टेकिंग द डिस्कशन फर्दर फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, सेइंग दैट यू नो देयर इज स्टिल इंटरेस्ट इन द इंडियन मार्केट, सो फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आशुतोष, हाउ डू यू सी दिस इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द मार्केट सेंटिमेंट?
0: See, as far as the global is concerned, of course, when the foreign capital comes to India, it gives a fillip to the Indian markets. And when the Indian markets recover, they get on a momentum. So that brings cheer among the domestic investors as well.
1: Correct.
0: But time and again, we've been advising that domestic investors, retail investors should not be overly reading into the short-term trends of FII money or what, you know, these investors are doing. Focus far more on your circumstances. What is your investing need that you are investing for? How much you can save and invest? And what is in the long-term scheme of things that you are wanting to achieve? If you have the long time horizon, equity is still the most promising and the most wealth generating asset class with the most wealth generating potential, and that remains a secular trend.
1: We'll come back to you with this discussion. Meanwhile, let's connect with our first caller from Delhi, Sunil Gupta. Welcome to the show. Please ask your question.
2: Namaskar, Master Ji. Sir, mere question do the. Ek to ye tha ki mutual funds investment ka koi ek centralized portal hai jisme ki ek hi jagah se sab jagah investment ho sakti hai authorized koi ek sa. Aur lekin initially 32 years age wale ke liye कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस किस सेगमेंट में करनी चाहिए?
0: जी, तो पहला सवाल आपका, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहीं सेंट्रल जगह से हो सकती है? देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक और प्लेटफॉर्म है MF सेंट्रल के नाम से, जो कि दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं, के फिनटेक और कैम्स, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। आप MF सेंट्रल पे भी अपना लॉगिन कर डायरेक्ट प्लान्स में म्यूचुअल फंड्स के सहजता के साथ निवेश कर सकते हैं। तो आप MF सेंट्रल एक बार ट्राई करिए, शायद आपको वो कन्वीनियंट लगेगा। आप उस पर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी, नॉमिनी चेंज करना, बैंक अकाउंट अपडेट करना, इस टाइप की ट्रांजैक्शंस भी आप सहजता के साथ MF सेंट्रल पोर्टल पे कर सकते हैं, तो आप उसको देखिए। दूसरा आपका सवाल, 32 साल आपने उम्र बताई, लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाहते हैं, शुरुआती निवेशक हैं आप, और अगर आपको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक या दो अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करें। ये फंड्स आपका करीब 70-75% पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं, बचा हुआ 20-25% पैसा डेट मार्केट्स में निवेश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेशन का, इक्विटी मार्केट्स के की बढ़त का लाभ आपको प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्योंकि 20-25% पैसा डेट में होता है, तो जब भी मार्केट गिरती है ये फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, और उस वजह से एक नए इन्वेस्टर को पैनिक ना हो, वो बहुत जल्दी निराश हताश ना हो जाएं। तो वैसा थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देने में रिलेटिव व्हेन द मार्केट्स फॉल, ये फंड्स सक्षम है। तो अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में अपना SIP शुरू करें, भले ही थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करें, इसको साल 6 महीना एक्सपीरियंस करें, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके बाद अपने निवेश की मात्रा बढ़ाएं।
3: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से, दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
3: जी,
4: मैंने अपना स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाया था और मैं गोल्ड ETF परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गोल्ड ETF के नाम से वहाँ गोल्ड ETF डायरेक्ट के नाम से नजर नहीं आ रहा है, गोल्ड फंड के नाम से नजर आ रहा है। तो क्या ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड एक ही चीज है और दोनों के एक्सपेंस रेशियो में क्या कोई फर्क है? धन्यवाद
0: जी। गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स का मकसद एक ही होता है, लेकिन ये दो अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो मकसद एक ही है कि ये आपका पैसा गोल्ड में निवेश करते हैं और गोल्ड के दाम जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके रिटर्न मिलते हैं। लेकिन गोल्ड ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। आप गोल्ड ETFs की जो यूनिट्स हैं आप स्टॉक एक्सचेंज पे किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको गोल्ड के रिटर्न्स का ही मिलेगा, लेकिन इसकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होती है इनकी काफ़ी, और इनको आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। वहीं गोल्ड फंड जो है वो जैसे आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं। टिपिकली ये होता है कि किसी भी AMC का, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो गोल्ड फंड होता है वो आपका पैसा इंटर्न गोल्ड ETF में निवेश करता है और गोल्ड ETF के माध्यम से वो पैसा आगे गोल्ड में जाता है। तो आप गोल्ड फंड को एक पास थ्रू व्हीकल मानिए, आपका पैसा गोल्ड फंड में जाएगा, गोल्ड फंड से गोल्ड ETF में जाएगा और वहां से गोल्ड में निवेश होगा। तो एक लेयर ऐड हो जाती है। जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोलना, वो कन्वीनियंस चाहते हैं विदाउट स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट निवेश करने के लिए, तो गोल्ड ETF गोल्ड फंड्स उनके लिए अच्छा विकल्प है। थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं समझता दोनों में है। आप वो चुनाव करें उसका जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको आप नॉर्मली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास स्टॉक ब्रोकिंग एक डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप गोल्ड ETF की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो सिर्फ एक गोल्ड फंड में थोड़ा सा अपना पैसा लगाने के लिए आप एक डीमैट और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट मेंटेन करें, मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनकन्वीनियंस है, कंबरसम है, तो आप गोल्ड फंड की तरफ जा सकते हैं।
1: ऑल राइट, लेट्स नाउ आस्क विशाल फ्रॉम दिल्ली, व्हाट्स हिज क्वेश्चन? विशाल जी सवाल पूछे।
5: नमस्कार, मानसिक मंत्रा, जैसे मैं 35 ईयर मेरी साल है तो मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में, मेरे को हाई रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न भी चाहिए?
0: जी आप 30 साल के हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न आपने बोला। देखिए आमतौर पर मेरी सलाह यही होती है कि अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मुझे काफ़ी बेहतर लगते हैं एक शुरुआती निवेशक के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न के लिए तैयार हैं, अगर मार्केट डीप करेक्शन होता है 25-30% की, अगर अचानक मार्केट में गिरावट आती है उससे आप निराश हताश नहीं होंगे, तो आप कोई भी एक अच्छे मल्टी कैप फंड का चुनाव करिए। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो करीब आपका कम से कम 25-25% आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगता है और बाकी 25% फंड मैनेजर की के पास लीवे होता है कि वो किस मार्केट सेगमेंट में कहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स ऐसे हैं कि एक ही फंड में आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिलता है कम से कम 50%, क्योंकि आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहता है, तो एक रीजनेबली एग्रेसिव आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में, अच्छे फंड्स अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम रहते हैं। तो आप किसी एक या दो मल्टी कैप फंड्स का चुनाव कर उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। एक साथ अगर आपके पास एक लमसम धनराशि है उसको भी आप ज़रूर कम से कम 8-10 महीनों में ज़रूर स्प्रेड कर ही लगाएं।
3: जी अगले कॉलर हैं कोलकाता से विश्वज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
6: गुड इवनिंग फॉर ऑल।
1: गुड इवनिंग।
6: मैं ओल्ड इन्वेस्टर हूँ। मेन बात है क्या, देखिए 2 साल से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप लोग बोल रहे हैं AI, आप बोल रहे हैं टैरिफ, आप बोल रहे हैं ट्रंप, आप बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट, लेकिन करेक्शन जो हो रहा है व्हाट द यूज ऑफ, आई कांट अंडरस्टैंड एक्चुअली। करेक्शन मतलब क्या है, बैंक का इंटरेस्ट का लेवल के नीचे जाएगी, म्यूचुअल फंड किस लिए हम लोग करेंगे?
0: जी देखिए म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है, रिटर्न आपके हमेशा ही मार्केट लिंक रहते हैं, तो बिल्कुल अगर मार्केट में गिरावट का माहौल है, अगर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट के नीचे भी इनका रिटर्न जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, आपकी कैपिटल में आपको लॉस भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक्ड निवेश हैं, इनमें मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिस्क बरकरार रहता है और इसीलिए इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी बोला जाता है। अगर आपको फिक्स

0: रिटर्न चाहिए, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बताया कि आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या बैंक एफडी इस टाइप के विकल्प हैं, लेकिन इनके रिटर्न हमेशा ही मॉडरेट रहते हैं, ये आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न इन सभी विकल्पों का देखते हैं तो आपको एक काफ़ी मॉडरेट रिटर्न मिलता है। तो अगर आप मॉडरेट रिटर्न लेकिन श्योरिटी के साथ से संतुष्ट हैं तो यही सारे आपके पास विकल्प हैं, लेकिन अगर आप हाई रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल जो सही रास्ता है वो एक मिडल पाथ है कि आप अपना काफ़ी पैसा एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में रखें, लेकिन थोड़ा पैसा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज में भी डालिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। इन्फ्लेशन के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे ओल्ड एज में, आज आपका जितने पैसे से आपका घर चल जाता है 5 साल 10 साल में वो पैसे पर्याप्त नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आपकी कैपिटल का ग्रो करना भी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल एक ओल्ड इन्वेस्टर को भी थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है शायद, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक सही विकल्प है।
1: Listeners, you're tuned to your very own favorite program, Market Mantra, and today being Sunday, we are entertaining calls on mutual fund related queries. We are fortunate to have with us in the studios mutual fund expert Ashutosh Gupta. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106.
2: और अब देखते हैं कि सराफा बाजार का क्या हाल रहा है। 2 हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में पिछले हफ्ते थोड़ी तेजी देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.56% की बढ़त हुई और ये 1,43,916 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 1.55% बढ़कर 2,22,138 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.3% की बढ़त हुई और ये $4,070.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3.8% बढ़कर $58.49 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुई। आशुतोष, सोने और चांदी का जिक्र जब भी आता है और म्यूचुअल फंड्स का जब हमारा संडे का स्पेशल शो रहता है, अक्सर बात होती है, लोग पूछते हैं कि जब बीच में जब सोने और चांदी में काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही थी तब लोग पूछते हैं कि क्या करें, हम सोने और चांदी की ओर जाएं या म्यूचुअल फंड्स की ओर जाएं। एक सही पोर्टफोलियो बनाने के, एक सही निवेश बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत और हर चीज़ का लाभ उठाने के लिए किस चीज़ का कितना प्रतिशत हमें रखना चाहिए?
0: जी, तो पहले तो ये जो रिबाउंड देखा गया है सोने और चांदी के दाम में, ये एक मेरा ख्याल राहत के रूप में आया है। बहुत सारे निवेशक जो पिछले 2-3 साल में जो सोने और चांदी में तेजी देखी गई है उसको देखकर जो बहुत सारे निवेशक इसमें एंटर हुए थे और फिर इस साल शुरुआत से उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, तो मेरा ख्याल ये जो थोड़ा रिबाउंड है ये उनके लिए थोड़ा राहतदायक ज़रूर होगा। और इसी से इन्वेस्टर्स में, यही इन्वेस्टर्स के लिए मेन सीख छुपी है कि आप किसी भी हॉट ट्रेंड को, किसी भी हॉट एसेट क्लास को जो पिछले 1 साल में जिसने ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है, अगर आप सिर्फ मोमेंटम चेस कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग में पिछले 1 साल में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास है अगर उसका पीछा कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि आपके हाथ निराशा लगेगी। आप जब वो बहुत ऊपर उठ चुकी होगी एसेट क्लास, आप तब उसमें निवेश करेंगे और उसके बाद उसके रिटर्न्स मॉडरेट हो जाएंगे या गिर जाएंगे और वो आपके लिए निराशाजनक होगा। तो ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन से अपने लिए एक एसेट एलोकेशन बनाएं और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें, चाहे वो एसेट क्लास उतार चढ़ाव के माहौल के बावजूद आप एक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें। गोल्ड की जहाँ तक बात है, इसका मुख्य रूप से रोल जो होता है पोर्टफोलियो में वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए होता है। ये एक काउंटर वेट है इक्विटी का। जब इक्विटी मार्केट में गिरावट आई है देखा गया है कि गोल्ड उस वक्त थोड़ी स्थिरता प्रदान करता है। जब इकोनॉमी में क्राइसिस का माहौल होता है गोल्ड एज एसेट क्लास, क्योंकि उसको एक सेफ हेवन की तरह देखा गया है, तो उसके रिटर्न्स उन दिनों अच्छे चलते हैं। तो इस एट्रीब्यूट के लिए आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 से 15% आप गोल्ड को रखते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप इस पे बरकरार रहें। आप तब ना इन्वेस्ट करें जब वो गोल्ड बढ़ चला है और उसके बाद आप निवेश करेंगे तो आपके हाथ निराशा लगेगी। तो आप एक डिसिप्लिन के साथ 10-15% की एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में कार्व आउट करें और उस पे बरकरार रहें।
2: और गोल्ड लेने के लिए फिजिकल गोल्ड ना लें, आप ETF ले सकते हैं तो लें, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में भी, आपने जैसे अभी एक सवाल आया था हमारे पास कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, अगर आपको सहजता के साथ इन्वेस्ट करना है गोल्ड का फिजिकल, अगर आपको निवेश का ही आपका पर्पस है, क्योंकि गोल्ड का मुख्य रूप से हिंदुस्तान में पर्पस होता है कंजम्पशन, उसको ज्वेलरी के रूप में एक एक कंजम्पशन एसेट कितने देखा जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप उसको एज अ फाइनेंशियल एसेट कितने यूज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स जो आज काफी सहजता के साथ अवेलेबल है वो अमंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए।
1: We'll come back to you, Ashutosh, on that. Meanwhile, let's ask Subhash from Faridabad what his query is. Subhash ji, सवाल पूछें।
3: हाँ, नमस्कार सर।
1: जी।
3: सर, मैं इसमें मेरा ही असेट का लार्ज कैप फंड में 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से प्रॉपरली, जैसे पहले इसका परफॉर्मेंस था मेरे जो रिटर्न मिल रहे थे अभी तो बहुत कम है इसके रिटर्न, अभी तो इस साल तो नेगेटिव में ही रहा, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसमें मेरा ये एसेट लार्ज कैप फंड में?
0: जी, मेरा ख्याल आप मेरा एसेट लार्ज कैप में बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका हिस्टोरिक रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है और एक इन्वेस्टर्स की जो इसके साथ एक्सपेक्टेशन साल दर साल सेट हो गई थी, तो हाल फिलहाल में उन एक्सपेक्टेशंस पे शायद ये उतना खरा नहीं उतरा है, लेकिन अपने आप में ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये कोई बहुत बुरा फंड नहीं है या बहुत निराशाजनक नहीं हुआ है। हाँ, जिस टाइप की एक्सपेक्टेशंस जो उसने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था उस पे खरे उतर पाना, या लोगों को जिस टाइप की इससे आशाएं साल दर साल रहती हैं, तो कहीं पे निवेशकों को अपनी एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेट करनी पड़ेंगी। एक बढ़ता हुआ फंड है, मेरा ख्याल आज की डेट में 40,000 करोड़ के करीब इसका AUM है, तो देखिए जो एक एक टाइम पर जिस टाइप से ये रिटर्न दे पाता था या जिस तरीके से ये मैनेज होता था बढ़ते AUM के साथ, उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन अभी भी फंड मैनेजमेंट टीम काफ़ी सक्षम है, अच्छा फंड है। इस साल अगर देखें नेगेटिव रिटर्न, तो देखिए इसलिए कि मार्केट के ही नेगेटिव रिटर्न है, तो नेगेटिव रिटर्न सारे ही लार्ज कैप फंड के हैं, लेकिन फिर भी अबव एवरेज परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी में इस साल, तो मेरा ख्याल आप फिलहाल तो इस फंड में बिल्कुल बने रह सकते हैं।
2: जी, और सरबजीत, हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अभी इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है, हमने इतने समय से निवेश किया हुआ था, अब क्या करें हम, तो आशुतोष अक्सर ये सवाल उठता है, और एक बुनियादी निवेशक के तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमने चलिए 10,000 रुपये 5,000 रुपया या 1,00,000 रुपये कहीं फंड्स में लगाए हुए हैं, 1-2-3 फंड्स में डाले हुए हैं, तो हमें उसको कितने समय पर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि फंड्स का तो प्रदर्शन बदलता रहता है समय के साथ, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है, तो हमें कब रिव्यू करना चाहिए और कब कितनी गिरावट आने पर उसके प्रदर्शन में हमें बदल देना चाहिए, अपने पैसे हटा लेने चाहिए?
0: जी, तो देखिए ये काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स काफ़ी शॉर्ट टर्म के परफॉर्मेंस को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। जहाँ तक पोर्टफोलियो रिव्यू की बात है, मेरा ख्याल अगर आप साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आप अपने SIPs बनाइए, उनको चलने दीजिए, साल में एक बार आप रिव्यू करिए, 2-3 डायमेंशंस है उस रिव्यू की। पहली तो आप देखिए कि एक साल बाद क्या आप अपना SIP की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो नौकरीशुदा लोग हैं, साल में एक बार आपकी तरक्की होती है, आपकी इनकम बढ़ती है, कोशिश करिए कि आप अपनी इनकम के साथ आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ा पाएं, तो जो आपकी SIP के अमाउंट्स हैं उनको बढ़ा पाएं, तो साल में एक बार रिव्यू करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति देखिए कि आप अपनी इनकम का कितना प्रतिशत पैसा निवेश कर रहे हैं, और क्या वो 2-3 साल से अगर आपने नहीं बढ़ाया है तो बिल्कुल उसको इस साल कोशिश करिए कि आप बढ़ाएं। तो ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा, आप अपनी एसेट एलोकेशन देखिए कि अगर आप मानिए 75% इक्विटी 25% डेट की एसेट एलोकेशन के साथ चले थे और मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से एसेट एलोकेशन हिल गई है, मानिए इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और जो 75% थी वो अब 85% हो चली है, तो एक साल बाद रिव्यू करके थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए, जिससे जो आप रिस्क रिटर्न इक्वेशन बनाए रखना चाहते थे वो बनी रहे। और तीसरा आप नजरिया यही है कि क्या कुछ फंड्स ऐसे हो गए हैं कि जिनमें बदलाव की जरूरत है, वो निराशाजनक हो गए हैं और पोर्टफोलियो में कुछ उलटफेर की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ पिछले एक साल या पिछले छह महीने के रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड मत करिए, कम से कम 3-4 साल का होराइजन किसी भी फंड के लिए रखिए, बेहतरीन से बेहतर

0: ग्रीन फंड ऑल्सो गोज थ्रू अ रफ फेज, तो किसी भी फंड का कुछ समय के लिए अच्छे रिटर्न ना देना ये बड़ा ही स्वाभाविक है। तो छोटे छोटे टाइम पीरियड पे साल डेढ़ साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। और ज़रूरी आप उस अगर आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया भी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए। अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो शायद स्मॉल कैप बाजार ही निराशाजनक रहा है, तो आप ये भी देखिए कि जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इन सारे मुद्दों पर आप विचार कर फिर अपना डिसीजन।
1: क्योंकि अगर पूरा बाजार ही गिरा है, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो जो उन पर निर्भर है, अगर उनमें ही गिरावट आई है और अगर फंड भी लगभग उतना ही गिरा है, तब तो उसको वाजिब मान सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात है और इसी तरीके से देखना चाहिए। और अगर किसी फंड ने उसके आउट ऑफ द लाइन भी अंडर परफॉर्म किया तो भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। हर बार जब आप फंड बेचने का डिसीजन लेते हैं, अब आप टैक्स भरते हैं, तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप फंड्स चेंज करते रहेंगे तो मेरा ख्याल आप टैक्स तो भरपूर भरेंगे, शायद उसका लाभ उतना नहीं उठा पाएंगे।
2: आशुतोष, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम दिल्ली। केशव जी सवाल पूछे।
3: हाँ जी नमस्कार, आकाशवाणी मार्केट मंत्र। मैं आकाशवाणी को ये पूछना चाहूंगा, सबसे तो सवाल मेरा कि जो आप लोग आखिरी में एक बातचीत बताते हैं कि पंजीकृत ही से आप हमारा इनसे कोई विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये जो इतने बड़े अच्छे एक्सपर्ट आते हैं आपके मंच पर, तो ये एक्सपर्ट ही तो हैं, पंजीकृत ही तो होंगे, आप इनको जो बुलाते हैं, तो आप कृपा करके ये कंफ्यूजन क्यों हम लोगों को समझ नहीं आता, इनके पर हम बात का विश्वास करें क्या ना करें? धन्यवाद।
1: देखिए, मार्केट मंत्र आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, उसे मानना या नहीं मानना, और चूंकि पैसा आपका है तो फैसला आपका है, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। जी सरबजीत, अगली कहानी पे चलें।
2: Yes, let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter of corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including first quarter of corporate earnings, foreign institutional investors, and rupee and technical levels. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the Brent crude, which has risen above $100 per barrel amid West Asia tensions and soon to be held US Federal Reserve meeting. Ashutosh, we'll discuss this, but first let's connect with our caller, Manoj ji. Sawal poochhe.
1: Manoj ji, aap sun pa rahe
4: hain? Haan ji, namaskar.
1: Ji, namaskar.
4: Ji, main ye maine kuch mutual fund apne sell kare the is saal April mein.
1: Ji. Hello. Ji ji, jaldi se pooch rahe hain, sab waqt bahut kam hai.
4: Ji haan ji haan. तो मैंने जैसे ये 2,25,000 जैसे उसकी कॉस्ट थी, तो मैंने 2,00,000 की जो है वो सेल करी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने 2,00,000 की सेल करी है और उसके ऊपर कुछ एप्रिसिएशन आ रहा था, तो वो क्या जो कैपिटल गेन होगा वो प्रोपोर्शनेटली होगा या कैसे होगा वो?
0: जी नहीं, कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है जो आपकी सबसे पुरानी यूनिट्स बिकी हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हमेशा यूज होता है। तो आपने 2,25,000 के निवेश में जो 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, जो सबसे पुरानी यूनिट्स हैं, उन पर जितना गेन होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
1: जी आशुतोष, आज वक्त इतना ही है, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद आपका।
2: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज nearly 15,000 crore rupees in July so far. In bullion market, gold and silver prices rebound after two straight weeks of decline, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बडिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

0: पर्यावरण, स्थानीय उत्पादों और जन भागीदारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन का हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार
0: अशोक जी, आपके दृष्टि में प्रधानमंत्री के मन की बात के इस संस्करण का मूल संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ संवाद है या राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक सोच को भी प्रस्तुत करता है?
1: प्रधानमंत्री अपनी हर महीने की आखिरी रविवार को जो जनता के साथ संवाद करते हैं वो एक तरफा नहीं है। उसमें उस महीने में जो घटनाक्रम हुए होते हैं, जो भारत की उपलब्धियां होती हैं या भारत की जनता द्वारा जो उपलब्धियां होती हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में अगर जैसे आपने भी कहा कि कोई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे आज के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जब इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी तिथियां हैं जिन्हें याद करने के लिए कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज 26 जुलाई एक ऐसी ही तारीख है जब कारगिल विजय दिवस है, क्योंकि ये दिन हमारे गर्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद को भी दिलाता है। तो इससे हमको याद आया कि कारगिल युद्ध एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर कठिन मौसम में दुश्मन की चुनौती और इस हर परिस्थिति को हमारे सैनिकों ने इसका सामना किया था और उनका जो हौसला था वो हर चुनौती से बड़ा था, क्योंकि उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया था। जब कारगिल दिवस पर उन्होंने सब वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया, तो इस तरह से एक याद दिलवा दी कि भारत ने कारगिल पर जो है विजय कैसे हासिल की थी। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो उन्होंने ये भी हम लोगों के साथ साझा किया कि भारत की जो अपनी तकनीकी क्षमता है वो भी दिन दिन बढ़ रही है
0: जी।
1: और कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। ये आधुनिक जंगी जहाज जो है ये भारत में ही डिजाइन किया गया और भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता और उससे बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। और इसी महीने DRDO ने जो पिनाकल लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया और इस परीक्षण के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जो सामूहिक परिश्रम है। तो 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। यानी आज रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों के तरफ बढ़ रहा है। और इस महीने की शुरुआत में तो प्रधानमंत्री ने अपने इंडोनेशिया की यात्रा की भी चर्चा की, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। यानी दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: अशोक जी, आपने कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया भी, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने शौर्य दिवस के बारे में क्या कहा है।
2: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट, यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: अशोक जी, आपने अभी उल्लेख किया INS महेंद्र गिरी का, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का और कुशा मिसाइल का। क्या ये भारत की बदलती हुई सामरिक नीति और आत्मनिर्भरता में एक नए युग की शुरुआत है?
1: बिल्कुल, क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से विशेष तौर से जो सैन्य सामग्री है उसके लिए विदेशों पर ही निर्भर रहता था और ऐसा माना जाता था कि शायद भारत में तो तकनीकी क्षमता है ही नहीं। तो ये जो अब भारत की अपनी बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता है ये पिछले 12 वर्ष में देखने को मिली है और उसी का ये उदाहरण है कि जैसे INS महेंद्र गिरी शामिल हुआ, जैसे मैंने पहले कहा ये भारत में ही बना, भारत में डिजाइन हुआ, 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उसमें रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता नहीं है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो हम अपने मित्र देशों के साथ एक सामरिक महत्व के जितने भी उपकरण हैं वो हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म

0: और अस्त्र जैसे मिसाइलों का बड़ा भाई एक समझौता इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री करके आए हैं। तो इसलिए अभी दुनिया का भरोसा, अभी विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं उनका भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत को बहुत ऑर्डर भी मिल रहे हैं हमारे रक्षा उपकरणों के।
1: प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के पहले भारतीय रॉकेट विक्रम 1 और विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका उल्लेख किया।
2: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: अशोक जी, क्या ये भारत के नवाचार और ओलंपियाड के लिहाज से देखें तो युवा शक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है?
0: बिल्कुल। साइंस में भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है, साइंस ओलंपियाड जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और इसी महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड्स भी हुए थे और इन कंपटीशन में भारतीय दलों का शानदार प्रदर्शन रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में तो हमारे सभी 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। और पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के विद्यार्थियों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में तो हमारे सभी विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी विद्यार्थियों ने मेडल जीते और इनमें से एक गोल्ड मेडल के बारे में जो कहा जाए कि वो तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर जीते, उनके नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे देश की युवा शक्ति पर गर्व है और ये देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड और हैकाथॉन का कल्चर बढ़ रहा है और देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम पर अपना एक तरह से इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और भारत का परचम भी लहरा रहे हैं।
1: जी, इस बार मन की बात में चटाई, हर्बल चाय, खादी, हथकरघा और स्थानीय उत्पादों का विशेष उल्लेख हुआ है। खादी पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे।
1: अशोक जी, क्या अब वोकल फॉर लोकल की बात थी वो अब नारा नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का रूप ले चुका है?
0: हर एपिसोड में प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और उसमें किसी न किसी हमारे एक प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जिससे हमारी जो चर्चा है वो आगे दुनिया में भी हो रही है और कैसे हमारे स्वयं अपने जो लोग हैं वो किस तरह से इसकी उत्पादन कर रहे हैं। जैसे चाय के बारे में उन्होंने बात की, चटाई के बारे में बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जिस चाय की वो चर्चा करते हैं उसमें केवल स्वाद ही नहीं होता है बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की एक खुशबू भी घोल दी जाती है। उदाहरण दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। तो इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसे प्राकृतिक सामग्रियां शामिल हैं और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी पहचान बन रही है। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण प्रधानमंत्री देते हैं कि जिससे हम अपना आत्मनिर्भरता की तो बढ़ते ही हैं लेकिन वोकल फॉर लोकल का जो नारा है कि हमारा जो लोकल उत्पाद है उसको भी हम प्रेरणा दें, उसका इस्तेमाल करें और दुनिया में भी उसकी मांग बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, गुरु पूर्णिमा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का उल्लेख भी किया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने तिरंगा के बारे में क्या कहा।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री इन विषयों को अक्सर रेखांकित करते रहे हैं, क्या इससे राष्ट्र भावना और नागरिक सहभागिता को नई ऊर्जा मिलती है?
0: देखिए, केवल अगर प्रधानमंत्री इसकी बात करके छोड़ दें और एक नारे की तरह, तब तो इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब वो इस बात को आंदोलन के रूप में चलाने की बात करते हैं और देश उससे प्रेरित होकर उस आंदोलन में अड़ चढ़ कर भाग लेता है, तब वो ये सब बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्वतंत्रता का पर्व है, तो उसमें उन्होंने हर घर तिरंगा का जब से एक ये अभियान चलाया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये अभियान देश में पूरी तरह से एक अद्भुत भावना से जुड़ गया है और हर गली हर घर में हम तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है, यानी लोग इसमें भाग लेते हैं और ये अभियान जो है इसको आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री की बात का लोगों पर असर होता है और जो भी अभियान वो लेते हैं, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे वो हर घर तिरंगा की बात करें, ऐसे कई अभियान प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में चलाए हैं जो जन भावना से जुड़े होने के कारण लोक अभियान में भी बदले हैं, जिसके कारण ये सब चीजों में भारत आगे बढ़ा।
1: और प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील दोहराई है, क्या आपको लगता है कि ऐसे अभियानों से जन भागीदारी अब सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी ताकत बन रही है?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जल संरक्षण का जिसमें प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में इसके बारे में बात करते हैं और उसके चलते ये जो जल अभियान है, यानी जो इसको संरक्षण करना है, ये भी हर बार रहती है। और जैसा प्रधानमंत्री ने पिछले एपिसोड में कहा था कैच द रेन, तो इस अभियान की चर्चा की थी और उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं, और अब वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो ये जो संदेश सीधा जहां बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए, इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, इन सबको नई गति मिली है। और गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ले रहे हैं और कई पुराने तालाबों को लोगों ने गोद लिया है, उसकी गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं, कहीं बावड़ी। ये जो जीवन का एक संदेश है, ग्राउंड वाटर को इस माध्यम को बनाया जा रहा है, पानी की हर बूंद बचाएं, आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया और लोगों के इस जुड़ाव का भी उन्होंने चर्चा की, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि ये कैच द रेन अभियान आगे चलकर और तेजी पकड़ेगा।
1: जी अशोक जी, आपने मन की बात के इस संस्करण में उठाए गए विषयों का अत्यंत सारगर्भित विश्लेषण किया, कार्यक्रम में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में

जी, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:26 और 3 सेकंड हो गए हैं और रोज की तरह एफएम गोल्ड पर ये समय है कार्यक्रम सांझ ढली का। आज की शाम एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ रेशमा और आपको सुनवा रही हूँ कुछ मधुर से गीत। 1968 में आई फिल्म इज्जत से सुनते हैं ये पहला गीत कार्यक्रम का, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत है इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बोल लिखे हैं साहिर।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। 7:33 हो गए हैं और कार्यक्रम है ये सांझ ढले, जिसमें मैं हूँ आपके साथ रेशमा। और सांझ ढले में ये जो अगला गीत सुनेंगे आप, ये है 1968 में आई फिल्म आशीर्वाद से लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसमें गुलजार के लिखे बोल और वसंत देसाई का राग मल्हार का प्रयोग बरसात के मौसम का एहसास और गहरा कर देते हैं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: FM गोल्ड है ये 16.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और सांझ ढले कार्यक्रम में आखिरी गीत का समय हो चुका है, क्योंकि अब बज रहे हैं 7:40 और 41 सेकेंड और 7:45 पर

एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। तो ये आखिरी गीत 1969 में आई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म से, और इसको गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत शंकर जयकिशन का, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। और इस गीत के साथ अब रेशमा को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय दिवस के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई मंत्रियों ने दिल्ली की अनहत सिंह को विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर बधाई दी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। इसकी सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सरकार कल संसद में कड़े प्रावधानों वाला नया विधेयक भी पेश करेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता रहेगा।
9: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
9: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
9: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साह वर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
9: कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स

0: में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी को आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रकृति के प्रति अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया। साथ ही मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा दी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मीडिया से बात करते हुए श्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया।
2: आज मन की बात का 136वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं। देश की सरकार ने क्या किया इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। उनका मानना है कि देश जो प्रोग्रेस कर रहा है वो देश के 140 करोड़ जन की सहभागिता से देश का विकास, देश की तरक्की हो रही है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया है। साथ ही आयोग के सदस्य के रूप में कुलदीप सिंह मोहम्मद हारून को नियुक्त किया है। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर लता गुप्ता और श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद दिल्ली महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य आयोग में लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा करने और तय समय सीमा के भीतर मुद्दों को सुलझाना है।
3: आयोग के पास कई प्रकार की शिकायतें भी पहुंचती ही थी, तो उन लंबित शिकायतों को जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो और समयबद्ध तरीके से उन समस्याओं को खत्म कर पाएं। हमारी दिल्ली की हर एक बहन को आयोग पर एक विश्वास बने, ऐसे कार्य करते हुए हम काम करेंगे।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य निष्पक्षता, संवेदनशीलता तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि करगिल के वीर जवानों का शौर्य, समर्पण और राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता के साथ देश के जाबाज सैनिकों ने दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन समाप्त होने के बाद से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने विशेष स्वच्छता मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने पूरी रात मौके पर मौजूद रहकर सफाई और पुनर्स्थापन कार्यों की निगरानी की। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि इस अभियान में सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों, हरित पट्टियों, दीवारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई, धुलाई

0: मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य किया गया।
1: जंतर मंतर आपको पहले से ज्यादा साफ दिख रहा होगा। जैसे ही कल प्रदर्शन समाप्त हुआ तो रात से ही हमारी पूरी एनडीएमसी की टीम, जिसमें मैं स्वयं, हमने पूरा जंतर मंतर का कूड़ा, जितना गार्बेज था, बाकी सब थी, धुलाई थी, इसकी वॉल पेंटिंग थी, इसके कहीं पर होर्डिंग्स और बैनर्स थे, उन सबको बड़े क्लीन से हमने साफ किया।
0: दिल्ली नगर निगम MCD को भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट और स्कीम एक्सपो 2026 में शहरी नागरिक सेवाओं तथा जनकल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान नागरिक केंद्रित सेवाओं, जल कल्याणकारी पहलों तथा शहरी प्रशासन में नवाचार के क्षेत्र में MCD के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया। दिल्ली नगर निगम ने अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों और जन सेवा संबंधी नवाचारों का प्रदर्शन किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन करेगी। साथ ही हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर के बाजारों में बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी।
2: इसकी घोषणा आज नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय व्यापारी बैठक में ली गई। इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भी देश की आजादी के भव्य उत्सव की भावना को समर्पित होगा। साथ ही भारत मंडपम परिसर को तिरंगे की सजावट से अलंकृत किया जाएगा, जिससे देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संदेश देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा आगंतुकों तक पहुंचे। इस अवसर पर चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रत्येक व्यापारी की श्रद्धा, सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने देश के सभी व्यापारिक संगठनों, बाजार संघों और व्यापारियों से इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान भी किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्क वाली 1600 क्वार्टर बोतलें बरामद कर एक चार पहिया वाहन जब्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर दिल्ली के अनहत सिंह को बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी अनाहत सिंह को बधाई दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी ये जीत देश की हर बेटी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का विश्वास देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: पापा, लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। इसकी सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा

0: व्यवस्था भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सरकार कल संसद में कड़े प्रावधानों वाला नया विधेयक भी पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज तेलंगाना में नवनिर्मित कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इससे प्रसिद्ध श्री कोमुरवेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सीधा और सुगम रेल संपर्क मिलेगा। ऋषिकांत सिंह चानंबम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। और हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताजा समाचार मिलने तक 19वें ओवर में 6 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM said the country's examination system must be trustworthy, transparent and leverage technology to the maximum extent. The Prime Minister added

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर.
2: आवाजें सिर्फ ध्वनि नहीं होती, वो स्मृतियां होती हैं, कभी संघर्ष की, कभी गौरव की, और कभी उस आत्मा की जिसे देश को सपने देखना सिखाया. स्वर धरोहर के आज के अंक में हम एक ऐसे स्वर को सुनेंगे जिसने भारत को विज्ञान के आकाश में नई उड़ान दी, एक मुस्कान जो हर चुनौती में आश्वस्त रही, और एक कलम जिसने सपनों को भविष्य की रूपरेखा दी. आइए जानें उस व्यक्तित्व को जिसे देश ने

0: मिसाइल मैन कहा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
0: और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं।
1: आज हम उस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को दुनिया में नई पहचान दी। वो थे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका नाम लेते ही जो पहला शब्द दिमाग में आता है वो है मिसाइल मैन।
0: उनका पूरा जीवन खुद में एक मिसाल है कि कैसे साधारण हालात में जन्मा इंसान भी अपनी मेहनत और लगन के बल पर असाधारण बन सकता है।
1: डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव किराए पर देते थे। माँ आशियम्मा एक सरल गृहिणी थी। परिवार गरीब था लेकिन अच्छे संस्कारों की कोई कमी नहीं थी।
0: कलाम बचपन से ही मेहनती थे। स्कूल से आने के बाद अखबार बांटते थे ताकि घर में मदद कर सके।
1: डॉक्टर कलाम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। वहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली।
0: कहते हैं कि पैसे की तंगी के कारण वो कॉलेज छोड़ने ही वाले थे, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें फीस भरने के लिए पैसे दिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किन लोगों से मिला, आइए सुनते हैं खुद डॉक्टर कलाम से।
2: वेल, द इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स थ्री पीपल आई विल से, माय फादर एंड मदर। फ्रॉम यंग एज दे टॉट मी हाउ क्यूरियोसिटी इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन आई हैड अ वेरी गुड टीचर in the primary school in Rameshwaram. His name is Siva Subramania Aiyya, and he's a science teacher. He went to the blackboard, really a bird. He was teaching how a bird flies. He put a wing and the tail and the nose, then started explaining. And after 30 minutes of teaching, we are 60 people in the class. How many of you understood? He asked. And many of us did not understand, nearly 50% of the class. So we lifted our hand, sir, we did not understand. The teacher again went through, taught. And then he took us that evening. Rameshwaram is an island, my native place, an island. Took us the seashore, showed us tens and twenties of seabirds flying, and wanted us to look at the wings, birds' wings, what they do. It's flapping. When it flaps, to keep it sustained, the flight, cruise flight, that means lift generation, to generate the lift. And then he wanted us to look how it changed the direction using the tail of the bird and the wings. Then third question he asked us, what's the locomotive force which actuated the bird? There we could not answer, but he answered that it's just like a man, human beings, life is actuating force. For birds also actuating force. Humans, all of us understood how it's a bird flies in teaching. But the most important thing on that day, he injected in me, a good teacher, not only he teaches, but also he makes you dream, make you have a vision in life. Yeah, that also injected. Because of that, totally I became a rocket engineer and space scientist.
1: अपनी पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, पर उनका असली काम तो तब शुरू हुआ जब वो इसरो में शामिल हुए।
0: इसरो में रहते हुए उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। उनके नेतृत्व में 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, जो भारत के लिए ऐतिहासिक पल था।
2: इसरो when I completed the major mission with my team, it's a big teamwork. You see, satellite launch vehicle program is thousands of people worked, and it's a huge teamwork in space. That was the first space technology project to put a satellite in the orbit. So when I completed the program, 1980 I completed, then I had an opportunity to meet in Dehradun, one of our defense labs. I was invited to give a lecture about SLV-3 success. And then I happened to meet Dr. Rajaraman. He offered that I must

0: to take over Defense Research and Development Laboratory at Hyderabad. That's the occasion. Then it happened. They worked very hard to get me from space to DRDO. I joined here. And the first program we worked for is integrated missile program.
1: इस कामयाबी के बाद उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनाने की ठानी।
2: कलाम जी के नेतृत्व में ही भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइलों को विकसित किया। इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
1: इन मिसाइलों को कैसे नाम दिया गया था, आइए जानते हैं।
0: We had what is called a missile technology council. We had every week I used to have. So as soon as the government sanctioned the missile development program, we want to name five missiles, five names. So it's about 30 members team, scientists, different scientists, technologists of missile people. So we discussed for a few hours what can be the name. Then we gave them, you go and discuss with your families and come back. And it's a very integrated discussion. Each is a mission and we related. Only thing we felt should be very native. The names of the missiles should be very native. And that is our own. It should represent our background, Indian background, our dreams, our aspiration. That's how the names have come. For example, Agni. Agni is very important way of life in our Indian ethos. And also it does the same function. No? Agni, it's a power. So we want to represent the power. Because after all, what missile does, it brings the strength to the nation. So peace comes. That's how I will put it.
1: '98 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसमें कलाम जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
2: इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। इसे पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ।
0: Two things happened to the nation. It is a technological strength of the nation and it's a teamwork of the nation. I believe today I can say thanks to my teams at various places in the country who have contributed. One is India has missile technology. That is, India is a missile power. That's very important. Any type of missiles you can design, develop, lead to production. The May 11th and May 13th event, very important event, what it has taken place in India. Just like we have become India was a missile power and Israel is a missile power. Now, these events on the two dates in May establishes is India, as our Prime Minister said, India is a nuclear weapon state. So one should look at it. The nation can see that both we are a missile power and a nuclear weapon state. This is the important event, the significance of the event. And in the nuclear test, my team, that is DRDO, we are a partner to Department of Atomic Energy. There's a DRDO and Department of Atomic Energy have worked together. It's a great partnership and that's what you have witnessed.
1: सन 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वो हर किसी से सरलता और मुस्कान के साथ मिलते, इसीलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोल दिया।
2: राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने बच्चों और युवाओं से मिलना नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहते थे, युवाओं के पास देश को बदलने की असली ताकत है। भारत को विकसित देश बनाने के बारे में उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
3: Now, when we were scientists and teaching, we evolved what is called India 2020. How to transform India into a developed nation by 2020, economically developed nation. A team of the people worked, I was the chairman. And when I had an opportunity to become the president of India, I came with that roadmap. The idea is to market my nation, market to parliament, market to the political system. So I find there's a continuity in my career from a scientist technologist to my present position. Because the mission is finally, wherever I am, how to transform India into an economically developed nation.
1: राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद डॉक्टर कलाम ने खुद को शिक्षण और लेखन में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है।
3: आई हैव इन माई लाइफ थ्री बुक्स रादर फोर बुक्स दैट इन्फ्लुएंस मी इन अ बिग वे। वन टू आर होली बुक्स and two are regular, normal books. One is called Empire of Mind. This book is really influenced my life. Another book, A Light from Many Lamps, by Watson, Junior Watson. Third book is, of course, Al-Quran. Quite every day I recite and I get a lot of inspiration and also a spiritual feeling. The fourth book is a famous book. Is written by 2,200 years back. It's called Thiruvalluvar in Tamil. It's a code of life by a great saint, Thiruvalluvar. These are the four books make my life a cheerful, happy and peaceful.
2: 27 July 2015 IIM Shillong में भाषण देते समय उनका निधन हुआ। वो उस वक्त भी छात्रों को देश का भविष्य बनाने की बात कर रहे थे।
1: उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। आज भी उनका जीवन हर भारतीय को प्रेरित करता है। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com swardharohar@gmail.com।
2: तो अब हमें यानी आशुतोष को
1: और श्वेता को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
1: आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और आशुतोष का। आलेख दीपा कुमारी, प्रस्तुति सहयोग डिंपल, तकनीकी सहयोग विशाल और कार्यक्रम के निर्माता आशुतोष कुमार। आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो आज हम आप कार्यक्रम में बात करेंगे ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की, जहां भारत ने आज एक के बाद एक दो पदक जीते हैं और कई और पदक भारतीय खिलाड़ियों के लिए दांव पर लगे हैं। क्रिकेट के मैदान में भारत ने जिम्बाब्वे को किया है क्लीन स्वीप और अनाहत सिंह ने रचा है एक शानदार इतिहास। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह चानबम ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप की। अनाहत सिंह ने स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, पूरा देश ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों

0: में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहा है, पीवी सिंधु और महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धियों को भी सराहा और भारतीय सब जूनियर टीम ने FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारतीय महिला टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ, जहां मीराबाई चानू सेकोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहला स्वर्ण पदक दर्ज कर लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम का वजन उठा करके ये पदक जीता है। इससे पहले दोपहर में ऋषिकांत सिंह ने भारत के लिए रजत पदक अपने नाम किया था पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन कैटेगरी में। और राष्ट्रमंडल खेलों पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत के लिए आज का दिन दो पदक आ चुके हैं, कैसा रहा ओवरऑल और खासकर इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे क्या कहा जा सकता है?
1: शक्ति, सबसे पहले ऋषिकांत सिंह ने अपने खेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए रजत पदक अपने नाम किया और उसके बाद मीराबाई चानू ने भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला। अगर हम मीराबाई चानू की बात करें तो इससे पहले भी वो दो स्वर्ण और एक रजत जीत चुकी हैं, हालांकि इस मुकाबले में उन्होंने 190 किलोग्राम वजन उठाकर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन और जर्क वजन शामिल था। इसके अलावा भारत के आज कुछ मुकाबले और होने हैं, जिसमें जिमनास्ट में तपन मोहंती, लॉन बॉल में रूपा रानी टिर्की और पुतुल सोनावाल अपना जो है दमखम दिखाएंगे। वहीं बॉक्सिंग में प्रीति पवार 54 किलोग्राम में और जादूमणि सिंह 55 और आदित्य प्रताप सिंह 65 किलोग्राम में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खेलेंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने बात की कितना शानदार दिन भारत के लिए रहा और मीराबाई भारत के लिए पहले से स्वर्ण पदक की सबसे मजबूत उम्मीद थी और अब भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई है, जिसमें मीराबाई चानू का स्वर्ण पदक, ऋषिकांत का रजत पदक और झंडू कुमार का कांस्य पदक शामिल है। और इस बीच भारत के लिए पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद लेकर के भारत के गोल्डन बॉय और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंच चुके हैं। नीरज ग्लासगो में गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाली सफलता को दोहराना चाहेंगे। आइए सुनते हैं भारत के इस स्टार खिलाड़ी ने अपनी तैयारियों को लेकर क्या कहा।
2: हमेशा वही बोलता हूँ कि जब भी मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ वो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, तो अगर मैं इंडिया के लिए ले आया यहाँ पे तो मैं अपना 100% दूंगा। वो उस दिन पता चलेगा कि कैसा रहता है, बट मैं हमेशा 100% देता हूँ जब भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, और वही टारगेट यहाँ पे है। और हमारे बाकी एथलीट्स अच्छी तैयारी में है, दो जेवलिन थ्रोअर है, रोहित काफी अच्छी थ्रो करके आया है, हम कोशिश करेंगे कि साथ में एक अच्छा प्रदर्शन करें। हमें पहला कॉम्पिटिशन खेला था टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद, तो वहाँ पे अच्छी थ्रो थी और उसके बाद हमने कमियां लग रही थी पे काम किया और फिटनेस पे काम किया, तो पहले से काफी बेटर लग रहा है।
0: तो कह सकते हैं कि भारत के लिए पदकों की सबसे मजबूत उम्मीदों में से एक स्टार भारतीय खिलाड़ी पहुंच चुका है और भी खिलाड़ियों को मनोबल मिलेगा जो नीरज के साथ स्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत ने जिम्बाब्वे के हरारे में जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 मैच में 35 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 3-0 की जीत दर्ज करते हुए श्रृंखला क्लीन स्वीप कर ली है। भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी होती, भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए थे। तो विशेष, आज का मैच कह सकते हैं जिस तरह का बीता एक महीना भारतीय T20 टीम के लिए रहा, बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी टीम ने।
1: जी बिल्कुल शक्ति, और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जो है क्लीन स्वीप का सिलसिला लगातार जारी है। बस फर्क इतना है कि पहले दो क्लीन स्वीप में भारत को हार का सामना करना पड़ा और अब जीत का स्वाद चखा है। इसी के साथ आज भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। वैभव सूर्यवंशी जो रहे वो जीत के हीरो रहे, उन्होंने 49 गेंदों पर 81 रन बनाए, उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, साथ ही साथ उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया क्योंकि उन्होंने इन तीन मुकाबलों में 151 रन बनाए हैं। इंग्लैंड में उनको काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अब अपने बल्ले से जवाब दिया है और बताया है कि उनको ऐसे ही वंडर बॉय नहीं कहा जाता है। अगर गेंदबाजी की हम बात करें तो जो सबसे बड़ी दिक्कत समझ आ रही थी वो थी स्पिन डिपार्टमेंट की, वहाँ रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा और सूर्यान सेडगे ने अपना अपना अहम योगदान दिया। मयंक यादव ने इस सीरीज़ में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्होंने पहली गेंद पर 3 बार विकेट लिया है, यह रिकॉर्ड जो है इससे पहले भुवनेश्वर कुमार के नाम था, उन्होंने इसकी बराबरी कर ली है, वह ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि 16 साल की उम्र से पहले उन्होंने 250 जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगा दी है, और वैभव सूर्यवंशी की अगर जितनी हम बात करें उतनी कम है। वो इस साल सबसे ज्यादा T20 में भारत के लिए छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है, दूसरे पे अभिषेक और तीसरे पे जो है ईशान किशन।

0: मौजूद है, और इसके बाद भारत को एशियन गेम्स खेलने हैं। तो ये भारत के मनोबल के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज रही है, जो जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करके अब एशियन गेम्स के लिए अपना दमखम दिखाएंगे वहां पर।
1: जी बिल्कुल। और इस खिलाड़ी ने जिस तरह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में, और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने एक छाप छोड़ दी है कि भारत से एक बहुत दिग्गज खिलाड़ी निकलने वाला है। और अब कार्यक्रम में बात की जाए अनाहत सिंह की, जिन्होंने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियन बन गई हैं। अनाहत ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस खिलाड़ी ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीता। सुनते हैं अनाहत की इस उपलब्धि पर यह खास रिपोर्ट।
2: वर्ल्ड स्क्वाश वुमेन्स चैंपियन अनाहत सिंह फ्रॉम इंडिया।
3: अनाहत ने कल ये खिताब जीतकर मिस्र के खिलाड़ियों के 15 साल से चले आ रहे दबदबे को समाप्त किया। शुक्रवार रात अनाहत सिंह 21 साल में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी थीं। उन्होंने मिस्र की बारब सामेह को 4 गेम में हराया था। उन्होंने फाइनल मुकाबले में एक और मिस्र के खिलाड़ी को हराकर अपना शानदार अभियान जारी रखा और ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विश्व नंबर 20 और टॉप सीड अनाहत ने पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक किया था। इस शानदार उपलब्धि पर अनाहत को भरपूर बधाइयां मिल रही हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गज हस्तियों ने इस युवा खिलाड़ी की उपलब्धि को ना सिर्फ सराहा है बल्कि पूरे विश्व ने आज लोहा माना है कि स्क्वाश में भारत का एक शानदार खिलाड़ी विश्व की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कुछ दिन पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन पूरा देश कर रहा है।
4: कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते।
1: प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि हाल के समय में देश के युवाओं ने खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
4: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था।
1: तो एक बहुत शानदार उपलब्धि जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हासिल की है और जो पीवी सिंधु ने हासिल की है, जिसपे आज पूरा देश और पूरी दुनिया गर्व कर रही है। प्रधानमंत्री ने केरलम में एर्नाकुलम जिले के दक्षिण चित्तूर में खेलों के लिए की गई पहल की भी चर्चा की। वहां के एक स्कूल में एक संस्कृत क्लब है जहां के शिक्षक अभिलाष संस्कृत को अद्भुत तरीके से लोकप्रिय बना रहे हैं। अक्षरा कंदुक नाम की इस परियोजना में फुटबॉल के शब्दों को जोड़कर संस्कृत के शब्दों की सरल व्याख्या की जाती है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत शानदार और एक बहुत रचनात्मक पहल जो युवाओं को खेल के साथ साथ पढ़ाई से भी जोड़ने का काम करती है। और बात की जाए भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप की। 135वें ड्यूरेंट कप में रांची में पहली बार आयोजित मुकाबले में आज शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराया। हमारी संवाददाता महवीश रहमान की ये रिपोर्ट।
5: रांची ने आज पहली बार एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप की मेजबानी कर इतिहास रच दिया। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 135वें ड्यूरेंट कप के रांची चरण का आगाज हुआ, जिसमें उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से पराजित कर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। उद्घाटन समारोह के दौरान भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें खेल भावना, मित्रता और दोनों देशों के मजबूत संबंधों का संदेश दिया। समारोह में हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट, पैरामोटर प्रदर्शन और तिरंगे के साथ डूरंड कप एवं ईस्टर्न कमांड के ध्वजों की आकर्षक प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे फुटबॉल प्रेमियों ने मुकाबले का आनंद लिया, जबकि जिला प्रशासन और पुलिस की व्यापक

0: सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के बीच आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स कैन के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: तो अब कहा जा सकता है कि रांची में फुटबॉल की दस्तक, कि ड्यूरंट कप और फुटबॉल का कुनबा देश में धीरे धीरे अपने पांव अलग राज्यों में भी फैला रहा है। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 3-1 से हराया। वहीं भारतीय महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया।
2: भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। भारत के लिए रोमित पाल ने मैच के 5वें मिनट, कप्तान केतन कुशवाहा ने 12वें मिनट और शाहरुख अली ने 13वें मिनट में गोल करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। फाइनल में भारत ने सटीक पासिंग और अनुशासित खेल के साथ शुरुआत में ही बढ़त बना ली। रोमित पाल ने पहले हाफ में गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई। उन्होंने पाकिस्तानी गोलकीपर को छकाते हुए शानदार गोल दागा। दूसरे हाफ की शुरुआत में भारत ने अपना दबदबा और बढ़ाया। कप्तान केतन ने गोल करते हुए भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके तुरंत बाद शाहरुख अली ने गोल को 3 गुना कर दिया। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल मोहम्मद उस्मान ने मैच के 16वें मिनट में दागा। हालांकि इसके अलावा भारतीय टीम ने पाकिस्तान को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने पहली FIH यूथ हॉकी 5S विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। हालांकि भारत की महिला टीम को फाइनल मैच में चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। चीन ने भारतीय डिफेंस को भेजते हुए मैच में कुल 4 गोल दागे, जबकि भारत की बेटियां सिर्फ 2 गोल ही कर सकी और भारतीय महिला टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हॉकी इंडिया ने दोनों टीमों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की। स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुष टीम के हर खिलाड़ी को 2 लाख और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं रजत पदक विजेता महिला टीम की हर खिलाड़ी को 1 लाख और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बेहद शानदार दिन रहा, जहां भारतीय युवा खिलाड़ियों ने स्क्वाश से लेकर हॉकी तक के मैदान पर भारत के लिए खूब उपलब्धियां बटोरी। और अब बात की जाए 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, जो कि कल से नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में 35 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 2 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुष टीम, भारतीय पुरुष टीम जो है वो खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक है, जिसमें भारत की पदक की उम्मीदें जी साथियान, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मानुष शाह और पायस जैन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। महिला वर्ग में भारतीय अभियान की अगुवाई श्रीजा अकुला, सुतीर्था मुखर्जी, यशस्विनी घोरपोड़े, सिंड्रेला दास और स्वास्तिका घोष करेंगी। प्रतियोगिता में पुरुषों के वर्ग में 23 जबकि महिलाओं के वर्ग में 18 टीमें हिस्सा लेंगी। और आज देश भर में फिटनेस और स्वास्थ्य को जीवन शैली के अंग बनाने के लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का भी आयोजन किया गया, जहां कई शहरों में लोगों ने सुबह सुबह साइकिल चला करके फिटनेस का संदेश दिया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प

0: लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां,

0: कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
0: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
1: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bags silver in the men's

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक

कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बात राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानी असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत दर्ज की। हरारे में भारत के 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए थे। मीराबाई चानू सेकोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलो वजन उठाकर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच रात भर संघर्ष जारी रहा। आज सुबह रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होर लीवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने कहा कि आज सुबह रूसी हमलों से कीव में ऐतिहासिक केंद्र के पास एक इमारत में आग लग गई। उन्होंने कहा कि हमलों के मलबे से दूसरी जगहों पर भी आग लगी, जिससे इमारतों, गाड़ियों और पार्किंग क्षेत्र को नुकसान हुआ। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि MV एजियन रैगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से फिलहाल 2 के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। दूतावास ने कहा कि खोज और बचाव अभियान जारी है और दूतावास लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। एक रिपोर्ट।
3: परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष अप्रैल से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिनमें 5 भारतीयों की मौत हुई है। भारतीय नागरिकों से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रोजगार के शर्तें लागू अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानकों के अनुरूप हों और आपात स्थिति में चिकित्सा देखभाल, निकासी, स्वदेश वापसी और मुआवजे के लिए पर्याप्त प्रावधान हो। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन में आज सुबह तूफान नौल के ग्वांगडोंग में दस्तक देने के बाद गांसू प्रांत में अचानक आई बाढ़ में 10 लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण देश के दक्षिणी हिस्से में मूसलाधार बारिश और 162 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं। तूफान के कारण ग्वांगडोंग में हवाई और हाई स्पीड रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने चौथे स्तर की आपदा राहत सक्रिय कर दी। चीन ने तूफान नौल से निपटने के लिए 10 करोड़ युआन आवंटित किए हैं। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में भीषण जंगल की आग के कारण रात भर में 55,000 और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में अब तक करीब 2,20,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं।

0: आग अब प्रसिद्ध वाइन उत्पादक शहर बोर्दो के और करीब पहुंच गई है। उधर पड़ोसी देश स्पेन ने भी जंगल की आग के कारण अपने पूर्वी तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
1: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस है। मैंग्रोव ऐसे विशेष पेड़ और झाड़ियां हैं जो समुद्र के खारे पानी और दलदली जमीन पर उगते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच कई क्षेत्रों में रात भर हमलों की खबर। तूफान नोल ने दक्षिणी चीन में तबाही मचाई। अचानक आई बाढ़ से 10 लोगों की मौत। फ्रांस में जंगल की आग के कारण नए सिरे से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगभग 2,20,000 निवासी विस्थापित हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज़, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 22 सेकेंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल जिसका नाम है हर सिंगार। और हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। हर सिंगार एक ऐसा फूल जो रात की खामोशी में महकता है और सुबह की पहली किरण के साथ अपनी खुशबू बिखेर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी फिल्मों के गीत, वक्त गुजरता जाता है लेकिन उनकी महक, उनकी कशिश और उनका एहसास दिल के किसी न किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। तो आइए यादों की इस खुशनुमा महफिल का आगाज करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जिसमें मोहब्बत की रोशनी, मुलाकात की तासीर और दिल की धड़कनों की नरम सी आहट सुनाई देती है, और वो नगमा है 1975 में आई फिल्म आंधी का। ये बेहद खूबसूरत नगमा तुम आ गए हो नूर आ गया है। इस दिलनशी नगमे को अपनी जादुई आवाजों से सजाया है किशोर कुमार साहब और लता जी ने। इसके अल्फाज लिखे हैं गुलजार साहब ने और इसकी रूह में संगीत का रंग भरा है राहुल देव बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसे फिल्म आंधी का ये बहुत ही खूबसूरत सदाबहार नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई,
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
7: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
6: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें, तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
7: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
6: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, यानी वो महफिल जहां सदाबहार नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर सिनेमा के उस सदाबहार गीतों की खुशबू, उसके अल्फाज और उसकी धुनों का सफर तय करेंगे हर सिंगार की इस महफिल के जरिए। कहते हैं कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि अपने किरदारों, अपनी कहानियों और संगीत की वजह से इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसी ही एक यादगार फिल्म थी जीवन मृत्यु, जो वर्ष 1970 में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले निर्माता तारा चंद बड़जात्या द्वारा बनाई गई थी। यह एक प्रभावशाली अपराध और रोमांचक फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र, राखी, अजीत, राजेंद्र नाथ और लीला चिटनिश जैसी मशहूर कलाकारों ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। यह फिल्म बंगाली सुपरहिट फिल्म जीवन मृत्यु का हिंदी रूपांतरण थी। दिलचस्प बात यह भी है कि राखी जी ने इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा, जबकि धर्मेंद्र ने पहली बार पर्दे पर एक सिख युवक का किरदार निभाया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी मिली और आज भी इसे धर्मेंद्र साहब की बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों में गिना जाता है। बाद उसके संगीत की जाए तो इसका संगीत इतना प्यारा था जिसने दर्शकों से मोहब्बत, सपनों और जीवन साथ के खूबसूरत एहसास को अपनी मधुर धुनों में समेट रखा था। ये गीत आज भी शादियों, पारिवारिक समारोहों और अलग अलग मौकों पर उसी मोहब्बत के साथ सुनाई देता है और वो गीत है झिलमिल सितारों का आंगन होगा। इस मधुर युगल गीत को अपनी जादुई आवाजों से अमर बनाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। इसके खूबसूरत बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने और अपनी बेहद सुकून देने वाली धुनों से सजाया है संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार। और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और जज्बाती फिल्म की, और वो फिल्म है शक्ति। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। उनके किरदार, उनके संवाद और उनकी कहानी बरसों तक जहन में जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक शाहकार फिल्म थी शक्ति। साल 1982 में निर्देशक रमेश सिप्पी के ये कालजयी फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक यादगार लम्हा बन गई। वजह भी खास थी, हिंदी फिल्मों के दो महान नायकों, एक शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब, इन दोनों ने पहली बार और इकलौती बार एक साथ पर्दा साझा किया। एक तरफ उसूलों पर अडिग पिता और दूसरी ओर हालात से जख्मी बेटा, दोनों के बीच का टकराव सिर्फ कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, फर्ज और मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान बन गया जिसने हर दर्शक के दिल को छू लिया। दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म में विजय का किरदार पहले राज बब्बर साहब निभाने वाले थे, लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन साहब ने इस भूमिका में दिलचस्पी दिखाई तो ये किरदार उन्हें मिल गया। वहीं राखी गुलजार को कई लोगों ने सलाह दी कि अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाना उनके करियर के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इन बातों की परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब के साथ अभिनय करने का मौका मिलना। फिल्म शक्ति को आलोचकों और दर्शकों दोनों का भरपूर प्यार मिला। इसे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया, लेकिन यह सम्मान दिलीप कुमार साहब के नाम रहा। आज भी शक्ति को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में शुमार किया जाता है। ऐसी दमदार फिल्म का संगीत भी उतना ही खूबसूरत था। इसके गीतों में रिश्तों की नज़ाकत, एहसासात की गर्माहट और धुनों की ऐसी कशिश है जो आज भी दिल को सुकून देती है। तो आइए हर सिंगार की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म शक्ति का एक सदाबहार नगमा। यकीन मानिए ये गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचेगी बल्कि आपकी यादों की किसी खूबसूरत कोने तक आपको लेकर जाएगी। तो आइए यही नगमा सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। शक्ति फिल्म का यह नगमा था लता जी और किशोर कुमार साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन साहब ने। और यह फिल्म आई थी 1982 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, आप अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। इट्स fmgoldairdaily@gmail.com। तो हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे यानी फिरोज को दीजिए हर सिंगार की इस महफिल से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्र का पुनः प्रसारण, और 11:40 पर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना सुनहरे दौर का बेहद खूबसूरत किस्सा, यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को गीत मेरे मनमीत में, ठीक 11:40 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। फिलहाल चलते हैं समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक

0: के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Divas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down the

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, बहुत धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज नियरली 15,000 crore रुपीज इन जुलाई सो फार. इन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस रिबाउंड आफ्टर 2 straight weeks ऑफ डिक्लाइन. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लिवाली का रुख कायम रखा. जुलाई में अब तक लगभग 15,000 crore रुपए का निवेश किया.

0: or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. जुलाई में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPIs ने लिवाली का रुख कायम रखा है. इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 14,946 करोड़ रुपए का निवेश किया. पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो FPIs ने भारतीय शेयरों में 3,049 करोड़ रुपए डाले हैं. भारतीय ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है. जुलाई में उन्होंने FAR के जरिए 9,521 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 27,351 करोड़ रुपए का निवेश किया है. आशुतोष, ये आंकड़े अब बहुत दिनों के बाद हमें जुलाई में अच्छे आंकड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं. FPIs का रुख, उत्साह, दिलचस्पी सब बनी हुई है अभी. लेकिन अभी हमारे बाजार में जो पैसा आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वहां से साउथ कोरिया के मार्केट से या जहां पर भी AI वाला और चिप वाले मार्केट थे वहां से पैसे निकले हैं और हमारे बाजार में आ रहे हैं, तो क्या ये कुछ टेम्पररी फेज है मार्केट की उथल पुथल का या शिफ्ट होने का, या हम माने कि अभी कुछ बड़ा बदला है, इक्वेशंस बदल गए हैं?
2: देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड है, जो इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, वो बरकरार थे, बरकरार हैं और आशा है कि वो बरकरार रहेंगे. और इसीलिए जो एक सेक्युलर तरीके से देखा गया है कि फॉरेन कैपिटल का इंडिया में इन्वेस्ट होना, उसका निवेशित होना, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हुआ या इस ट्रेंड में कोई रोक लगी है. हाँ, बीच में जो वैश्विक रूप में जो परिस्थितियां बनती हैं उनकी वजह से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो जरूर मार्केट को उनको झेलना पड़ता है. अभी हमने देखा पीछे जैसे मिडिल ईस्ट में जो ट्रेंड रहा उसको लेकर जो एक रिस्क एवर्जन ग्लोबल मार्केट में आता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आया. हालांकि इंडिया का इस पर्टिकुलर वॉर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट तो ऐसी घटनाओं का ग्लोबल होता ही है. AI का एक ट्रेंड है. बीच में देखा गया कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ट्रेंड्स काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी इनके ऊपर फोकस रहा. लेकिन वैल्यूएशंस की फिर बात की जाने लगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाने लगी. तो ये शॉर्ट टर्म में ये सब नॉइस जो है इम्पैक्ट करती है मार्केट को और करती रहेगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आप सिग्नल देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है. और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो हमने देखा है कि फॉरेन कैपिटल वापस इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करने में सक्षम है.
0: Okay, taking the discussion further from where you left, saying that, you know, there is still interest in the Indian market. So, from the retail investor's point of view, Ashutosh, how do you see this in building confidence in the market sentiment?
2: See, as far as the global is concerned, of course, when the foreign capital comes to India, it gives a fillip to the Indian markets. And when the Indian markets recover, they get on a momentum. So that brings cheer among the domestic investors as well.
0: Correct.
2: But time and again we've been advising that domestic investors, retail investors should not be overly reading into the short-term trends of FII money or what, you know, these investors are doing. Focus far more on your circumstances. What is your investing need that you are investing for? How much you can save and invest? And what is in the long-term scheme of things that you are wanting to achieve? If you have the long-time horizon, equity is still the most promising and the most wealth-generating asset class with the most wealth-generating potential. And that remains a secular trend.
0: We'll come back to you with this discussion. Meanwhile, let's connect with our first caller from Delhi. Sunil Gupta, welcome to the show. Please ask your question.
3: Namaskar, Masin Gupta. Ji. Sir, mere ek question do se. Ek to ye tha ki mutual funds investment ka koi ek centralized portal hai jisme ki ek hi jagah se sab jagah investment ho sakti hai authorized koi ek sa. Aur lekin initially 32 years age wale ke liye कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस किस सेगमेंट में करनी चाहिए?
2: जी, तो पहला सवाल आपका, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहीं सेंट्रल जगह से हो सकती है? देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज.

0: कल फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक और प्लेटफॉर्म है एमएफ सेंट्रल के नाम से, जो कि दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं, के फिनटेक और कैम्स, इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। आप एमएफ सेंट्रल पे भी अपना लॉग इन कर डायरेक्ट प्लान्स में म्यूचुअल फंड्स के सहजता के साथ निवेश कर सकते हैं। तो आप एमएफ सेंट्रल एक बार ट्राई करिए, शायद आपको वो कन्वीनियंट लगेगा। आप उस पर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी, नॉमिनी चेंज करना, बैंक अकाउंट अपडेट करना, इस टाइप की ट्रांजैक्शंस भी आप सहजता के साथ एमएफ सेंट्रल पोर्टल पे कर सकते हैं, तो आप उसको देखिए। दूसरा आपका सवाल, 32 साल आपने उम्र बताई, लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाहते हैं, शुरुआती निवेशक हैं आप, और अगर आपको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक या दो अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करें। ये फंड्स आपका करीब 70-75% पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं, बचा हुआ 20-25% पैसा डेट मार्केट्स में निवेश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेशन का, इक्विटी मार्केट्स के की बढ़त का लाभ आपको प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्योंकि 20-25% पैसा डेट में होता है, तो जब भी मार्केट गिरती है ये फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, और उस वजह से एक नए इन्वेस्टर को पैनिक ना हो, वो बहुत जल्दी निराश हताश ना हो जाए, तो वैसा थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देने में रिलेटिव व्हेन द मार्केट्स फॉल ये फंड्स सक्षम है। तो अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में अपना SIP शुरू करें, भले ही थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करें, इसको साल 6 महीना एक्सपीरियंस करें, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके बाद अपनी निवेश की मात्रा बढ़ाएं।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी,
2: मैंने अपना स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाया था और मैं गोल्ड ETF परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गोल्ड ETF के नाम से, वहाँ गोल्ड ETF डायरेक्ट के नाम से नजर नहीं आ रहा है, गोल्ड फंड के नाम से नजर आ रहा है। तो क्या ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड एक ही चीज है, और दोनों के एक्सपेंस रेशियो में क्या कोई फर्क है? धन्यवाद।
0: जी, गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स का मकसद एक ही होता है, लेकिन ये दो अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो मकसद एक ही है कि ये आपका पैसा गोल्ड में निवेश करते हैं, और गोल्ड के दाम जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके रिटर्न मिलते हैं। लेकिन गोल्ड ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, आप गोल्ड ETFs की जो यूनिट्स हैं आप स्टॉक एक्सचेंज पे किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको गोल्ड के रिटर्न्स का ही मिलेगा, लेकिन इसकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होती है इनकी काफी, और इनको आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। वहीं गोल्ड फंड जो है वो जैसे आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं। टिपिकली ये होता है कि किसी भी AMC का, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो गोल्ड फंड होता है वो आपका पैसा इंटर्न गोल्ड ETF में निवेश करता है, और गोल्ड ETF के माध्यम से वो पैसा आगे गोल्ड में जाता है। तो आप गोल्ड फंड को एक पास थ्रू व्हीकल मानिए, आपका पैसा गोल्ड फंड में जाएगा, गोल्ड फंड से गोल्ड ETF में जाएगा, और वहां से गोल्ड में निवेश होगा, तो एक लेयर ऐड हो जाती है। जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोलना, वो कन्वीनियंस चाहते हैं विदाउट स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट निवेश करने के लिए, तो गोल्ड ETF गोल्ड फंड उनके लिए अच्छा विकल्प है। थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं समझता दोनों में है। आप वो चुनाव करें उसका जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको आप नॉर्मली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास स्टॉक ब्रोकिंग एक डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप गोल्ड ETF की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, तो सिर्फ एक गोल्ड फंड में थोड़ा सा अपना पैसा लगाने के लिए आप एक डीमैट और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट मेंटेन करें, मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनकन्वीनियंस है, कंबरसम है, तो आप गोल्ड फंड की तरफ जा सकते हैं।
3: ऑलराइट, लेट्स नाउ आस्क विशाल फ्रॉम दिल्ली, व्हाट्स हिज क्वेश्चन? विशाल जी, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मार्केट मंत्रा, जैसे मैं 35 ईयर मेरी साल है, तो मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में, मेरे को हाई रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न भी चाहिए।
0: जी, आप 30 साल के हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न आपने बोला। देखिए, आमतौर पर मेरी सलाह यही होती है कि अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मुझे काफी बेहतर लगते हैं एक शुरुआती निवेशक के लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न के लिए तैयार हैं, अगर मार्केट डीप करेक्शन होता है 25-30% की, अगर अचानक मार्केट में गिरावट आती है, उससे आप निराश हताश नहीं होंगे, तो आप कोई भी एक अच्छे मल्टी कैप फंड का चुनाव करिए। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो करीब आपका

0: कम से कम 25-25% आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगता है, और बाकी 25% फंड मैनेजर की के पास लीवे होता है कि वो किस मार्केट सेगमेंट में कहां निवेश करना चाहते हैं. तो मल्टी कैप फंड ऐसे हैं कि एक ही फंड में आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, कम से कम 50%, क्योंकि आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहता है, तो एक रीजनेबली एग्रेसिव आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में, अच्छे फंड्स अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम रहते हैं. तो आप किसी एक या दो मल्टी कैप फंड्स का चुनाव कर उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ध्यान रखिए कि हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें. एक साथ अगर आपके पास एक लमसम धनराशि है उसको भी आप जरूर कम से कम 8-10 महीनों में जरूर स्प्रेड कर ही लगाएं.
1: जी, अगले कॉलर है कोलकाता से विश्वज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
2: गुड इवनिंग फॉर ऑल.
3: गुड इवनिंग.
2: मैं ओल्ड इन्वेस्टर हूँ. मेन बात है क्या, देखिए 2 साल से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. आप लोग बोल रहे हैं AI, आप बोल रहे हैं टैरिफ, आप बोल रहे हैं ट्रंप, आप बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट, लेकिन करेक्शन जो हो रहा है व्हाट्स द यूज ऑफ, आई कांट अंडरस्टैंड एक्चुअली. करेक्शन मतलब क्या है, बैंक का इंटरेस्ट का लेवल के नीचे जाएगी, MF म्यूचुअल फंड किस लिए हम लोग करेंगे.
0: जी देखिए, म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है, रिटर्न आपके हमेशा ही मार्केट लिंक रहते हैं. तो बिल्कुल अगर मार्केट में गिरावट का माहौल है, अगर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट के नीचे भी इनका रिटर्न जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, आपकी कैपिटल में आपको लॉस भी हो सकता है. तो म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक्ड निवेश हैं, इनमें मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिस्क बरकरार रहता है, और इसीलिए इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी बोला जाता है. अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बताया कि आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या बैंक FD इस टाइप के विकल्प हैं, लेकिन इनके रिटर्न हमेशा ही मॉडरेट रहते हैं. ये आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते. अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न इन सभी विकल्पों का देखते हैं तो आपको एक काफी मॉडरेट रिटर्न मिलता है. तो अगर आप मॉडरेट रिटर्न लेकिन श्योरिटी के साथ से संतुष्ट हैं तो यही सारे आपके पास विकल्प हैं. लेकिन अगर आप हाई रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा. मेरा ख्याल जो सही रास्ता है वो एक मिडल पाथ है कि आप अपना काफी पैसा एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में रखें, लेकिन थोड़ा पैसा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज में भी डालिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है. इन्फ्लेशन के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे ओल्ड एज में. आज आपका जितने पैसे से आपका घर चल जाता है, 5-10 साल में वो पैसे पर्याप्त नहीं रहेंगे. तो उसके लिए आपकी कैपिटल का ग्रो करना भी जरूरी है. तो मेरा ख्याल एक ओल्ड इन्वेस्टर को भी थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है शायद, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक सही विकल्प है.
3: Listeners, you are tuned to your very own favorite program, Market Mantra. And today being Sunday, we are entertaining calls on mutual fund related queries. We are fortunate to have with us in the studios mutual fund expert Ashutosh Gupta. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106.
1: और अब देखते हैं कि सराफा बाजार का क्या हाल रहा है. 2 हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में पिछले हफ्ते थोड़ी तेजी देखी गई. MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.56% की बढ़त हुई और ये 1,43,916 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 1.55% बढ़कर 2,22,138 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.3% की बढ़त हुई और ये $4,070.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ. इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3.8% बढ़कर $58.49 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुई. आशुतोष, सोने और चांदी का जिक्र जब भी आता है और म्यूचुअल फंड्स का जब हमारा संडे का स्पेशल शो रहता है, अक्सर बात होती है, लोग पूछते हैं कि जब बीच में जब सोने और चांदी में काफी तेजी दिखाई दे रही थी तब लोग पूछते हैं कि क्या करें, हम सोने और चांदी की ओर जाएं या म्यूचुअल फंड्स की ओर जाएं. एक एक सही

0: ही पोर्टफोलियो बनाने के, एक सही निवेश बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत और हर चीज का लाभ उठाने के लिए किस चीज का कितना प्रतिशत हमें रखना चाहिए?
1: जी, तो पहले तो ये जो रिबाउंड देखा गया है सोने और चांदी के दाम में, ये एक मेरा ख्याल राहत के रूप में आया है। बहुत सारे निवेशक जो पिछले 2-3 साल में जो सोने और चांदी में तेजी देखी गई है, उसको देखकर जो बहुत सारे निवेशक
0: आए
1: इसमें एंटर
0: थे
1: हुए थे
0: जी।
1: और फिर इस साल शुरुआत से उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, तो मेरा ख्याल ये जो थोड़ा रिबाउंड है ये उनके लिए थोड़ी थोड़ा राहतदायक जरूर होगा। और इसी से इन्वेस्टर्स में, यही इन्वेस्टर्स के लिए मेन सीख छुपी है कि आप किसी भी हॉट ट्रेंड को, किसी भी हॉट एसेट क्लास को जो पिछले 1 साल में जिसने ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है, अगर आप सिर्फ मोमेंटम चेस कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग में, पिछले 1 साल में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास है अगर उसका पीछा कर रहे हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि आपके हाथ निराशा लगेगी। आप जब वो बहुत ऊपर उठ चुकी होगी एसेट क्लास, आप तब उसमें निवेश करेंगे और उसके बाद उसके रिटर्न्स मॉडरेट हो जाएंगे या गिर जाएंगे और वो आपके लिए निराशाजनक होगा। तो जरूरी यह है कि आप डिसिप्लिन से अपने लिए एक एसेट एलोकेशन बनाएं और उसके उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें, चाहे वो एसेट क्लास उतार चढ़ाव के माहौल के बावजूद आप एक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें। गोल्ड की जहां तक बात है, इसका मुख्य रूप से रोल जो होता है पोर्टफोलियो में, वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए होता है। ये एक काउंटर वेट है इक्विटी का। जब जब इक्विटी मार्केट में गिरावट आई है, देखा गया है कि गोल्ड उस वक्त थोड़ी स्थिरता प्रदान करता है। जब जब इकोनॉमी में क्राइसिस का माहौल होता है, गोल्ड एसेट क्लास, क्योंकि उसको एक सेफ हेवन की तरह देखा गया है, तो उसके रिटर्न्स उन दिनों अच्छे चलते हैं। तो इस एट्रीब्यूट के लिए आपके पोर्टफोलियो में अगर 10-15% आप गोल्ड को रखते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जरूरी है कि आप इस पे बरकरार रहें। आप तब ना इन्वेस्ट करें जब वो गोल्ड बढ़ चला है और उसके बाद आप निवेश करेंगे तो आपके हाथ निराशा लगेगी। तो आप एक डिसिप्लिन के साथ 10-15% की एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में कार्व आउट करें और उस पे बरकरार रहें।
0: और गोल्ड लेने के लिए फिजिकल गोल्ड ना लें, आप ETF ले सकते हैं तो लें, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में भी, आपने जैसे भी एक सवाल आया था हमारे पास कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, अगर आपको सहजता के साथ इन्वेस्ट करना है, गोल्ड का फिजिकल, अगर आपको निवेश का ही आपका पर्पस है, क्योंकि गोल्ड का मुख्य रूप से हिंदुस्तान में पर्पस होता है कंजम्पशन, उसको ज्वेलरी के रूप में एक कंजम्पशन एसेट की तरह देखा जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप उसको एज अ फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स जो आज काफी सहजता के साथ अवेलेबल है, वो अमंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए।
2: वील कम बैक टू यू आशुतोष ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद व्हाट हिज क्वेरी इज। सुभाष जी, सवाल पूछें।
3: हाँ नमस्कार सर
2: जी।
3: सर मैं इसमें, मेरा ही एसेट का लार्ज कैप फंड में 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से प्रॉपरली, जैसे पहले इसका परफॉर्मेंस था, मेरे जो रिटर्न मिल रहे थे अभी तो बहुत कम है इसके रिटर्न, अभी तो इस साल तो नेगेटिव में ही रहा, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसमें? मेरा ये एसेट लार्ज कैप फंड का
1: जी, मेरा ख्याल आप मेरा एसेट लार्ज कैप में बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका हिस्टोरिक रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है और एक इन्वेस्टर्स की जो इसके साथ एक्सपेक्टेशन साल दर साल सेट हो गई थी, तो हाल फिलहाल में उन एक्सपेक्टेशंस पे शायद ये उतना खरा नहीं उतरा है। लेकिन अपने आप में ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये कोई बहुत बुरा फंड नहीं है या बहुत निराशाजनक नहीं हुआ है। हाँ, जिस टाइप की एक्सपेक्टेशंस जो उसने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, उस पे खरे उतर पाना या लोगों को जिस टाइप की इससे आशाएं साल दर साल रहती हैं, तो कहीं पे निवेशकों को अपनी एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेट करनी पड़ेंगी। एक बढ़ता हुआ फंड है, मेरा ख्याल आज की डेट में 40,000 करोड़ के करीब इसका AUM है, तो देखिए जो एक टाइम पर जिस टाइप से ये रिटर्न दे पाता था या जिस तरीके से ये मैनेज होता था, बढ़ते AUM के साथ उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन अभी भी फंड मैनेजमेंट टीम काफी सक्षम है, अच्छा फंड है। इस साल अगर देखें नेगेटिव रिटर्न, तो देखिए इसलिए कि मार्केट के ही नेगेटिव रिटर्न है, तो नेगेटिव रिटर्न सारे लार्ज कैप फंड के हैं, लेकिन फिर भी अबव एवरेज परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी में इस साल, तो मेरा ख्याल आप फिलहाल तो इस फंड में बिल्कुल बने रह सकते हैं
0: जी। और सरबजीत, हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अभी इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है, हमने इतने समय से निवेश किया हुआ था, अब क्या करें हम? तो आशुतोष, अक्सर ये सवाल उठता है और एक बुनियादी निवेशक के तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमने चलिए 10,000 रुपये, 5,000 रुपये या 1,00,000 रुपये कहीं

0: फंड्स में लगाए हुए हैं, एक दो तीन फंड्स में डाले हुए हैं, तो हमें उसको कितने समय पर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि फंड्स का तो प्रदर्शन बदलता रहता है समय के साथ, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है, तो हमें कब रिव्यू करना चाहिए और कब कितनी गिरावट आने पर उसके प्रदर्शन में हमें बदल देना चाहिए, अपने पैसे हटा लेने चाहिए?
1: जी, तो देखिए ये काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स काफ़ी शॉर्ट टर्म के परफॉर्मेंस को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। जहां तक पोर्टफोलियो रिव्यू की बात है, मेरा ख्याल अगर आप साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आप अपने SIPs बनाइए, उनको चलने दीजिए, साल में एक बार आप रिव्यू करिए, दो तीन डायमेंशंस है उस रिव्यू की। पहली तो आप देखिए कि एक साल बाद क्या आप अपना SIP की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो नौकरीशुदा लोग हैं, साल में एक बार आपकी तरक्की होती है, आपकी इनकम बढ़ती है, कोशिश करिए कि आप अपनी इनकम के साथ आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ा पाएं, तो जो आपकी SIP के अमाउंट्स हैं उनको बढ़ा पाएं। तो साल में एक बार रिव्यू करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति देखिए कि आप अपनी इनकम का कितना प्रतिशत पैसा निवेश कर रहे हैं, और क्या वो दो तीन साल से अगर आपने नहीं बढ़ाया है तो बिल्कुल उसको इस साल कोशिश करिए कि आप बढ़ाएं। तो ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा, आप अपनी एसेट एलोकेशन देखिए कि अगर आप मानिए 75% इक्विटी 25% डेट की एसेट एलोकेशन के साथ चले थे और मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से एसेट एलोकेशन हिल गई है, मानिए इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और जो 75% थी वो अब 85% हो चली है, तो एक साल बाद रिव्यू करके थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए, जिससे जो आप रिस्क रिटर्न इक्वेशन बनाए रखना चाहते थे वो बनी रहे। और तीसरा आप नजरिया यही है कि क्या कुछ फंड्स ऐसे हो गए हैं कि जिनमें बदलाव की जरूरत है, वो निराशाजनक हो गए हैं और पोर्टफोलियो में कुछ उलटफेर की जरूरत है। लेकिन वो सिर्फ पिछले एक साल या पिछले 6 महीने के रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड मत करिए, कम से कम 3-4 साल का होराइजन किसी भी फंड के लिए रखिए। बेहतरीन से बेहतरीन फंड ऑल्सो गोस थ्रू अ रफ फेज, तो किसी भी फंड का कुछ समय के लिए अच्छे रिटर्न ना देना ये बड़ा ही स्वाभाविक है। तो छोटे छोटे टाइम पीरियड पे साल डेढ़ साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। और जरूरी, आप उस अगर आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया भी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो शायद स्मॉल कैप बाजार ही निराशाजनक रहा है, तो आप ये भी देखिए कि जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इन सारे मुद्दों पर आप विचार करकर फिर अपना डिसीजन।
0: क्योंकि अगर पूरा बाजार ही गिरा है, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं, तो जो उन पर निर्भर है, अगर उनमें ही गिरावट आई है और अगर फंड भी लगभग उतना ही गिरा है, तब तो उसको वाजिब मान सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात है और इसी तरीके से देखना चाहिए। और अगर किसी फंड ने उसके आउट ऑफ द लाइन भी अंडर परफॉर्म किया तो भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। हर बार जब आप फंड बेचने का डिसीजन लेते हैं, अब आप टैक्स भरते हैं, तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप फंड्स चेंज करते रहेंगे तो मेरा ख्याल आप टैक्स तो भरपूर भरेंगे, शायद उसका लाभ उतना नहीं उठा पाएंगे।
2: आशुतोष, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम दिल्ली। केशव जी, सवाल पूछे।
3: हाँ जी नमस्कार, आकाशवाणी मार्केट मंत्र, मैं आकाशवाणी को ये पूछना चाहूंगा। सर से तो सवाल मेरा कि जो आप लोग आखिरी में एक बातचीत बताते हैं कि पंजीकृत ही से आप हमारा इनसे कोई विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये जो इतने बड़े अच्छे एक्सपर्ट आते हैं आपके मंच पर, तो ये एक्सपर्ट ही तो हैं, पंजीकृत ही तो होंगे, आप इनको जो बुलाते हैं, तो आप कृपा करके ये कंफ्यूजन क्यों हम लोगों को समझ नहीं आता, इनके पर हम बात का विश्वास करें क्या ना करें? धन्यवाद।
0: देखिए, मार्केट मंत्र आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, उसे मानना या नहीं मानना, और चूंकि पैसा आपका है तो फैसला आपका है, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। जी सरबजीत, अगली कहानी पे चलें।
2: यस, लेट्स टेक अ पीप इनटू हाउ द मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू शो अप नेक्स्ट वीक। द डोमेस्टिक मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक क्यूज फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कमोडिटी प्राइसेस, फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिविटी, प्रोग्रेस इन मॉनसून एंड currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including first quarter of corporate earnings, foreign institutional investors, and rupee and technical levels. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the Brent crude, which has risen above $100 per barrel amid West Asia tensions and soon to be held US Federal Reserve meeting. Ashutosh, we'll discuss this, but first let's connect with our caller, Manoj ji, sawal poochein.

0: मनोज जी आप सुन पा रहे हैं?
1: हाँ जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार
1: जी। मैं ये मैंने कुछ म्यूचुअल फंड अपने फेल करे थे इस साल अप्रैल में।
0: जी हेलो। जी जी जल्दी से पूछ रहे हैं सब। हाँ, वक्त बहुत कम है।
1: जी हाँ जी हाँ। तो मैंने जैसे 2,25,000 जैसे उसकी कॉस्ट थी, तो मैंने 2,00,000 की जो है वो सेल करी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने 2,00,000 की सेल करी है और उसके ऊपर कुछ एप्रिसिएशन आ रहा था, तो वो क्या जो जो कैपिटल गेन होगा वो प्रोपोर्शनेटली होगा या कैसे होगा वो?
2: जी नहीं, कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है जो आपकी सबसे पुरानी यूनिट्स बिकी हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हमेशा यूज होता है। तो आपने 2,25,000 के निवेश में जो 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, जो सबसे पुरानी यूनिट्स हैं उन पर जितना गेन होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
0: जी आशुतोष, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद आपका।
3: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज nearly 15,000 crore rupees in July so far. In bullion market, gold and silver prices rebound after 2 straight weeks of decline, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 10 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। वक्त हो चुका है आपके अपने इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ने का। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ और ये नगमा है फिल्म अनाड़ी से। गोल्डन एरा के ये वो नगमे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए और हमेशा आप उससे सुनना चाहते हैं गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो गोल्डन एरा के सदाबहार नगमे हैं जो आज भी दिलों को उसी मासूमियत से छू जाते हैं और ये नगमा है साल 1959 में आई फिल्म अनाड़ी का ये खूबसूरत गीत दिल की नज़र से। आवाज़ है मुकेश साहब की और लता जी की और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

दिल की नज़र से। अनाड़ी फिल्म का यह नगमा था मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों कहते हैं जब मोहब्बत की आहट दिल तक पहुंचती है तो धड़कनों में भी एक नई रवानी पैदा होने लगती है। कुछ ऐसा ही एहसास समेटे हुआ है अगला ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, जो बरसों बाद भी अपनी कशिश बरकरार रखे हुए हैं। साल था 1960 का और 1960 में यह फिल्म अनुपमा आई थी। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा था, धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार। इस गीत को अपनी बेहद खूबसूरत आवाजों से सजाया है लता जी ने, और साथ ही साथ उनका साथ दे रहे हैं मन्ना डे साहब।

तो आइए आगे बढ़ते हैं और शैलेंद्र साहब के लिखे इस गीत को हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। माफ कीजिएगा, इसमें सिर्फ लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है।

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। अनुपमा फिल्म का ये नगमा लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मोहब्बत जब अपने ख्वाब बुनती है तो अक्सर उसकी तस्वीर चांद से शुरू होकर दिल में बस जाती है, और जब उस ख्वाब को शब्द मिलते हैं तो जन्म लेता है एक ऐसा नगमा जो वक्त की गर्द भी फीका नहीं कर पाती। पेश है साल 1965 की सदाबहार फिल्म

हिमालय की गोद में का एक बेहद दिलनशी गीत, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। इस अमर गीत को अपनी दर्द भरी और सुकून देने वाली आवाज से सजाया है मुकेश साहब ने। इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और इन्हें यादगार धुनों में डाला है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की। तो आइए कुछ लम्हों के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर चलते हैं, जहां चांदनी, मोहब्बत, आरजू और एहसास एक साथ सुरों में ढल जाते हैं।

आशा जी और महेंद्र कपूर साहब के गाए इसी गीत के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मंजू रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक में बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4वां राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
2: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
4: Jis par Pakistan ne avaidh tarike se kabza kiya.
2: The Defence Minister was addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85-kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105-kilogram in the clean and jerk, another Games record to finish with a total of 190-kilogram.

तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, अजब है रात से आंखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है, सुना है रात भर बरसा है बादल, सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12:24। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

वैसे मिलन की रुत तो है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो ऐसे दिल मिलते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और वैसे भी हम सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसके साथ हर मौसम हमें अच्छा लगता है। और आपको तो मालूम ही है, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक सही गाना आपको उस इंसान के बेहद करीब ला सकता है। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, अभी के लिए।

वैसे बात तो सही है, जब कोई इतने प्यार और अदब से सलामी इश्क पेश करे तो फिर कोई इनकार कैसे कर सकता है। और वैसे भी कभी कभार भूल समझ कर दिल की

वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा यूथ रोज खुद से यही सवाल पूछता होगा कि हमें प्यार हो गया है और अब हमें क्या करना चाहिए। मैं बताऊं आपको, पर आपको ना बॉलीवुड वालों की तरह जीने मरने पर नहीं उतरना है, बल्कि मजबूत फैसला लेना है। और वो मजबूती तब आएगी जब आप उसी रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा रेडियो वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि दो डांस नंबर सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।

एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले। एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले। और एक हकीकत है कि वो मुझसे दूर बहुत है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:43 और 4 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। और अगला गीत आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: आपको पता है इस गाने की सबसे अच्छी बात क्या है? इस गाने की सबसे अच्छी बात है सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद के सजने संवरने पर खुद ही मुरीद भी हो जाते हैं तो इसको कहते हैं सेल्फ लव। हम दूसरों के इश्क में गिरफ्तार तो हमेशा होते हैं, क्यों ना आज खुद के इश्क में कैद होके देखें। अगला गीत सिर्फ आपके लिए।
1: नफ

वैसे ये बात तो सच है कि दुनिया बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जब आप किसी की नफ़रत का जवाब भी मुस्कुरा कर देते हैं, प्यार से देते हैं, तो सच कहूँ

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रतिबंधित मादक पदार्थ इस महीने की 21 से 25 तारीख के बीच मुंबई और कल्याण में रोके गए 3 अंतर्राष्ट्रीय डाक पार्सल से बरामद किया गया। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई

0: स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीविका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti. Besides, former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination, and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan, and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
1: The defense minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Devas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said, developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instructions of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been appointed chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack, claiming one life and injuring 29, was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Balot, a German citizen with Lebanese roots, was killed

101 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

योगेश की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म दुनिया ना माने से। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार और माला सिन्हा ने फिल्म का निर्देशन किया था वी अवधूत ने और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म बहू बेगम से। और ये फिल्म आई थी 1967 में, जिसका निर्देशन किया था एम सादिक ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। संगीत रोशन का था और इस फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। और अब आपको सुनाते हैं अगला गीत, जो है फिल्म छाया से लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज़ में।

चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:34 और 34 सेकंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म आर पार से।

ये सदाबहार गीत आप सुन रहे थे फिल्म आर पार से, और ये फिल्म आई थी 1954 में और आवाज थी गीता दत्त की, संगीतकार थे ओपी नैयर साहब। और इस गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था श्यामा पर। और ये गीत अपने दौर के सबसे लोकप्रिय प्रस्तुतियों में से गिना जाता है, और इस फिल्म के गाने काफ़ी सदाबहार थे। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई मूवी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कुछ गाने समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि वो हर दौर में एक नए अर्थ के साथ फिर से दोहराए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और ऐसा ही एक गीत था ये जो भी आपको हमने सुनवाया। शैलेंद्र साहब के शब्द थे, शंकर जी के जयकिशन का संगीत था और लता जी की आवाज़ थी। और जब ये तीनों संगम एक साथ मिलते हैं

तो एक अमूल्य धरोहर बनकर सामने आते हैं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में। अगला गीत

ये प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक के बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड़ तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 109

फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात जरूरी समझी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 52 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी वो प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के एहसास को, रात के जज्बात को अपनी बातों से, अपने गीतों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

जब दोस्ती प्यार में बदलती है तो पता है आपको सबसे इसकी खूबसूरत बात क्या होती है, आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। सामने वाले को पता होता है कि आप कितना बेसुरा गाते हैं, मैगी जला देते हैं और बात बात पर आपको गुस्सा आता है, फिर भी अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपको सराहता है, तो समझिए कि आपको एक सही इंसान मिल चुका है। अब ये इंसान आपकी तकदीर में हो या ना हो, पर उसे मांग लेना चाहिए। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि ये जो नसीब और किस्मत वाला मामला है ना, बड़ा दिलचस्प होता है। जब तक लाइफ में कोई सही इंसान हमें नहीं मिलता, हम सारा इल्ज़ाम इसी नसीब पर डालते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा होता है, सब कुछ पहले से छपा होता है। और इस सवाल का जवाब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, दो लोग मिलकर अपना नसीब तय करते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, आप ही के लिए।

इस गाने में एक बात बहुत अच्छी कही गई है, मतलब पते की बात है कि मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसमें जिगर चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, और हाँ थोड़ा सा पागलपन भी ज़रूरी होता है। मोहब्बत में कोई लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ तो सामने वाले की फिजूल बातों पर भी मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत के लिए दिल के साथ साथ पागलपन भी ज़रूरी है। अगर आप भी इसी पागलपन में हैं तो ये अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।

मुझे तुम तोहफे में कोई फूलों का गुलदस्ता मत देना। मुझे तुम तोहफे में कोई फूलों का गुलदस्ता मत देना। देना हो तो किसी फूलों वाला पौधा देना, जिसके फूल आने का मैं इंतज़ार करूं, ठीक वैसे जैसे मैं तुम्हारा करती हूं। तुम्हारा आना भी तो इन फूलों की तरह है। तुम्हें भी तो महीनों लगते हैं मुझसे मिलने में। जब तुम्हारे दिए पौधे में फूल आएंगे मैं खुश हो जाऊंगी, जैसे तुमसे मिलकर होती हूँ। मुझे तुमसे प्रेम में कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक छोटा सा फूलों वाला पौधा। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज में।

अगर आप भी किसी के गोरे रंग पर या फिर सिर्फ लुक्स पर फिदा होने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि हमारा रंग, हमारा रूप, हमारे लुक्स कुछ दिनों तक रहते हैं। गोरा रंग ढल जाता है, यौवन ढल जाता है, लेकिन प्यार ताउम्र साथ चलता है। तो कोशिश करनी है हमें कि उस रिश्ते के साथ आगे चलें जिसमें प्यार ताउम्र साथ चले।

हमारी आजकल की जिंदगी थोड़ी अलग है ना, जिसमें भाग दौड़ ज्यादा है और सुकून बहुत कम है। बड़े बड़े मकान, ब्रांडेड गाड़ियां और ना जाने क्या क्या हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी शांति से बैठकर हम ये नहीं सोचते कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है अपनों के साथ से, उनकी हंसी से, उनकी मुस्कुराहट से। तो जनाब, ईंट पत्थर का मकान तो बनता रहेगा, लेकिन वक्त है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम कोशिश करें अपने सपनों का घर बनाने की, जहां छोटी छोटी खुशियां हमें, हमारे परिवार को सुकून देती हो।

रात शुरू में ही मैं आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार, 3:10 पर हम राही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी। नीता अग्रवाल मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र, मंजू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपंडे का, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। श्री शाह ने कहा कि इस शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and, based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination, and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan, and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
2: The defense minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instruction of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been appointed chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagat Singhpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack, claiming one life and injuring 29, was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Baloth, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85-kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105-kilogram in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190-kilogram. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय वाये रात्रि के 3:11:24। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हमारे जीवन में साथ का बहुत बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में सजता है तो उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

मन्ना डे और वाणी जयराम के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। जयदेव का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम परिणाम।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आस का पंछी इस फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। मित्रों, रैना काल को सजाता ये चांद यकीनन हर दिल का चहेता हमेशा से ही रहा है। यहाँ तक कि किसी से वादा करवाने के लिए भी चांद को किस खूबसूरती के साथ सहारा या कहीं गवाह बनाया जा रहा। सुनिए इस गीत में।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना राजहट फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। मित्रों, साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अंग कभी कभी बन जाता है। इसी खूबसूरत वानगी से सजा ये गीत आइए सुनते हैं।

आशा भोसले और जगमोहन बख्शी की आवाज से सजा ये गीत टैक्सी ड्राइवर फिल्म से अभी आपने सुना। 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी।

मित्रों, हमराही में हमारे दिल के या कहें जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारी जिंदगी में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें बहुत ज्यादा बेचैन कर देती है। कुछ

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो।

गोपी नैयर का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी ने ये गीत लिखा था। गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय इस गीत में था। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55। साथियों, रात का समय कई बार नींद ना आने का समय भी बन जाता है, सबब कुछ भी हो। अब नींद ना आने के दो कारण कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ उसी सजाई गीत आपने सुना, पोस्ट बॉक्स नंबर 999। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत था, प्यारे लाल संतोषी की लिखी रचना थी।

राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे हैं। साहिर लुधियानवी की लिखी रचना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों का सुंदर जादू। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई, नाम काला पत्थर। साथियों, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफ़र में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफ़र के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छी हो तो सफ़र जीवन का हो या कुछ घंटे मिनट या लम्हों का, कब गुजर जाता है

मुकेश और हेमलता के स्वरों से सजा ये गीत विश्वास फिल्म से आपने सुना। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और गुलशन बावरा की लिखी रचना। साथियों, अब अगला गीत सुनते हैं। कई बार मन में कोई शिकायत होती है किसी तरह की, तो हम कहना भी चाहते हैं उस शिकायत को, और हम ये भी मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति बस जल्दी से हमारी इस शिकायत को समझ जाए और शिकायत दूर हो जाए। लेकिन ये कैसी शिकायत है, जरा सुनिए तो।

हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत कैफी आजमी का लिखा था साथियों। मोहम्मद रफी आरती मुखर्जी की आवाजें थी। फिल्म का नाम दो दिल जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में।

आरती मुखर्जी और मुकेश के स्वरों से सजा ये गीत आरंभ, ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। आनंद शंकर का संगीत था, हरीश भजानी ने ये गीत लिखा था।

लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना आए दिन बहार के इस फिल्म से। 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के

0: निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफिड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियां और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतियों को मौका दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को वाशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय वाये प्रातः के 4:11 और 14 सेकंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

गीता दत्त की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना बाजी फिल्म से। 1951 रिलीज फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिल लुधियानवी की लिखी रचना। और अब सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजाई ये गीत हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया था। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम दुनिया झुकती है, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में। साथियों, किसी से पल भर की पहचान भी कई बार दिलों के, परिवारों के रिश्तों को जोड़ देती है। प्रेम में इस तरह की बात होती है। जी हाँ, प्रेम बहुत कुछ होता है। ये पहचान आगे जाकर एक परिवार के रूप में भी स्थापित होती है।

0: देवर की लिखी रचना। साथियों, अरुणिमा में सजते हैं जीवन के सुंदर रंग। इन सभी रंगों से सजकर जब अरुणिमा अपना रंग बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने, ऐसे सपने जो हम सच कर सकें, सच गए हों। बस उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहें।
1: जीवन पथ में है कहां पथिक तुझे आराम, चलना।

तलत महमूद लता मंगेशकर के स्वरों से सजाई ये गीत छोटे बाबू फिल्म से अभी आपने सुना। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मदन मोहन का संगीत था।

फैशनेबल वाइफ, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मन्ना डे साथियों की आवाज़ें थी, सुरेश तलवार का संगीत था और भरत व्यास की लिखी रचना थी।

सुमन कल्याणपुर के स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। साथियों, जो भी रिश्ता जुड़ता है उसमें कोई ना कोई तो पहली पहचान, पहली मुलाकात जरूर होती है। कारण उस पहचान का जो भी हो, उसी पल भर की पहचान को बताता ये सुंदर नगमा अभी हमने सुना। और अब कौन आ गया है कि आंखों में चमक आ गई है, दिल में खुशी छा गई है।

रवि का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे हैं। साहिर लुधियानवी की लिखी रचना, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम वक्त, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। और अब एक शास्त्रीय राग आधारित रचना सुनते हैं जो यकीनन मन को सुकून देती है और मन को हर्षाती है, मन को नृत्य करने पर भी मजबूर करती है।

महेंद्र कपूर की आवाज़ से सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। शिवराम का संगीत था, नीरज की लिखी ये रचना थी। साथियों 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सती नारी। और अब अपने घर आने का खुला निमंत्रण देता ये गीत।

0: जिंदगी।
1: भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं। जयदेव का संगीत सुदर्शन पाकर की लिखी रचना, फिल्म का नाम दूरियां। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, और अब जीवन के सुख पिरोती ये रचना।

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत रजनीगंधा फिल्म से अभी आपने सुना। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सलिल चौधरी का संगीत, योगेश की लिखी रचना, और अब सावन को आने दो।

जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। राज कमल का संगीत, गौहर कानपुरी की लिखी रचना। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सावन को आने दो। और अब आज के अरुणिमा प्रोग्राम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सच रही है ये रचना।

आशा भोसले की स्वर से सजा ये गीत सावन की बहार दिखाता आनंद देता ये गीत जुनून फिल्म से आप सुन रहे हैं। 1978 रिलीज ये फिल्म, वनराज भाटिया का संगीत, योगेश प्रवीण की लिखी रचना। आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति थी ये साथियों। अब अरुणिमा कार्यक्रम समाप्त होता है, अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए तथा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम

0: 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जर्मनी में बर्लिन प्राइड फेस्टिवल में हुए घातक हमले के संदिग्ध को पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में मार गिराया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। संदिग्ध की पहचान अब्दुल बल्लौत के रूप में हुई, जो लेबनानी मूल का एक जर्मन नागरिक है। बर्लिन शहर के बीचों बीच हुए इस हमले के बाद लगभग 24 घंटे की तलाशी अभियान के बाद उसे मार गिराया गया। बर्लिन के अभियोजकों ने बताया कि संदिग्ध ने पहले आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह में शामिल होने की कोशिश की थी। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रेडेंस ने इससे पहले प्राइड फेस्टिवल के पास वैन से लोगों को कुचलने और चाकू मारने की घटना को संदिग्ध आतंकी हमला बताया था। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति को मौका दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सेना के ठिकानों पर ईरानी हमलों में जॉर्डन में 3 और इराक में 1 अमरीकी सैनिक की मौत हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4वां राष्ट्रमंडल खेल पदक जीतने पर वह भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti. Besides, former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी

समय हुआ है प्रातः की 5:11 और 38 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था भाभी की चूड़ियाँ। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, सुधीर फड़के का संगीत था, नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना थी। साथियों, सावन का मौसम बस आने को ही है और प्री मानसून तो बरस ही रहा है। रिम झिम फुहार। अब सावन का जब महीना आता है, ये दिन आते हैं, तो ऐसे में जो फूल हैं, पत्ते हैं, वो बहुत ही अच्छे से खिलते हैं क्योंकि आवश्यकता अनुसार पानी भी तो उन्हें मिलता रहता है। तो इसी तरह की फूलों की जो डालियां हैं, ऐसे शब्द से सजा, आइए ये बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं।

0: तालियां, शाम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां, राधा संग कान्हा का रास जहां चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहां चला रे।
1: मन्ना डे और गीता दत्त के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। एस एन त्रिपाठी का संगीत था, भरत व्यास के लिखी रचना, फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। साथियों, बहुत सारे विचार होते हैं जो अनमोल होते हैं, और उन्हीं विचारों में एक विचार ये भी होता है कि सीखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सीखने की जो प्रक्रिया है ताउम्र चलती रहती है, लेकिन यहाँ बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत शतरंज फिल्म से 1969 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

नौशाद की संगीत पद की ये रचना आप सुन रहे हैं। शकील बदायूनी की लिखी ये रचना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज 1954 रिलीज फिल्म शबाब। साथियों, समय का पंख लगाकर भोर से दोपहर, दोपहर से शाम और रैना काल और फिर एक नव अरुणिमा का उदय लेकर आता है, पता ही नहीं चलता समय कैसे पंख लगाकर गुजर जाता है।

गीता दत्त की आवाज से सजा ये गीत बाजी फिल्म से अभी आपने सुना। 1951 में साथियों ये फिल्म रिलीज हुई थी। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना। और अब एक ऐसा रंग आ रहा है जो हम सबका बहुत ही प्रिय रंग है।